एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 की भाद्रपद मास की 27वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 18 सितंबर वर्ष 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं प्रारंभ होती है। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। आयोग ने पार्टी के दोनों प्रतिद्वंदियों गुटों को उपचुनाव में इनका इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। आयोग ने ममता बनर्जी और अरूप राय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने अपने समूह के लिए 3 नाम और 3 मुक्त चुनाव चिन्ह प्राथमिकता के क्रम में देने को कहा है। आयोग इनमें से 1 नाम और 1 चुनाव चिन्ह को मंजूरी देगा। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्सट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उपस्थित होंगे। इन विमानों को शामिल करना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता का विकास को और बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका सहित कई देशों से ऊर्जा खरीदता है। एशियाई खेल 2026 में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में मेजबान जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। दिल्ली में

0: तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से पराजित किया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ पर सवेरे के 6:05 और 10 सेकंड ये समय है चिंतन का। तो आइए सुनते हैं चिंतन, जिसमें आज का शीर्षक माँ।
2: माँ में पूरे संसार की ममता समाई होती है। एक छोटे से शब्द माँ में बालक का पूरा संसार छुपा होता है। माँ बालक की प्रथम शिक्षिका तथा मार्गदर्शिका होने के साथ साथ सबसे अच्छी मित्र भी होती है। जीवन की बाधाओं मुश्किलों से लड़ना सिखाती है, शक्ति प्रदान करती है। संसार में माँ के रिश्ते को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। इसीलिए संसार में ज्यादातर जीवनदायिनी और सम्माननीय को माँ की संज्ञा दी जाती है, जैसे भारत माँ, धरती माँ, पृथ्वी माँ, प्रकृति माँ और गौ माँ। इसके साथ माँ को प्रेम और त्याग की मूर्ति भी माना गया है। माँ अपनी संतानों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकती है, इसीलिए माँ को प्रेम व करुणा का प्रतीक माना गया है। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, उसका बच्चा कष्ट न पाए। हर व्यक्ति के जीवन में माँ एक शिक्षक से लेकर पालनकर्ता रक्षक की भूमिका निभाती है। इसीलिए हमें सदा माँ का सम्मान करना चाहिए। ईश्वर भले ही एक बार नाराज हो जाए, परंतु माँ कभी भी अपने बच्चों से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती है। वो भले ही स्वयं भूखी सो जाए, लेकिन बच्चों को खाना खिलाना नहीं भूलती। यही कारण है कि हमारे जीवन में माँ के इस रिश्ते को बाकी सभी रिश्तों से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। हम माँ के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। माँ को पृथ्वी पर ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए हमें सदैव माँ को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन।

रात्रि संगीत के कार्यक्रम वंदना में करते हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं सुप्रभात। कहते हैं जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, ये दोनों ही हमारे जीवन के लिए अनमोल है। इसलिए निरंतर सीखते जाइए, निरंतर चलते जाइए, पर रास्ता हमेशा सतमार्ग का अपनाए। इसी सुविचार के साथ आज के वंदना कार्यक्रम की शुरुआत सुदेश शर्मा के स्वर के साथ।

रचना भट्ट के स्वर में अभी आपने सुनी ये भक्ति रचना। जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन ईश्वर से भरोसा कभी नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हमें शक्ति भी ईश्वर से ही मिलती है। भक्ति संगीत की अगली रचना जगदीश नारायण शर्मा की स्वर में आपको सुनवा रहे हैं।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर।

अवध का राजपद अस्वीकार करते हुए भरत पश्चाताप के आंसुओं में डूब जाते हैं। राज सिंहासन पर बैठने का प्रस्ताव सुनकर उन्हें उस प्राणी का स्मरण हो आता है जिसकी ग्रह दशा विपरीत हो गई हो, जो वायु रोग से पीड़ित हो और ऊपर से जिसको बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और इन सब लक्षणों से मुक्ति पाने के लिए जिसे मदिरा पिलाई जा रही हो। ये कैसा उपचार है भला? कैकेयी का पुत्र होने के नाते संसार में जो कुछ उनके योग्य था, विधाता ने उन्हें सब कुछ दे दिया। विडंबना ये है कि दशरथ का पुत्र और श्रीराम का छोटा भाई होने का गौरव उन्हें व्यर्थ ही मिला। उनके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि कुमाता कैकेयी को छोड़ और कौन कहेगा कि जो कुछ हुआ वो अच्छा ही हुआ है। भरत को ये भय नहीं कि जगत उन्हें बुरा कहेगा, उन्हें अपना परलोक बिगड़ने की भी चिंता नहीं। उनके हृदय में तो बस एक ही आग प्रज्वलित है कि वो श्री राम तथा सीता के दुख का कारण बने। भरत लक्ष्मण के भाग्य की सराहना करते हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री राम के चरणों में मन लगाया और इस प्रकार अपना जीवन सार्थक किया।

अब से थोड़ी ही देर में यानी ठीक 6:45 पर हमारे किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम खेती में बात। 6:50 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत। प्रातः 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन।

प्रातः 7:30 पर, प्रातः 10 बजे और पुनः दोपहर 12 बजे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले होंगे विविध भारती के कार्यक्रम। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे समाचार प्रभात प्रातः 8 बजे। 8:15 पर प्रस्तुत होगा दिल के जज्बातों पर आधारित कार्यक्रम कुछ दिल से।

प्रातः 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत। हिंदी में प्रादेशिक समाचारों को आप सुन सकेंगे प्रातः 9 बजे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। प्रातः 9:10 पर और पुनः 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।

एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा प्रातः 9:30। प्रातः 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

हमारी सायंकालीन सभा में शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नारी लोक, शाम 5:30 पर और पुनः रात्रि 9:00 आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। हिंदी में प्रादेशिक समाचार और कार्यक्रम जिले की चिट्ठी अनुप्रसारित होगा शाम 6:30 पर आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों को आप सुन सकेंगे शाम 6:45 पर। वहीं शाम 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल।

शाम 7:30 पर आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे प्रसारित कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे जापान में होने वाले एशिया खेल 2026 के 20वें संस्करण की पूर्व झलक। 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे समाचार संध्या।

कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे, वहीं रात्रि 11 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे हिंदी में समाचार।

आप सुन रहे थे दिनभर के कार्यक्रमों का विवरण। प्रातः के 6:45 हुए हैं। समय हो चला है कार्यक्रम खेती नी बात का।

खेतीनिवाद यहीं पर संपन्न हुआ। प्रातः के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं लोक कलाकार राधेश्याम व साथियों द्वारा गाए कुछ लोक भजन।

0: यस, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस दिए, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत में आज आप सुन रहे हैं राधेश्याम व साथियों द्वारा गाए कुछ लोक भजन।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: आप सुन रहे थे राधेश्याम व साथियों के गाए कुछ लोक भजन कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत में। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। प्रातः के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है वातायन। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं प्रभा ठाकुर से काव्य पाठ।
1: है मीन समान जी सखिरी, लग लग सुख की दो सांस भरी, फिर दुख सरिता में डूब गई। मीन समान जी सखी में असुवन जल बीच उम्र बीती। जब से मैं कोख में आई सखी, घर गांव गली रिश्ते नाते सबने माँ को ताकीद करी, इस बार बहु बेटा दीजिए। पितरों के धूप की चिंता में खुद धूप समान जली माँ थी। 9 महीनों तक माँ ने मेरी थे पाथर पाथर दे

सेव किए। पीर फकीर साधु भोंपे सब माने पागलों से धोके, जाने कितने तावीज लिए थे अंग अंग बंधवाए सखी। 9 महीनों में आधे दिन तो उपवास रखा मेरी माँ ने सखी, पर हाय किसी ने भी न किया मुझको बेटी से बेटारी। मेरे आने के पहले ही दादी ने खबर चहूं और करी, किसना इनके हाथों अक्सर लड़का ही जन्मा है अब तक, कितने मान निहोरों से दाई आई उस रोज सखी। और देखिए जब मैं जन्मी तो क्या कहती है, तुम ठाकुर ठीक से ना पूजे, उपवास नियम कुछ भी न किया, इस कुल की लुटिया डूब गई, हाय बहु बेटी जन्दी। अब आगे की हरी ही जाने, अपनी तो बरस की आस गई, झांझर लेती जो बेटा जनती, झोली भर धान ही ले चली। जनमत जननी की आह सुनी, जनमत जननी की आह सुनी, दादी ने माँ को दी गाली, बाबा मुख मोड़ के निकल गए, आंसू भरी आंख से माँ ने देखा। जो बेटा होती दूधों नाती, जो बेटा होती दूधों नाती, असुमन जलसों माँ नाई सखी। जो बेटा होता थाली बजती, ढोलक बजती, मधुर बधाई गाते सब, रुंझुन छमछम की धुन सुनती। मत पूछ सुना क्या मैंने री, मत पूछ सुना क्या मैंने री, चित्कार पड़ी कई कानों में, नन्हा सा हृदय मेरा दहल गया, ताई चाची भूआ सब ही यूं रोने लगी जो कोई हो मरा। 1 साल की मेरी बहना को ताऊ ने जमी पे दे मारी, तू पीछे भी छोरी लाई, डाइन तू मरी क्यों ना अब तक। अवसाद भरे मन से मुझको माँ ने तन से लिपटाए लिया, धू धू करते किसी जंगल में बछिया संग गाय फंसी जैसे। पांखें होती तो उड़ जाती, बिन पंख पखेरू सी हम थी, लग लग मछली सी कांप उठी, माँ बेटी दोनों तब सकिरी। हारे जुआरी से लौटे माँ के नैहर के लोग सभी, माँ की धाई समझाए चली, सब कर्मों की गति है बेटी, भगवान के घर अंधेर नहीं, धीरज धर अब की बेर सही। इतना सुनते ताई तमकी, ऊंचे सुर में वो यूं बोली, यह नारन कोख पलटने की लल्ला, तुम तो दूसरी ब्यालो। अगणित तानों के डंकों से परिछन करती सब नार चली, तब माँ को सुधी मेरी आई, ममता की हुक उठी मन में, छाती से चिपटा कर मुझको माँ शीश पे हाथ फिराने लगी। वो महीनों भूखों पेट रही, मैं दूध कहाँ सो पाती सखी, माँ मेरी क्षुधा को समझ गई, अपराधिन सी आंखें मूंदे वो मन ही मन अकुलाई उठी। आंखों से गंगा बह निकली, गालों से झरती बूंदे थी, मेरी तृषा बुझाए रही, जग में सबसे पहले चाखा माँ के आंसू का स्वाद सखी। तब से पीड़ा का विष पीती, शिव समान जी मैं सखीरी। आंसू से भीगे आंचल में माँ ने मुझको लिपटाए लिया, तब से आंचल सिर से न हटा, माँ का आंचल मेरा आंचल। संसार कभी ना देख सकी, लिपटे सिमटे मेरी उम्र गई, गंगा यमुना तो सदा रही मेरे आंचल के साथ सखी। छठी पूजन पे नानी बोली, छठी पूजन पे नानी बोली, पीड़िया ओढ़ाती तुझे बेटी, जो गोद लला से भरी होती, पर हाय गोद बेटी तेरे मैं सादा पोत उड़ाए रही। माँ पीलिया ओढ़न को तरसी, ये अपराध लिए सिर पे मजी, करधनी झांझर लाती भौजी, होली पे ढूंढ कराती मैं, पर हाय गोद बेटा तुमरे एक पीत जगह मैं ले आई। कब गोद से उठ खुद गोद बनी, इस द्वार से कब उस द्वार गई, इस बाड़े से उस बाड़े में गैया सी यहाँ की गई सखिरी। जननी का हाथ हटा सिर से कब, कब मैं खुद सिर सहलाए रही, दिवसों में बरस जिए ऐसे कि यौवन में ही बुढ़ाए गई। घूंघट बदली छाई ही रही, पियका न कभी मुखचंद्र दिखा, घायल चकवी सी जी सखीरी, नाहर संग भीत मृगी सी जी, तपती बालू सतपातन मन, आवां सी सुलग जी सखीरी, मैं तो चातक सी निहारे की, स्वाति में बदली ना बरसी। ये गए समय की बातें हैं, ये कह मुझको न भर मारी सखी, वो समय था कि मैं जी तो सकी, अब तो मैं जन्म न पाऊं सखी। तेरी वैज्ञानिक प्रगति ने भी गाज मुझी पर तो डाली, जग तो था पाषाण सदा ही, माँ भी पाषाण बना डाली। माँ का आंचल था कवच कभी, अब कवच कोख का भी टूटा, नचिकेता सी गति है अब तो, मैं कोख से ही यम द्वार चली, एक कोख से दूजी में जाते जाते मेरी उम्र गई, ऐ काश जन्म तो ले पाती, खारा कड़वा खट्टा मीठा कैसा भी जीवन चख पाती, अब तो मैंने देखा केवल कोखों का कारागार सखी। लग लग दो सांस भी ले न सकी, मैं जन्म जमी पे ले न सकी, शुरू होने से पहले होता अब अंत कथा का ही सखीरी,
लग लग दो सांस भी ले न सकी। मैं जन्म जमीन

0: पे लेना सके। ये तो मैंने चाहा था कि घूंघट के पट खोल के मैं भी दो आंखों से यह जग देखूं, किंतु आवरण हटे हैं जितने, वो मुझको स्वीकार्य नहीं। सदियों से मैं चीख रही हूं, गौतम ऋषि का श्राप गलत था, धोबी का आक्षेप गलत था, धर्मराज का दाव गलत था। उस मति अंध की द्यूत सभा में धर्म धुरंधर भीष्म पिता का, नीति निपुणक विदुर राज का, कृपा द्रोण से आचार्यों का, सबका वह वैवश्य गलत था। तो बरसाती नाले सी उछकल अपनी राघव लव कुश तजकर स्वर्णमयी लंका को वर्ती, स्वेच्छा से जो लगा रही हो नित्यशील को दाव पे अपने, तुम मेरी प्रतिहारी नहीं हो, तुम मेरी प्रतिपाल नहीं हो, तुम मेरी प्रतिमान नहीं हो, तुम मेरी प्रतिकृति नहीं हो, कोई और नाम तुम खोजो, तुम भारत की नारी नहीं हो। ये तो मैंने चाहा था कि सदियों से जो सिले हुए हैं उन होठों की सीवन खोलूं, भागीरथी सी कलकल करती हिमगिरी से सागर तक फैले अपने अनुभव जग से कह दूं, शुभ्र चांदनी सी मुस्काऊं, खिली कली सी खिलखिल हंस दूं, रात रानी सी गह गह माकूं, कोयल की कूकू सी कूजूं, चिड़िया की ची ची सी चहकूं, घनघोर घटा को देख नाचते मुग्ध मयूर सी मैं भी नाचूं, मृगशावक सी भरूं कुलांचे, पायस बहार बयार बन मन छू जाऊं, बन इंद्र धनुष नप पर छा जाऊं, किसी ताल पर छमछम गिरती बरखा की बूंदों सी नाचूं, वणिक किरातों की बंशी पर सम्मोहित हो स्वर्ण मृगी बन नित नूतन नव उत्पादों का विज्ञापन संवर्धन करती किसी मदारी के मरकट सी, अधम वेशधर अधम भावधर निर्लज्जों को लज्जित करती रजत पटल पर अभिनय करती, तुम मेरी प्रतिहारी नहीं हो, तुम मेरी प्रतिपाल नहीं हो, तुम मेरी प्रतिमान नहीं हो, तुम मेरी प्रतिकृति नहीं हो, कोई और नाम तुम खोजो, तुम भारत की नारी नहीं हो। ये तो मैंने चाहा था कि अबला से सबला हो जाऊं, धवल राशि से अपने मुख से अवसादों की घटा हटा दूं, पल पल झरझर झरने वाली नयन अश्रु की धार सुखा दूं, अश्रु जल से क्षार हो गए नम्मा चल से लवण हटा दूं, जो ऋषि वेश धर मुझको ढकते उन देवराज की मंशा भापूं, उनके संगी कुक्कुट जन की बन बिलाव बन ग्रीवा दबोचूं, स्वयं ही खींचू लक्ष्मण रेखा और जो उसको पार करे उस दशानन की नाभि वेदूं, शकुनी को पासों में जीतूं, दुशासन की भुजा उखाड़ूं, दुर्योधन की जंगा तोड़ दूं, अष्ट लक्ष्मी से रूप धरूं, कभी नव दुर्गा की छवि कभी धारूं, एकल रूप स्वरा मासी ही शुभ्र ज्योत्सना ज्ञानमयी बन संतति को विद्वान बनाऊं, नहीं सुता और सुत में अंतर जगती को मैं यह दिखलाऊं, माता पिता का बोझ घटाऊं, प्रियतम का भी हाथ बटाऊं, इस आंगन में कली कली सी उस आंगन में खिली खिली सी शरद चांदनी सी शीतल सी बाल रवि सी ओज युक्त सी जीवन बगिया को महकाऊं, निज भ्राता से ईर्ष्या करती अनुशासन उल्लंघन करती बाहर से नरवेश धरे और भीतर से भयभीत मगी सी मरुधरा की सरस्वती सम कोमल भावों की सरिता को स्वयं कृत से शुष्क कर रही संबंधों के अर्थ मिटाती मात्र अर्थ के पीछे भक्ति पुरा छवि को धूमिल करती उपमाओं को घायल करती घर को पैरों तले कुचलती मात्र हृदय का तर्पण करती कभी योगिनियों से वेश धरे कभी मुंड मालिनी सी छवि धारे रूप गर्विता अति दर्पिता आत्म मुग्ध सी हृदयहीन सी भाव शून्य सी स्नेह रिक्त सी किसी यंत्र सी यति मंत्र सी ज्येष्ठ पवन सी सूखी नत सी प्रज्ञाहीना लक्ष्यविहीना इस आंगन में आग लगाती उस आंगन में पतझड़ लाती स्वयं लाज की चिता जलाती अहम अग्नि से हाथ सेकती काक प्रियासी निज संतति को परख अग्नि से पलवाती मृदु किशोर वय में संतति को मरघट का सन्नाटा देती वृद्धजनों की लाठी हरती दोनों पीढ़ी की अपराधी तुम मेरी प्रतिहारी नहीं हो तुम मेरी प्रतिपाल नहीं हो तुम मेरी प्रतिमान नहीं हो तुम मेरी प्रतिकृति नहीं हो कोई और नाम तुम खोजो तुम भारत की नारी नहीं हो।
1: आप सुन रहे थे प्रभा ठाकुर से काव्य पाठ कार्यक्रम वातायन में। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। प्रातः के 7:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।
2: हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में देवता फिल्म का गीत आपने सुना। गुलजार की रचना थी, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। थोड़ी सी बेवफाई इस फिल्म का गीत है, लता मंगेशकर किशोर कुमार कर गया, गुलजार के बोल खयाम की तर्ज।

फकीरा फिल्म का दो गाना था किशोर कुमार लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। युगल गीतों का कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम के कुछ और नगमे आपको सुनाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: मजरू सुल्तानपुरी की रचना संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आशा भोसले, आरती मुखर्जी, शैलेंद्र सिंह और अमित कुमार की आवाजों में फिल्म परवरिश का गीत आपने सुना।
1: कि नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहे।
2: मैटिनी शो कार्यक्रम में मुलाकात जाने माने शायर आलोक यादव से।
1: मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनक की तन्हाई थी। वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहाँ पहले मेरे भाई थी।
2: शनिवार 19 सितंबर को दिन में 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: क्या करें जब अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए? कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण? ब्रेन स्ट्रोक आने पर किन बातों का ख्याल रखें? सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका MRI करना पड़ेगा।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती का ये कार्यक्रम है हम हैं राही प्यार की।

फिल्म अवतार का ये गीत आप सुन रहे हैं, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज है। हम हेरा ही प्यार के इस कार्यक्रम की यही है आखिरी पेशकश।

समाचार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार ओडिशा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल सिक्किम केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को अगले 5 साल के लिए पुनः कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। टाटा ट्रस्ट ने इसे अवैध बताया। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने तीसरे टी20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और

0: उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
1: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से पेश दस्तावेजों और दावों से पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल दो प्रतिद्वंदी गुट है और दोनों खुद को वास्तविक पार्टी बता रहे हैं। आगामी उपचुनाव से पहले विवाद का अंतिम निपटारा संभव नहीं होने के कारण आयोग ने फिलहाल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर यह अंतरिम व्यवस्था की है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
2: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। लोकसभा से तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले, जबकि राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे।
3: सम्मेलन में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में देश के विकास से जुड़ी वित्तीय चुनौतियों और नीतिगत प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। इनमें अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र के लिए वित्तीय व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
4: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान कल से शुरू हुआ। पहले दिन सेवा दिवस में देशभर में रक्तदान शिविर और आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2000

0: 47 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इसी कड़ी में प्रस्तुत है नक्सलवाद के अंत की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर विशेष रिपोर्ट।
1: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में नक्सलवाद के अंत के बाद अब बंदूक की गोलियों की जगह एक बार फिर स्कूल की घंटियां सुनाई देने लगी हैं। बस्तर अंचल में सुरक्षा कैंपों को बदलकर शहीद वीर गुंडा धुर सेवा डेरा के नाम से आधुनिक जन सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन बदलते बस्तर की तस्वीर पेश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां कभी टेरर था वहां अब टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
2: हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है। जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे, ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े। बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं, बस्तर ओलंपिक्स की धूम है। यानी जहां कभी टेरर था वहां टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
1: सरकार की ठोस इच्छा शक्ति का ही परिणाम रहा है कि बस्तर में हजारों की संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों को अब कौशल प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर जिले के ऐसे ही एक आत्मसमर्पित माओवादी लखमू पोयाम ने बताया कि नक्सली संगठन में काम करते हुए उन्हें हमेशा जान का डर बना रहता था, लेकिन अब वे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ ही सुकून की जिंदगी बिता रहे हैं।
3: अभी तो यहाँ सरेंडर करने के बाद हम लोग यहाँ रहते हैं, अभी अच्छा लग रहा है। उधर रहते समय तो कभी मर जाना है, गोली लगेगा बोल के उधर डर था। अभी यहाँ आराम से खाना है, पीना है, सोना है, काम करना है, सब लोगों के साथ मिलना है, ऐसे अच्छा लग रहा है यहाँ।
1: लखमू पोयाम जैसे सैकड़ों आत्मसमर्पित माओवादियों की यह कहानी बताती है कि बस्तर में नक्सलवाद के अंत के बाद अब विकास का सूर्योदय हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
0: भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा राज्य की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने पर बल देगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त करता है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूस के थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को 5 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला किया है। टाटा सन्स के बोर्ड ने कल 4-1 के बहुमत से उनके कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हालांकि 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट ने इस मतदान को अवैध बताया है। मौसम विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अगले 2 दिन के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम, माहे, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। दिल्ली में आज बादल छाये रहने का अनुमान है। और अब खेल खबरों के साथ है शशांक कुमार।
4: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत दी है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत के

0: 121 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। अभिषेक शर्मा ने शानदार 108 और संजू सैमसन ने 50 रन बनाए। 30 गेंद में शतक लगाकर अभिषेक T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उधर जापान में एशियाई खेलों में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने पुंछ जिले के मेंढर इलाके के बेहरी कासब में आधुनिक जनजातीय पर्यटन गांव विकसित करने को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन की खबर आज प्रकाशित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया का भारत पर बढ़ रहा भरोसा, वैश्विक बाजार में पहुंच रही देश की सेमीकंडक्टर चिप। जनसत्ता के शब्द हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत को भरोसेमंद चिप विनिर्माण का केंद्र बना रही है। पंजाब केसरी लिखता है, भारतीय चिप की दुनिया भर में सप्लाई शुरू, दूसरे चरण में लक्ष्य $30.5 मिलियन। अमरीकी संसद में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाले विधेयक के पारित होने की खबर को अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ट्रंप को मिला 100% टैरिफ वाला हथियार। अमर उजाला लिखता है, टैरिफ पर अमरीका की दो टूक, भारत अपने हित खुद तय करेगा। हिंदुस्तान ने 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नए नियम की खबर दी है। पत्र लिखता है, पंजीकरण के नियमों को सख्त बनाने वाला कानून 1 अक्टूबर से देशभर में लागू होगा। पंजीकरण में 2 वर्ष से अधिक की देरी होने पर पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, पढ़ाई के बाद नौकरी में काम आएगी अपार आईटी, डिग्री देख सकेंगे नियुक्ता, मंत्रालय ने निजता नीति बदली। पंजाब केसरी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के परीक्षा कार्यक्रमों के जारी होने पर लिखा है, जेई मेन यूजीसी नेट परीक्षा की डेट शीट जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। सीसीटीवी की निगरानी में बिके दवा, सरकार लाई प्रस्ताव, फुटकर दुकानों में ही सीसीटीवी अनिवार्य होगा, थोक दवा दुकानों को बाहर रखा गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ दिल से।

कार्यक्रम कुछ दिल से को लेकर उपस्थित हूं आपके समक्ष आपकी रेडियो होस्ट अपूर्वा श्रीमाली। श्रोताओं, परिवार केवल एक ही छत के नीचे रहने वाले लोगों का समूह नहीं है, बल्कि यह प्रेम, विश्वास, सुरक्षा और मूल्यों की एक अटूट डोर है। आज हम इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं हमारी दुनिया और हमारी सबसे बड़ी ताकत यानी हमारे परिवार की। एक शायर ने क्या खूब कहा है, घर की नींव भले ईंटों से बनती हो पर मकान को घर, परिवार

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: भारत की कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत और करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। इस कृषि यात्रा में हमारी महिला किसान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खेत से लेकर खाद्य सुरक्षा तक उनके योगदान को नमन। वर्ष 2026 मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। इसी अवसर पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC लेकर आया है कृषि सखी अभियान, महिला किसानों के सम्मान, जागरूकता और सशक्तिकरण की एक पहल। क्योंकि खेती आपकी मेहनत है, आपके सपनों की फसल है और इसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक जोखिमों से फसल को सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आइए महिला किसानों के योगदान को सम्मान दें, हर किसान को जागरूक बनाएं और सुरक्षित कृषि की ओर आगे बढ़ें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महिला किसान सशक्त तो भारत समृद्ध।
4: कार्यक्रम कुछ दिल से में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हम अपनी स्क्रीन और करियर में उलझे रहते हैं, तब परिवार ही वह जगह है जहां हम बिना किसी मुखौटे के रह सकते हैं। आजकल एकल परिवार का जमाना है, लेकिन क्या आपको याद है वो दिन जब गर्मी की छुट्टियों में मामा या दादा के घर का पूरा कुनबा इकट्ठा होता था, छत पर बिस्तर लगते थे, देर रात तक अंताक्षरी चलती थी। आज भले ही हम अलग अलग शहरों में रहने लगे हों, लेकिन तकनीक ने हमें जोड़े रखा है। पर यह भी याद रखिए कि परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप पर गुड मॉर्निंग भेजने और शाम को साथ में बैठकर चाय पीने में बहुत फर्क होता है। समय निकालकर अपनों से बात जरूर कीजिए। Chick-a-chick-a-bum.

श्रोताओं, परिवार हमारी खुशियों की पाठशाला है। ये सिर्फ एक छत के नीचे रहने वाले लोगों का समूह नहीं है, बल्कि यह प्यार, त्याग और विश्वास की वो डोर है जो हमें हर मुश्किल में थामे रखती है। जिंदगी में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों न हो, दिन के अंत में जब घर लौटते हैं तो वही सुकून मिलता है जो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकता। वैसे जब परिवार की बात आती है तो बचपन की यादें सबसे पहले सामने आ जाती हैं। वो रविवार की सुबह जब पूरा परिवार एक साथ टीवी के सामने बैठता था, वो दादी नानी की कहानियां और शाम को पापा के ऑफिस से आने पर मिलने वाली चॉकलेट का इंतजार।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: भारत की कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत और करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। इस कृषि यात्रा में हमारी महिला किसान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खेत से लेकर खाद्य सुरक्षा तक उनके योगदान को नमन। वर्ष 2026 मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। इसी अवसर पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC लेकर आया है कृषि सखी अभियान, महिला किसानों के सम्मान, जागरूकता और सशक्तिकरण की एक पहल। क्योंकि खेती आपकी मेहनत है, आपके सपनों की फसल है और इसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक जोखिमों से फसल को सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आइए महिला किसानों के योगदान को सम्मान दें, हर किसान को जागरूक बनाएं और सुरक्षित कृषि की ओर आगे बढ़ें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महिला किसान सशक्त तो भारत समृद्ध।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ दिल से। श्रोता, हम बात कर रहे थे परिवार की। परिवार हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और रीति रिवाजों की पहली प्रयोगशाला है। त्योहारों की खुशी हो या कोई मांगलिक अवसर, परिवार ही हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखता है। बुजुर्गों की छत्रछाया में बच्चे नैतिकता, दयालुता और आतिथ्य सत्कार जैसे मानवीय गुण सहज रूप से सीख लेते हैं। साथ ही शोध भी ये दर्शाते हैं कि जो व्यक्ति अपने परिवार से जुड़े रहते हैं उनमें अकेलेपन और अवसाद की संभावना नगण्य होती है। पारिवारिक सुख बच्चों के सर्वांगीण विकास और बुजुर्गों की लंबी आयु के लिए सबसे बड़ा संबल बनता है।

परिवार का अर्थ एक साथ रहना नहीं बल्कि एक दूसरे का संबल बनना है। जब दुनिया आप पर सवाल उठाती है तब परिवार ही वो पहला ढाल बनता है जो आपके साथ खड़ा होता है, क्योंकि दुनिया के लिए आप सिर्फ एक इंसान हो सकते हैं लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। अगर रिश्तों में कोई दूरी आ गई है, कोई मन मुटाव है, तो उसे आज ही मिटा दीजिए। अहंकार को थोड़ा साइड रखिए और एक सॉरी बोलकर देखिए। परिवार से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है, क्योंकि हमेशा ही हम अक्सर बाहर की दुनिया को खुश करने में इतना वक्त लगा देते हैं कि हम उन लोगों को जरूरी नहीं समझते जो हमारे लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं।

श्रोताओं, परिवार केवल एक नाम नहीं, ये वो सुरक्षा कवच है जो जीवन के हर तूफान से हमें बचाता है। इसी के साथ ही दीजिए श्रोताओं मुझे इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ दिल से। इसी नगमे के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। प्रातः के 8:45 हुए हैं। समय हो चला है कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत का। इस कार्यक्रम में आज आपको सुना रहे हैं हसन खान मांगणिया द्वारा गाए कुछ राजस्थानी गीत। पहला गीत सुनने से पूर्व आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
0: आइए सुनते हैं पहला राजस्थानी गीत।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत।

आप सुन रहे थे हसन खान मांगणियार की आवाज में ये राजस्थानी गीत। इसी के साथ ही कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत यहीं पर संपन्न होता है। प्रातः के 9 बजे हैं। आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम तथा सुकेत नगर पालिका के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए लोक सूचना जारी। विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत प्रदेश में पहले दिन आयोजित 203 रक्तदान शिविरों में 5921 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। मॉनसून की विदाई से पहले प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, कहीं कहीं झमाझम बरसात का दौर। और भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीती। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम तथा सुकेत नगर पालिका के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए लोक सूचना आज जारी कर दी गई है। इसके साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कल तक नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 21 सितंबर को होगी, जबकि 22 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। अध्यक्ष पद के लिए मतदान 25 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा और मतगणना मतदान समाप्त होते ही की जाएगी। उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव 26 सितंबर को होगा। विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत प्रदेश में आयोजित 203 रक्तदान शिविरों में 5850 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया और 5921 यूनिट

0: रक्त संग्रहित किया गया। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि शिविरों में आमजन, खासतौर पर युवाओं और स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित स्वैच्छिक रक्तदान जरूरी है। जयपुर और अलवर में जिला कलेक्टरों ने स्वयं रक्तदान कर लोगों को प्रेरित किया। अभियान के तहत 17 अक्टूबर तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और अन्य ब्लड सेंटरों पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान नागरिकों को ब्लड ग्रुप जांच और स्वैच्छिक रक्तदाता के रूप में पंजीकरण की सुविधा भी दी जाएगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि एम्स संस्थानों को चिकित्सा अनुसंधान, उत्कृष्ट उपचार और चिकित्सा शिक्षा के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। जोधपुर एम्स की स्थापना दिवस समारोह में व्याख्यान देते हुए उन्होंने एम्स जोधपुर के लिए अगले 10 वर्ष की कार्य योजना में आधुनिक तकनीक, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं, अनुसंधान और मरीजों के अनुकूल सुविधाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जोधपुर एम्स राजस्थान में उन्नत चिकित्सा सेवाओं का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है।
1: लगभग 800 स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं और 300 नर्सिंग स्टूडेंट्स और हैं और फैकल्टी स्ट्रेंथ भी 250 से ज्यादा है। हर दिन 6000 से ज्यादा ओपीडी केसेस और 250 से ज्यादा सर्जरी दिए जा रहे हैं। तो एम्स जोधपुर पश्चिमी राजस्थान का एक अग्रणी हॉस्पिटल के रूप में उभरा है और आने वाले दिनों में वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन के रूप में उभरेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स जो अपना रहे हैं और जिस प्रकार से एकेडमिक वर्क लिया जा रहा है, जो एम्स का ब्रांड, जो नेशनल ब्रांड है, ग्लोबल ब्रांड है, जिस प्रकार से बना है, मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल रिसर्च और पेशेंट केयर में, ये तीनों में उत्कृष्टता से काम हो रही है।
0: इससे पहले मुख्य सचिव ने अजमेर में राजस्व बार एसोसिएशन के अभिनंदन कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्व न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सरल बनाने में बेंच और बार दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्य सचिव ने राजस्व मामलों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गरीब और कमजोर वर्गों तथा काश्तकारों के भूमि अधिकारों और कब्जे की सुरक्षा सुनिश्चित करना राजस्व न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने राजस्व न्याय व्यवस्था में तकनीक के अधिकाधिक उपयोग की आवश्यकता बताई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ हल्की सी मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में आज बरसात हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से मॉनसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की भी संभावना है। इससे पहले पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई। राजधानी जयपुर में दोपहर बाद तेज बारिश का दौर शुरू हुआ जो रात तक रुक रुक कर चलता रहा। नागौर में कई स्थानों पर हुई तेज बारिश के बाद किसानों के खेतों में पानी भर गया जिससे खरीफ फसलों के खराब होने की आशंका है। करौली में देर शाम तेज बारिश हुई। डूंगरपुर जिले में भी रात भर हुई बारिश से मार्गिया बांध ओवरफ्लो हो गया। बांसवाड़ा में झमाझम बारिश हो रही है। बारा जिले में हुई अच्छी बारिश के बाद शाहबाद उपखंड के देवरी की पलको नदी का जलस्तर बढ़ गया। भरतपुर में देर रात एक घंटे तक हुई जोरदार बरसात के बाद तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली। देश के हर जिले की स्थानीय कला, शिल्प और कृषि उत्पाद के साथ ही वहां के आर्थिक विकास को गति देने के लिए शुरू की गई योजना है एक जिला एक उत्पाद।

0: ओडीओपी को स्थानीय गली से वैश्विक दुकानों तक का सफर कहा जा सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में।
1: एक जिला एक उत्पाद एक ऐसी महत्वपूर्ण पहल है जिसके तहत किसी भी जिले के विशिष्ट उत्पाद की पहचान की जाती है। इसके बाद उसकी गुणवत्ता और पैकेजिंग में सुधार कर उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुरूप तैयार किया जाता है। इसमें वैश्विक स्तर पर ब्रांड बनाने और बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। इससे स्थानीय कारीगरों, किसानों और छोटे उद्यमियों को सशक्त करने के साथ ही रोजगार के नए अवसर सृजित करने में भी मदद मिलती है। एक जिला एक उत्पाद आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के विजन को आगे बढ़ाता है। न्यूज डेस्क से सलीहा गाजी।
0: क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल रात खेले गए तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 221 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 14 ओवर और 1 गेंद में 94 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से नीतीश कुमार रेड्डी और रवि बिश्नोई ने 3-3 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने 2 जबकि जसप्रीत बुमराह और यश ठाकुर ने 1-1 विकेट लिया। अभिषेक शर्मा ने 34 गेंदों में शानदार 108 रन की पारी खेली जबकि संजू सैमसन ने 50 रन बनाए। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को आकाशवाणी की मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 25 सितंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम तथा सुकेत नगर पालिका के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए लोक सूचना जारी। विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत प्रदेश में पहले दिन आयोजित 203 रक्तदान शिविरों में 5921 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। मॉनसून की विदाई से पहले प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, कहीं कहीं झमाझम बरसात का दौर। और भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 9:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुना रहे हैं पंकज उदास द्वारा गाए कुछ गजलें।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: भारत की कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत और करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। इस कृषि यात्रा में हमारी महिला किसान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खेत से लेकर खाद्य सुरक्षा तक उनके योगदान को नमन। वर्ष 2026 मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। इसी अवसर पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC लेकर आया है कृषि सखी अभियान, महिला किसानों के सम्मान, जागरूकता और सशक्तिकरण की एक पहल। क्योंकि खेती आपकी मेहनत है, आपके सपनों की फसल है, और इसकी सुरक्षा भी

उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक जोखिमों से फसल को सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आइए महिला किसानों के योगदान को सम्मान दें, हर किसान को जागरूक बनाएं और सुरक्षित कृषि की ओर आगे बढ़ें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। महिला किसान सशक्त तो भारत समृद्ध।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा

0: देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: भारत की कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत और करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। इस कृषि यात्रा में हमारी महिला किसान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खेत से लेकर खाद्य सुरक्षा तक उनके योगदान को नमन। वर्ष 2026 मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। इसी अवसर पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC लेकर आया है कृषि सखी अभियान, महिला किसानों के सम्मान, जागरूकता और सशक्तिकरण की एक पहल। क्योंकि खेती आपकी मेहनत है, आपके सपनों की फसल है और इसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक जोखिमों से फसल को सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आइए महिला किसानों के योगदान को सम्मान दे, हर किसान को जागरूक बनाएं और सुरक्षित कृषि की ओर आगे बढ़ें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महिला किसान सशक्त तो भारत सम...

आप सुन रहे थे पंकज उदास की आवाज में गजलें, कार्यक्रम सुगम संगीत में। इसी नगमे के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। प्रातः के 9:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सतंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। तो करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक खूबसूरत विचार से, जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी ने। लिखते हैं, ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक सच्चा व्यवहार और प्रेम ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। आप सबका आभार संदेश भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी। गांव डांगरी जिला जैसलमेर से बाबूराम जयपाल। ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी, सादर नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व जो गीत कार्यक्रमों में जवानों उठो, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के जीवन पर प्रकाश डाला, वो बेहद सराहनीय और प्रशंसनीय लगा।

सबसे बढ़िया मुझे देशभक्ति गीत लगे। आप सबके उम्दा संदेशों के लिए एक बार फिर से मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है, इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया भर की उन मजेदार लेकिन साथ ही साथ गंभीर परंपराओं के बारे में रोचक जानकारियाँ। तो श्रोता मित्रों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अजब गजब परंपराओं की। अब तक हमने बात की उन जंगलों की जहाँ लोगों को संदेश दिया जाता है कि

0: लोगों को संदेश दिया जाता है कि जंगल मत काटो। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे जंगल की जिसे काटना तो दूर कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। पिछले दो दिनों में हमने जापान और रूस का भ्रमण किया, आइए अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत के मेघालय में। वहाँ की खासी जनजाति एक अद्भुत पर्यावरण से जुड़ी परंपरा का पालन करती है। वहाँ के कुछ विशेष जंगलों को लाव क्यंटांग कहते हैं। खासी भाषा में लाव यानी वन और क्यंटांग यानी पवित्र होता है, यानी पवित्र वन या जंगल। इसे लेकर एक सुंदर लोक कथा है जो अलग अलग प्रकार से सुनाई जाती है। बहुत पहले की बात है, एक गाँव के किनारे घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, जंगली फूल, पक्षियों की आवाजें और बीच से बहती छोटी सी जलधारा। गांव के बच्चे उस जंगल को देखकर कहते, ये हमारा जंगल है। लेकिन गांव के बुजुर्ग उन्हें रोक कर कहते, नहीं, ये हमारा जंगल नहीं है, हम तो बस इसके रखवाले हैं। गांव के मुखिया और बुजुर्ग सबको यही समझाते, जंगल हमारा नहीं है, ये प्रकृति का वो वरदान है जिसकी रक्षा के लिए हमें नियुक्त किया गया है। लोक कथा कहती है, एक दिन गांव में एक व्यक्ति को लकड़ी की जरूरत पड़ी। उसने सोचा, जंगल इतना बड़ा है, अगर एक पेड़ काट भी दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पहुंचा। जैसे ही उसने पेड़ पर पहला प्रहार करने के लिए हाथ उठाया, उसे बुजुर्ग की बात याद आई, कुछ लेने से पहले इस जंगल से जरूर पूछना, क्योंकि ये जंगल तुम्हारा नहीं है। उसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी। जितने भी लोग जंगल में पेड़ काटने आते, यदि उन्हें अपने बुजुर्गों की बात याद आ जाती तो वे भी अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़ जाते। समय बीतता गया, एक पीढ़ी गई, दूसरी आई, फिर तीसरी। लोगों ने घर बनाए, खेती की, बाजार बनाए, लेकिन उस पवित्र जंगल को वैसा ही रहने दिया। न कोई पेड़ काटता, न शिकार करता, न वहाँ से लकड़ी उठाता, और जंगल वो हर वर्ष और घना होता चला गया। उसकी जड़ें मिट्टी को थामे रही, उसकी जड़ों ने और वनस्पतियों ने जल स्रोतों को संभाला, पक्षियों और छोटे जीवों को आश्रय मिला। लोग कहते, इस गांव में सबसे ज्यादा हरियाली है। श्रोताओं ध्यान से सुनिए, जब हम कहते हैं पेड़ लगाइए, जंगल बचाइए, जल बचाइए, तो खासी समुदाय की ये पुरानी परंपरा हमें एक और गहरी बात सिखाती है। वो ये कि प्रकृति की रक्षा केवल नियम बनाकर नहीं, उसके प्रति सम्मान पैदा करके भी की जा सकती है, क्योंकि नियमों से जो काम नहीं होते वे सम्मान देकर आसानी से किए जा सकते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, लोक कथा बताती है कि वहाँ एक जंगल को बचाने के लिए हजारों पहरेदारों या वन रक्षकों की जरूरत नहीं पड़ी, बस एक विचार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, हम जंगल के मालिक नहीं, रखवाले हैं। और शायद आज हमारी धरती को इसी विचार की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो खासी समुदाय के पुराने लोगों ने दिया है, और वो विचार है, ये जंगल हमारा नहीं है, हम जंगल के रखवाले हैं। तो श्रोताओं, आप तो सुविचार भेजते ही रहते हैं, आज सुनिए उमंग कार्यक्रम की ओर से ये सुविचार। आज अगर हम परिवार और आसपास के एक पेड़ को सिर्फ पेड़ न मानकर परिवार का सदस्य मान लें, तो दुनिया और ज्यादा खुशहाल बन जाएगी। अगर ये विचार आज हम धारण कर लें, तो शायद हमारी धरती कोड़ी और हरी हो जाए। शायद आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद दें कि हमने उन्हें केवल इमारतें नहीं, एक जीवित धरती भी विरासत में दी है। तो श्रोता मित्रों, कैसी लगी जानकारी पवित्र वन की, जरूर लिखकर बताइएगा। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओं, आज का प्रश्न है, खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है। आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF, और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल YouTube को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है शेर और चूहे की दोस्ती। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि कभी भी किसी को तुच्छ, निकृष्ट और छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी कभी भी किसी के काम आ सकता है।
1: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूँ, निकालो मुझे यहाँ से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए।
4: शेर और चूहे की दोस्ती, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब सुनिए अबला को सबला बनाने वाली अबला। ये कार्यक्रम सुप्रसिद्ध भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस की पत्नी श्रीमती अबला बोस के जीवन और नारी उत्थान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताता है।
0: इतिहास में बहुत सारी नायिकाएं ऐसी भी हैं जिन्हें शायद बहुत अधिक स्मरण नहीं किया जाता, जिनका नाम दुनिया के प्रसिद्ध लोगों की सूची में नहीं मिलता, उनकी सराहना में प्रशस्ति गान नहीं लिखे गए और न ही उन्होंने अखबारों की सुर्खियां बटोरी, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया उसकी मिसाल दुर्लभ है।
5: जनस्मृति से भले ही वे नाम धूमिल और विस्मृत हो जाए, लेकिन इतिहास उन्हें आदर सहित याद रखता है और कभी न कभी उन्हें आभार सहित प्रकट अवश्य कर देता है। ऐसा ही एक नाम है अबला।

0: 19वीं सदी का अविभाजित भारत, देश में बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार, दहेज जैसी कई स्त्री विरोधी कुप्रथाएं थीं, जिन्हें चाहकर भी समाप्त नहीं किया जा सका था। ऐसे समय में प्रादुर्भाव हुआ बंगाल की महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, संघर्षशील और नारी अधिकारवादी विदुषी अबला बोस का।
1: उन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने का बीड़ा उठाया, लेकिन कौन थी अबला बोस? बता दें, वे विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस की पत्नी थी। जगदीश चंद्र बोस पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिकी और जीव भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया।
0: कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। यदि कहा जाए कि महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की सफलता के पीछे भी उनकी पत्नी अबला बोस का हाथ था, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अबला बोस का जन्म 8 अगस्त 1865 को बरिशाल में हुआ था। बरिशाल तब अविभाजित भारत का हिस्सा था और अब ये बांग्लादेश में है।
1: अबला के पिता दुर्गा मोहन दास ब्रह्म समाज के प्रसिद्ध नेता और समाज सुधारक थे। अबला की मां ब्रह्ममयी परित्यक्त, विधवा और घरेलू हिंसा के शिकार स्त्रियों के उत्थान के लिए काम किया करती थी। एक दिन की बात है, अबला की मां ब्रह्ममयी किसी मोहल्ले में रहने वाली मजदूर स्त्रियों का हाल चाल पूछने गई थी। उनके साथ अबला भी थी।
2: ए, पानी ले आ रहा
3: है?
1: कल रात तो फिर पीकर आ गया।
4: क्या बताऊं दीदी, रोज का यही है। हम औरतों की तो हालत बहुत बुरी है दीदी।
1: न कमाता है न धमाता है, ऊपर से रोज जमाता है। अरे इनको तो
4: दीदी।
5: अरे आलोका, तुम सब ठीक तो है ना?
4: नहीं दीदी, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है।
5: अरे?
4: जिस दिन आप परिवार वालों को समझाने आई थी,
5: हाँ हाँ,
4: उसके बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन अब फिर
5: क्या?
4: मुझको कहते हैं तू अपने आदमी को खा गई, हमारे साथ नहीं रह सकती, कहीं और अपना इंतजाम कर ले। कल रात मुझे घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊँ दीदी, मायके में भी कोई स्वीकार नहीं करेगा।
5: रो मत आलोका, आज तुम नारी रात्रि पाठशाला में ही रुक जाओ, मैं सारी महिलाओं के साथ तुम्हारे घर जाऊंगी। बहनों, कल सभी तैयार रहें।
6: जी दीदी।
5: हम सब आलोका के घर चलेंगे।
6: बिल्कुल चलेंगे।
5: आज इसके साथ हो रहा है, कल किसी के भी साथ हो सकता है।
6: जी दीदी। जी
7: दीदी, हम सब तैयार हैं।
0: उन दिनों स्वामी विवेकानंद ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सिस्टर निवेदिता जैसे प्रगतिशील विचारों के प्रभावशाली लोगों के कारण समाज में परिवर्तन आ रहा था। इस कारण ब्रह्ममयी दीदी के नेतृत्व में आलोका जैसी अनेक स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा हो सकी।
1: बालिका अबला ने ऐसी बहुत सी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था। वो ऐसे वातावरण और परिवार में पली जहां नारी उत्थान के लिए काम किया जाता था, नारियों को सशक्त, स्वावलंबी और शिक्षित बनाने पर जोर दिया जाता था।
0: लेकिन इसी बीच एक

0: दुखद घटना हुई। वे मात्र 10 वर्ष की थी कि तभी उनकी माता का देहांत हो गया। लेकिन अबला के बाल मन पर उनकी माता की जो छाप पड़ी वो आजीवन उनके साथ रही।
1: प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने बंग महिला विद्यालय और फिर बैथ्यून कॉलेज में दाखिला लिया और फिर मेडिसिन की पढ़ाई के लिए वे मद्रास चली गईं, जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है।
0: लेकिन सेहत खराब होने के कारण वे बंगाल लौट आईं और कभी वापस चेन्नई नहीं गईं। वापस नहीं जाने का कारण था 23 वर्ष की आयु में उनके सर जगदीश चंद्र बोस से शादी। ये था वर्ष 1887 का।
1: समय बदल रहा था। व्याख्यान देने और शोध कार्य के लिए उनके पति सर जगदीश चंद्र बोस को अक्सर विदेश जाना होता था, तो वे भी उनके साथ हुआ करती थीं।
0: एक बार की बात है, शोध के सिलसिले में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए।

0: यूरोप और अमेरिका विदेश यात्राओं के दौरान उन्होंने उन देशों की महिलाओं की सशक्त सामाजिक, आर्थिक और रहन सहन की स्थिति को ध्यान से देखा। अबला बोस ने देखा कि यहाँ स्त्रियों की दशा बहुत उन्नत है। किसी भी कार्यक्षेत्र और विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी उन्होंने देखा कि जितने पुरुष कर्मी थे लगभग उतनी ही स्त्रियां भी थीं।
1: और यहीं से शुरू हुआ उनका आगे का सफर, जिसने एक गौरवशाली इतिहास रच दिया। एक और महत्वपूर्ण घटना ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। 1917 में डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को नाइटहुड की उपाधि मिली।
0: लंदन का रॉयल अल्बर्ट हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बहुत से देशों के वैज्ञानिक इस अवसर पर निमंत्रित थे।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन वेलकम्स यू ऑल एट दिस ओकेजन। We have gathered here to facilitate Dr. Jagdish Chandra Bose, the great scientist from India. Now, I request the President of Royal Society to confer knighthood to Dr. Bose. From today, he will be the esteemed Fellow of the Royal Society. Now, I request him to kindly come on the dais to receive the knighthood. And ladies and gentlemen, it is said, behind every successful man, there is a woman. So now I request the great woman, Lady Bose, his wife, to come on the dais. Give this lady a standing ovation.
0: तब से वे लेडी बोस के नाम से जानी जाने लगी। उस रात डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस अपनी पत्नी अबला बोस के साथ भोजन के बाद बातें कर रहे थे।
2: वाह, सचमुच खाना तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट था ना?
3: जी,
2: बैठो। अच्छा, एक बात बताओ। आखिर बात क्या है? आज तुम थोड़ी चुप चुप सी लग रही हो।
3: नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं कुछ सोच रही थी।
2: सोच रही थी क्या?
3: मैं सोच रही थी कि यहाँ की स्त्रियाँ कितनी स्वतंत्र और सशक्त हैं। मेरे कहने का मतलब है, यहाँ समाज में उनका बराबर का स्थान है। उनका भी सम्मान उतना ही होता है जितना कि पुरुषों का होता है।
2: बिल्कुल।
3: आपने देखा नहीं, आज आपके नाइटहुड सम्मान के दौरान

0: आपकी पत्नी होने के नाते मुझे कितना सम्मान मिला।
1: हाँ वो तो है अबला। इसीलिए इन लोगों ने इतनी तरक्की की है।
0: वो तो है। देखिए मुझे लगता है कि मुझे अपने देश की स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए।
1: हाँ।
0: हमें उन्हें शिक्षित और स्वावलंबी बनाने की जरूरत है।
1: बिल्कुल।
0: आपको नहीं लगता?
1: लगता है अबला, बिल्कुल लगता है। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात होगी। देखो अबला, तुम जो कुछ भी कर सकती हो जरूर करो। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
0: हाँ हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा ही हमारे देश की स्त्रियों को उनका अस्तित्व दिलाएगी।
1: सही कहा तुमने। मुझे तुम पर गर्व है अबला। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा।
0: मुझे भी तो आप पर गर्व है। आपने विज्ञान में बड़ी साधना की है और अपना आसमान ढूंढ लिया है। अब मुझे अपना आसमान ढूंढना है।
1: बिल्कुल।
0: एक ऐसा आसमान जहां हमारे देश की स्त्रियां उड़ान भर सकेंगी, इज्जत से किसी आजाद परिंदे की तरह।
1: ऐसा ही होगा अबला, बिल्कुल ऐसा ही होगा।

0: फिर क्या था, यूरोप की यात्रा से वापस आकर वे लग गईं अपने अभियान में। अशिक्षा और पुरुषों पर आर्थिक और सामाजिक निर्भरता के कारण भारत में उस समय स्त्रियों की दशा दयनीय थी।
1: उन्होंने संघर्ष किया और 1919 में नारी शिक्षा समिति की स्थापना की, जिसका काम प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना, उनके लिए पाठ्य पुस्तकों को तैयार करना, मातृत्व बाल केंद्र और विधवाओं हेतु कल्याण केंद्र खोलना था। उनके द्वारा खोले गए व्यावसायिक स्कूलों में विधवा और आर्थिक रूप से कमजोर स्त्रियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और चमड़े का काम सिखाया जाता था।
0: इतना ही नहीं, अबला बोस के प्रयासों से कलकत्ता और झारग्राम में महिलाओं के उत्थान के उद्देश्य से महिला शिल्प केंद्र की स्थापना की गई।
1: अबला बोस के प्रयासों को देखते हुए बंगाल महिला शिक्षा लीग ने उन्हें अपना पहला अध्यक्ष बनाया। उनकी मेहनत रंग लाई और बंगाल में स्त्री शिक्षा के प्रति लोगों का नजरिया बदलने लगा। स्कूल जाने वाली बालिकाओं की संख्या बढ़ने लगी।
0: अबला यानी लेडी बोस को बड़ी खुशी होती जब स्त्रियां उन्हें बताती कि शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने से किस तरह उनके जीवन में खुशी आई है।
2: मेरी तो दुनिया ही बदल गई।
3: अरे दीदी, जब से बुनाई का काम सीखा है तब से घर वाला भी बड़ी
4: जो बच्चे हैं ना, जब कमा के ले जाती।
5: दीदी, जिंदगी इतनी खुशहाल हो गई है कि क्या ही बताऊं। जब से मैंने वो टोकरी बनानी शुरू की है, घर के कामों में भी बहुत मदद मिल जाती है।
4: देखो मेरा पर्स, ये मैंने ही बनाया है।
5: अरे अपनी बहुत खड़ी है, किसी के आगे क्यों मांगना। सही बात है, हमें नहीं मांगना चाहिए किसी से। अब तो हम अपना काम कर रही हैं, अब हम सशक्त बन रही हैं।
4: बिल्कुल।
0: इस समय तक अबला बोस देश की प्रभावशाली महिलाओं के संपर्क में आ चुकी थी, जिनमें भारत कोकिला, सरोजिनी नायडू, रमाबाई रानाडे, सिस्टर निवेदिता जैसी महिलाएं प्रमुख थीं। उन दिनों देश में महिलाओं को मताधिकार देने की बात चल रही थी। साल 1921 में भारत में पहली बार बॉम्बे और मद्रास में महिलाओं को मताधिकार मिला।
1: अबला ने बंगाल की महिलाओं के लिए आवाज उठाई और 1925 आते आते बंगाल की महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा था,
6: मताधिकार के द्वारा अब बंगाल की महिलाएं भी समानता का अनुभव कर सकेंगी, ये सुनिश्चित कर सकेंगी कि उन्हें सम्मान पूर्वक जीने के लिए किसको चुनना है।

0: सन 1937 में उनके पति श्री जगदीश चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने उनसे वादा लिया कि नारी उत्थान के कार्य को वे निरंतर करती रहेंगी। अबला ने महिलाओं के हक में काम करना जारी रखा और उनके हित के लिए अथक प्रयत्न करती रही।
1: अपने जीवन के अंतिम समय में वो दार्जिलिंग में बस गई। 26 अप्रैल 1951 को इस महान महिला अधिकारवादी नेत्री लेडी अबला बोस का निधन हो गया। देश उनके अतुल्य योगदान को श्रद्धा सहित स्मरण करता है और अपना आभार प्रकट करता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्षद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 10 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आप करते हैं हमें फोन और अपनी पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो देखते हैं कि आज पहले नंबर पर हमारे कौन श्रोता हैं जो बात करना चाह रहे हैं। कुछ श्रोताओं ने आज गणेशोत्सव पर बात की है, कुछ श्रोताओं ने अभियंता दिवस के बारे में अपनी जानकारी दी है, अपनी बात साझा की है। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला फोन कॉल्स का। ये है आज का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, ममता दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं दीपक जाधव बात कर रहा हूँ मैडम, बुल्ढाणा महाराष्ट्र का।
0: जी बताइए दीपक जी, अपने बारे में जरा जानकारी दीजिए और बुल्ढाणा कहाँ पर महाराष्ट्र के किस इलाके में पड़ता है?
1: जी बुल्ढाणा विदर्भ में पड़ता है मैडम, अकोला बुल्ढाणा जालना जिला के बाजू में।
0: जी जी, तो अपने उस गांव की कुछ खासियत बताइए ना।
1: जी हमारा खेड़ा गांव है मैडम, छोटा सा, खेती किसानी करते हैं हम। साल किसान के बहुत हाल चल रहे, बारिश नहीं, इधर फसल आने के पहले बारिश गई है।
0: ओ, बारिश नहीं हो रही है और बहुत जगह पे तो बहुत ज्यादा असंतुलित बारिश हो रही है, बाढ़ आई हुई है।
1: जी हमारे इधर नहीं मैडम, बहुत फसल नुकसान में इस साल।
0: ओ, तो कौन कौन सी फसल होती है आपके यहाँ?
1: या सोयाबीन होती है, मक्का, कपास होती है।
0: ओ, तो सबके लिए पानी ज्यादा चाहिए होता है ना?
1: सबके लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है, साल पानी बहुत कम गिरा।
0: जी जी,
1: इस साल परेशान है बहुत हम किसान।
0: हम शुभकामनाएं कर सकते हैं, शुभकामनाएं कर रहे हैं कि आपके तरफ क्या पूरे देश में संतुलित बारिश हो जाए ताकि फसलों जी को नुकसान न पहुंचे। और क्या करते हैं फिर, खेती किसानी करते हैं, तो अभी बाग वाग भी है आपके यहाँ?
1: नहीं, बाग नहीं लगाते मैडम, हम यही पारंपरिक चीज लगाते हैं, सोयाबीन, कपास।
0: अच्छा,
1: बाद में गेहूं हरभरा लगाते हैं।
0: जी जी, तो वैसे हर साल कैसे पैदावार होती है, हर साल अच्छी पैदावार हो जाती है?
1: दो दो फसल आ जाती है हर साल, जो जाता है वो पहले सोयाबीन भी आती है।
0: जी जी,
1: 19 से अच्छी बारिश रही इस साल तक।
0: तो बारिश अगर नहीं हुई है तो ट्यूबवेल वगैरह जो आधुनिक तकनीक है उससे पानी की व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी ना, तो है वो सब तकनीक आपके?
1: ट्यूबवेल है गर्म, कुएं भी है हमारी तरफ, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण उसमें पानी आ रहा है।
0: बिल्कुल, उतना इफरात में पानी तो नहीं मिल पाएगा।
1: जी, जमीन की लेवल नीचे गई पानी की।
0: जी अच्छा, बताइए आप आज गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: यार गणेश उत्सव त्योहार चल रहा है, इसके अवसर पर मैं गाना सुनना चाहूंगा, हमसे बढ़कर कौन मूल का, देवा देवा गणपति देवा।
0: जी जी, तो महाराष्ट्र में तो गणेशोत्सव की बड़ी धूम होती है, तो आपके घर में भी गणपति आते हैं या आपके घर के आस पास?
1: आते।
0: अच्छा,
1: नहीं आते, हमारे गांव में घर पर तो होता है गणपति, हर एक घर में होता है।
0: और इसी के बहाने लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं ना?
1: जी जी बिल्कुल
0: जी। तो चलिए फिर, आपका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने हमें फोन किया। अब आपकी पसंद का गाना सुनते हैं ये।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम जी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से?
1: मैम तहसील ईसागढ़, जिला अशोक नगर, मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवा बोल रहा हूँ मैम।
0: जी विनोद कुमार जी, बताइए क्या हाल है मध्य प्रदेश का और आपका क्या हाल है?
1: बस राम जी की कृपा और आपका आशीर्वाद मैडम, बढ़िया है हालचाल। आज मैम हमारी बरसों बाद कॉल लगी है, कोरोना के बाद से आज कॉल लगाए मैम।
0: अच्छा, कोरोना के समय तो हेलो फरमाइश था ही नहीं, बंद हो गया था। आज
1: नहीं, और पहले भी आता था ना मैम अपना प्रोग्राम।
0: जी जी जी, तो चलिए आज लग गया है, तो बताइए अपने बारे में, बताइए क्या काम काज है आपका?
1: जी मैम, हम खेती बाड़ी का काम करते हैं और

0: अपने अभी गेहूँ दो मक्का और सोयाबीन लगाया है और धान भी लगाई हुई है।
1: तो फसल अच्छी है?
0: जी जी बढ़िया है मैम। अभी तो अब आगे देखते हैं कैसे होगी, अभी तो फिलहाल में बढ़िया है, टॉप 10।
1: जी जी तो बढ़िया। आपका गांव भरा पूरा गांव है, लोग कैसे हैं वहाँ के?
0: जी बहुत अच्छे है मैम। मैं थोड़ा हमारे अशोकनगर जिले के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा।
1: बिल्कुल दीजिए।
0: हमारे अशोकनगर जिले में एक गांव है करीला धाम, वहाँ पे रंग पंचमी के दिन बहुत ही बड़ा विशाल मेला लगता है जो कि अपने पूरे इंडिया में फेमस है और बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वहाँ पे जानकी माता जी का मंदिर है और मतलब एक ही दिन में मैम 25 से 30 लाख श्रद्धालु दर्शन करके जाते हैं और अपनी मन मांगी दुआ पूरी होती है।
1: अच्छा, बहुत बढ़िया बात बताई आपने, अच्छी जानकारी दी है। जो लोग सुन रहे होंगे आपकी बात तो वहाँ जाना चाहेंगे तो जरूर जाएंगे।
0: ठीक है मैम। वो मेले तो बहुत लगते हैं लेकिन जो राय नृत्य का मेला होता है ना वो हमारे अशोकनगर में लगता है जो कि पूरे अपने इंडिया में फेमस है। मेले तो मैम एक से बड़े एक लगते हैं लेकिन जो राय नृत्य के लिए जाना जाता है ना वो सिर्फ अपने करीला धाम अशोकनगर एमपी में ही लगता है।
1: जी जी। तो मेले में और क्या क्या होता है? मेले में तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं, खरीदारी के लिए लोग जाते हैं, मेल जोल के लिए जाते हैं, तो आप मेला देखने किस लिए जाते हैं?
0: जी मैम हम भी जाते हैं, हमारे लोकल में तो हम कभी भी चले जाते हैं लेकिन जो मेले के समय में जाते हैं वो एक अलग ही बात होती है। और वहाँ की मेन जो अपन पूड़ी निकालते हैं ना कढ़ाई होती है तो ऐसी मान्यता है कि वहाँ से हम कढ़ाई लेकर आते हैं तो अब तेल कम जलता है हमें।
1: अच्छा ओके। और क्या क्या चीजें मिलती हैं कढ़ाई के अलावा? और क्या क्या चीजें मिलती हैं भाई? हमारे जो बचपन का मेला था ना उसमें हमको तो बहुत सारी चीजें मिलती थी, खिलौने मिलते थे, किताबें मिलती थी, गुड़िया गुड्डे मिलते थे और सबसे बड़ी बात वो जो बुड्ढी के बाल होते हैं ना जिसको गुलाबी रंग का होता है वो बहुत सॉफ्ट सा होता है वो मिलता था, वो खाने हम जाया करते थे। तो आप बताइए अपने मेले का कुछ दिलचस्प अनुभव।
0: मेले का अनुभव ये होता है कि जैसे हम पूरी फैमिली के साथ दोस्तों के साथ जाते हैं तो किसी को टिक्की खानी होती है, किसी को चाट खाना होता है, किसी को कुछ गुड्डे गुड़िया खिलौने छोटे बच्चों के लिए लेना होता है।
1: तो टिक्की चाट
0: बचपन किया था।
1: हाँ टिक्की और चाट अकेले खाते हैं कि अपने घर वालों को ले जाते हैं साथ में, उनको भी खिलाते हैं, दोस्तों मित्रों को भी खिलाते हैं?
0: मित्रों को भी खिलाते हैं, दोस्तों को भी, सभी बैठकर मिलकर एक साथ में खाते हैं तो वो आनंद ही कुछ अलग होता है मैम। ऐसे जब साथ में खाते हैं ना तो बचपन की यादें और भी ताजा हो जाती हैं।
1: जी जी। अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: जी मैम फिल्म का नाम है अग्निपथ, श्री गणेशा देवा श्री गणेशा देवा।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत कर रहे हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपके पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम
0: जी, आपका शुभ नाम और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम दोनों दोस्त है, परवनी से। सतीश तावे मेरा नाम है और दोस्त का नाम पांडुरंग मोरे।
0: जी बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
2: फिल्म का नाम है लावारिस।
0: जी जी,
2: तो ऐसे वैसे।
0: अच्छा, ये गाना सुनना चाहते हैं जी। अपने बारे में कुछ बताइए और अपने दोस्त जो जिनका नाम लिया उनके बारे में भी बताइए। कैसी है दोस्ती आपकी? कभी दोस्तों के बीच
1: हमारी
0: पटपट नहीं होती है?
1: हमारी पक्की है।
0: पक्की है?
1: हाँ।
0: अच्छा, कैसे पक्की की दोस्ती? कुछ तकरार नहीं होती कभी?
1: हमारी दोस्ती हमारी 10 साल से है।
0: अच्छा,
2: युवित भारती की दोस्ती वैसा हमारी दोस्ती है।
0: जी जी, अच्छा।
2: जैसा रेडियो मित्र है वैसा हमारा मित्र है।
0: जी, और कुछ कहना चाहते हैं?
2: धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने
2: गणपति बापा की शुभकामनाएं आपको, सबको, जो श्रोता सुनने वाले उनको भी।
0: जी जी, आपको भी।
2: विसर्जन के दिन अच्छा देखभाल करो, बच्चे छोटे छोटे बच्चे है उनके ध्यान दीजिए, क्योंकि आजू बाजू में गाड़े आते हैं।
0: विसर्जन पर ध्यान देने की बात जो कही आपने, बड़ी सही बात कही है कि उस समय एक जो निजी स्तर पर सोच होती है वो आपको ठीक रखनी चाहिए कि मान लीजिए विसर्जन हो रहा है तो उसमें बच्चों का ख्याल रखें, और कोई बीमार मरीज है तो एम्बुलेंस है जा रहा है तो उसको रास्ता दीजिए, वो अपनी भीड़ से निकाल देना चाहिए ताकि कई बार जान को खतरा होता है तो उनकी जान बच जाए। है ना?
2: बारिश तो नहीं गई गई, लंबे बॉडी की तरफ जाना पड़ता है, वहाँ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। बच्चे छोटे छोटे बच्चे, गणपति के साथ में ले जाओ, बड़े बड़े को एक दो अंदर उतर सकते हैं पानी में।
0: जी जी बिल्कुल, और अब सरकार की ओर से बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है कि आपको सीधे पानी में नहीं उतारते हैं, वो बाकायदा जगह जगह कुछ ऐसे गड्ढे भी बनवा देते हैं और वहीं एक सीमा तक जाने देते हैं, सीधे आपको पानी में उतरने नहीं देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपके पसंद का ये गाना।
2: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, आदाब मैडम
0: जी। कौन कहाँ से बोल रहे हैं
1: जी? मेरा नाम नहीं है, मैं देखिए मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ, जिला बड़गाम में हमारा गांव पड़ता है। मैडम जी, आज जब से दोबारा हेल्थ फरमाइश स्टार्ट हुआ था, आपके साथ दूसरी बार बात कर रहा हूँ ममता जी।
0: जी बहुत शुक्रिया, आपका शुभ नाम क्या है
1: जी? नहीं मलिक, मेरा शुभ नाम है, सेंट्रल कश्मीर के बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से आपके साथ बात कर रहा हूँ।
0: तो सबसे पहले तो बड़गांव के बारे में आप जानकारी दीजिए। कश्मीर खूबसूरत वादियों की जगह है, जन्नत का सा नजारा है, तो हमारे श्रोताओं को बताइए बड़गांव के बारे में, वो कैसी जगह है, कहाँ पर?
1: सेंट्रल कश्मीर में, ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ये सेंट्रल कश्मीर में पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा, कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे बड़गांव में ही मौजूद है। हमारा जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर, वो भी हमारे बड़गांव में भी मौजूद है। और हमारा बड़गांव सूफी शायर के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। और अच्छी बात यह है कि ये सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर से मुलाल चौक जो हमारे कैपिटल है वहाँ से मात्र 15 किलोमीटर दूर है
0: जी।
1: और बड़गाम, इस बड़गाम इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें बड़े बड़े गांव है, इसलिए इसका नाम बड़गाम रखा था।
0: अच्छा, क्या बात है भाई। तो वहाँ पहाड़ों के बारे में बताइए, कैसी पहाड़ियाँ हैं, बर्फ वगैरह गिरती है क्या?
1: बिल्कुल गिरती है। जहाँ पर मैं रहता हूँ, मैं टूरिस्ट पॉइंट के आसपास रहता हूँ, दूध पत्थरी एक मशहूर जगह है, उसी के आसपास रहते हैं। जंगल के किनारे है, बड़े बड़े पहाड़ है और बर्फ भी गिरती है, बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है जिस एरिया में मैं रहता हूँ।
0: जी जी, आप क्या करते हैं वहाँ पर?
1: जी मैं बिजनेस करता हूँ, जैसे दीवारों पर पेंट वेंट लगाते हैं, सिटी के जो आइटम होते हैं जैसे बीप कॉक शावर होते हैं, वही बिजनेस में करता हूँ। अपने ही गांव में 2-4 शॉप है हमारे पास, और ऊपर वाले की मेहरबानी से हमारा जो कारोबार बहुत अच्छा जा रहा है।
0: क्या बात है, बहुत बहुत दुआएं इस बात के लिए।
1: क्रिकेट, और बचपन से लेकर अभी तक क्रिकेट खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्रिकेट देखना मुझे बहुत अच्छा है, मूवी देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बचपन के शौक है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये तो शौक बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो तो अपने मोबाइल के गेम में ही गुम रहना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर के स्क्रीन पर, वो खेलना नहीं चाहते, उनको बोला जाए तो भी नहीं जाते, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं ये खेल वगैरह, इसकी कोई कोशिश करते हैं आप?
1: बिल्कुल करते हैं, क्योंकि आजकल पहले जमाने में नहीं होते, लेकिन आजकल स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स टीचर अलग मिलते हैं और सरकार ने भी कदम उठाया, तो बहुत अच्छा, इसमें हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जो आजकल जो नशीली दवा होते हैं, ड्रग्स वगैरह होते हैं, इससे हमारे बच्चे दूर रहते हैं
0: जी। और दूसरी बात ये कि यहाँ आपके इलाके में तो खुली वादियां हैं, खुली जगह है, वहाँ खेलने के लिए जगह भी मिलती होगी?
1: बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
0: तो कभी बर्फ गिरी हो और आप क्रिकेट खेलते रहे हो, ऐसा कोई अनुभव है?
1: बचपन में हमने खेला है, तो 2-4 बार हमने खेला है।
0: बारिश हो रही
1: थी, बर्फ गिरी थी, हमने क्या किया, यहाँ बर्फ जमती है, बहुत ज्यादा जमती है, और उस पर पिच लगाना बहुत आसान होते हैं। फिर हम टेनिस बॉल उस सबसे ज्यादा खेलते हैं, उस बर्फ पे बचपन में क्या करते हैं, बर्फ को छोटे छोटे बॉल बनाते हैं और एक दूसरे पर
0: फेंकते
1: हैं, बहुत ज्यादा होती है।
0: क्या बात है, ये तो आप बचपन की बात बता रहे हैं। जो टूरिस्ट होते हैं, पर्यटक, वो तो अभी जब जाते हैं घूमने के लिए तो वो बड़े भी खेलते हैं ऐसे बर्फ का गोले बना के एक दूसरे पर फेंकते, वही तो खेल का आनंद होता है बर्फीली वादियों में, वो तो बहुत एंजॉय करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा है, मैंने देखा है 2-4 बार मैंने देखा है।
0: और अब तो उसे वीडियो बनाने के लिए भी ये किया जाता है, खेले चाहे ना खेले लेकिन वीडियो जरूर बनाते हैं लोग। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: क्योंकि मैं कश्मीर में रहता हूँ तो मैंने गाना भी वही चुना है, फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, संजय कपूर वाली एक मूवी आई थी सिर्फ तुम, उदित नारायण की खूबसूरत आवाज, यानी कि बोले पंचेश्वर में गाते हैं बावरे गुनगुनाते हैं।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अब बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। ममता दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं डिस्ट्रिक्ट चौराहे सुनारी असम से भाईकन मुंडा बात कर रहा हूँ।
0: भाईकन मुंडा?
1: जी मैम।
0: अच्छा, कौन सी जगह?
1: चौराहे डिस्ट्रिक्ट सोनारी असम।
0: जी जी, जरा उस जगह के बारे में बताइए, आप जहाँ से बोल रहे हैं।
1: जी मैम, यहाँ तो मौसम अभी सुहाना है, अभी तो चारों तरफ हरियाली हरियाली है, धान खेती का ये अभी है ना, और चाय बागान है।
0: चाय बागान देखने में बड़ा अच्छा लगता है दूर दूर से, लेकिन उसकी सुना है कि उसकी पत्तियां काटने में बहुत टाइम लगता है, तो आपने ये काम किया है कभी?
1: हाँ हाँ, मैं चाय पत्ती का पहले चाय पत्ती को तोड़ के उसको फैक्ट्री मतलब कारखाने में उसको लेके जाता है, इसको प्रोसेस रहता है मैम वो चाय पत्ती बनाने का।
0: जी
1: तो
0: जी,
1: उसमें मशीनें डाला जाता है।
0: हाँ।
1: फिर इसके बाद उसको सुखाया जाता है, फिर चाय पत्ती बन के रेडी होता है, फिर इसको पैकिंग किया जाता है, ऐसा है,
0: और लोग फिर चाय का स्वाद लेते हैं। और
1: जी जी मैम,
0: स्वाद लेते हैं, तलब भी होती है। वहाँ का एक नृत्य बहुत मशहूर है, आपको पता है कौन सा?
1: यहाँ का बिहू। हाँ मैम, बिहू तब यहाँ का मतलब बिहू ही तो असम का जातीय उत्सव बोलते हैं ना हम लोग।
0: जी, तो कौन से उत्सव पे ये नृत्य किया जाता है?
1: मैम देखिए, यहाँ तो बिहू नृत्य, बिहू जो है वो बैसाख महीने में ये होता है मैम, पहला बैसाख से ये महीने भर चलता है।
0: जी जी, तो आप बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है फूल और अंगार, उसमें गाना है चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। और मैम आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही, पहली बार कॉल लगा है मेरा, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, आज कॉल लगा है तो खुशी हो रही।
0: बहुत खुशी हमें भी हो रही है। अब बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं आपको कि आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
0: जी बेमेतरा छत्तीसगढ़ की हसीन वादियों से योगेश जांगड़े बोल रहे हैं।
1: जी भाई, छत्तीसगढ़ की हसीन वादियाँ मतलब कैसी हैं? वहाँ पर क्या पहाड़ी इलाका है क्या ये? वो तो
0: जो बस्तर और सरगुजा का क्षेत्र है ये वनांचल क्षेत्र है।
1: जी जी अच्छा।
0: तो पर्वत पहाड़ तो मतलब काफी है, जंगल है, घना जंगल कह सकते हैं। और जब वहाँ घूमने भी जाना होता है तो वो रास्ते में ही इतना मजा आ जाता है कि क्या कहें।
1: बहुत बढ़िया। तो आप वहाँ के जंगलों के बारे में जरा कुछ बताइए।
0: काफी घना जंगल है और वहाँ जाते हैं तो जो चित्रकूट और तीरथगढ़ का जो जलप्रपात है वो काफी मनोरम है। और रास्ते काफी मतलब जैसे सर्पाकार नहीं होते,
1: अच्छा
0: उसी तरह से काफी मतलब मुश्किल भी है ऐसा कह सकते हैं।
1: जी जी,
0: लेकिन आनंद भी बहुत आता है।
1: छाया दिखती होगी और वो जो
0: जी,
1: एक समय ऐसा लगता है कि अब रास्ता बंद हो रहा है लेकिन पता चला कि वहां से एक रास्ता खुल जाता है। तो जंगलों में जाते हुए जो इस तरह से दिखाई पड़ते हैं रास्ते, वो बड़े लुभावने और सुहावने लगते हैं। एक वहाँ सतपुड़ा के घने जंगल कितनी दूर है वहाँ से? जंगल
0: दूर है हमारे यहाँ।
1: अच्छा, सतपुड़ा के घने जंगल पर एक भवानी प्रसाद मिश्र की कविता भी है जो बिल्कुल वो दृश्य पैदा करते हैं। वो जैसे सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल, याद है आपको ये कविता?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से तो कविताएं हमने पढ़ी भी हैं। और अभी तो आज ये हिंदी दिवस भी मनाए हैं तो काफी अच्छा लगता है संगीत से जुड़ना, कविताओं से जुड़ना।
1: आगे की पंक्तियां कुछ याद है भवानी प्रसाद मिश्र की इस कविता के? झाड़ ऊंचे
0: तो
1: इस तरह से कुछ है, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख भींचे, घास चुप है, काश चुप है, मूक शाल पला

0: आकाश चुप है, बन सके तो धंसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। ऐसे पूरे लगता है कि हवा जंगल में आ रही है, हवा को भी आने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, मतलब पूरा जंगल का दृश्य उपस्थित किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने बच्चों को इस तरह की कविताएं बतानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, उन कविताओं के बारे में बताना चाहिए, जब खास तौर से जब ऐसे जंगल की ओर, जंगल की सैर के लिए जाते हैं तो, है ना।
1: जी।
0: एक बात और कहनी थी कि ये जो जंगल है, जंगल की खूबसूरती है, इसको बचाए रखने के लिए हम सबको क्या कुछ करना चाहिए?
2: देखिए, जंगल तो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, और जो हमारा मानव जीवन ही नहीं, मतलब जो हमारा पूरा पृथ्वी जगत कह सकते हैं, जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, सारी चीजें आती हैं, तो बचाने के लिए तो यही है कि जंगल

0: पेड़ पौधे सारी चीजें आती है। तो बचाने के लिए तो यही है कि जंगलों के कटाव को रोके, और जो बहुत ज्यादा हम अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जंगलों का जो काटने का काम कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इनको बचाना जरूरी है।
1: बिल्कुल सही बात है। और नए पौधे रोपने चाहिए, ये नहीं कि बाप दादा ने जो लगा दिए हैं, जो पेड़ आम के पेड़ लगा दिए बस वही आम खा रहे हैं, वही जामुन खा रहे हैं। नए पेड़ भी लगाने चाहिए ताकि जंगल की संपदा हमेशा बनी रहे, हरी भरी बनी रहे।
0: बचपन में हमने लगभग 20 पेड़ लगाए थे तालाब के किनारे किनारे, और वो पेड़ तो आज बहुत वृहद हो गए हैं, लगभग 20 से 25 साल के।
1: जी बहुत बढ़िया। और रोज नहीं तो किसी खास मौके पर एक एक पेड़ रोपते रहे तो कितने सारे हो जाएंगे। और क्या काम काज है आपका?
0: हमारा प्रमुख रूप से खेती बाड़ी का काम है।
1: अच्छा, तो कौन सी फसल उपजती है वहाँ पर?
0: अभी तो धान बहुत आया था, और छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा भी कहा गया है।
1: बिल्कुल, और वहाँ के चावल बड़े खुशबूदार होते हैं, बड़े सॉफ्ट और मिठास होती है उनमें। कौन कौन से चावल पैदा होते हैं?
0: बासमती, ये जो मिठास की अब बात की है वो है, और हमारे इलाके में सरना और महमाया, ये दो किस्में ज्यादा लगाई जाती हैं।
1: जी जी, तो अब बताइए आपको गाना कौन सा सुनवाया जाए?
0: फिल्म कलाकार से सुनवा देंगे, नीले नीले अंबर पर चांद जो आए।
1: बहुत बढ़िया बातचीत कही आपने, अब बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपके पसंद का ये गाना।

0: किलोमीटर दूर है, जो कि विश्व प्रसिद्ध संरक्षित स्मारक है। और उसके निर्माण में भी बहुत सारे कारीगर इंजीनियर ने योगदान दिया है।
1: देखिए नेहा जी, आप इंजीनियर हैं पेशे से और ये बात बता रहे हैं कि बहुत सारे इंजीनियर्स का योगदान है इस जगह के बारे में। तो जो हम बात कर रहे हैं ना, जिन ध्वनि तरंगों के माध्यम से हम बात कर रहे हैं आपसे, यहाँ भी इंजीनियर का बहुत बड़ा योगदान है। हम तो ये कहेंगे कि अगर इंजीनियर का योगदान नहीं रहे तो ये जहाँ रेडियो जो चैनल है, जैसे रेडियो के प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होते हैं, वो फिर कैसे होगा। आप चूंकि पेशे से इंजीनियर हैं तो आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ कहेंगे।
0: जी, हम जो देश के महान इंजीनियर और भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन की याद में इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है, और यह भारत रत्न उनके मेहनत को सम्मानित करने के लिए यह दिन तय किया गया था।
1: जी जी,
0: श्री विश्वेश्वरैया जी ने कावेरी नदी पर कृष्ण सागर बांध और बाढ़ सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए।
1: जी जी,
0: और श्री विश्वेश्वरैया जी के बारे में क्या कहे, उनकी इतनी उपलब्धियां इस आधुनिक भारत को है, इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत का विश्वकर्मा कहा जाता है।
1: नेहा जी, हमें बताइए कि अब जो जमाना है, बिल्कुल तकनीक का ही जमाना कहा जाता है इसे, और जो नई पीढ़ी आ रही है तकनीक से ही जुड़ी हुई है, तो तकनीक का जो उपयोग भी होता है, सदुपयोग कई बार दुरुपयोग भी होता है, इस पर आप कुछ कहेंगे कुछ।
0: जी, किसी भी चीज के सदुपयोग और दुरुपयोग को ही आप वरदान या अभिशाप कह सकते हैं। तकनीक के क्षेत्र में भी यही है। तकनीक का इस्तेमाल यदि हम अच्छी बातों के लिए, जैसे हम मसलन आजकल की युवा पीढ़ी यूट्यूब रील्स इत्यादि कई चीजों में उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रही है, और कई बार उन्हीं चीजों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। तो यही है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, विज्ञान अभिशाप और वरदान इसी रूप में है। इसी तरह से तकनीक भी अभिशाप और वरदान इसी रूप में है।
1: अच्छा नेहा जी, ये बताइए कि चूंकि आप इंजीनियर हैं तो आपने, और आकाशवाणी में इंजीनियर हैं, तो क्या नई तकनीक आपने लाई है, मतलब आपको क्या लगता है कि इन दिनों नई तकनीक क्या क्या आई है, कुछ परिवर्तन के बारे में बताइए ना।
0: जब मैंने इस विभाग में अपनी सेवाएं देने शुरू की थी, तब एक बहुत ही सारी चीजें मैकेनिकल हुआ करती थी, रिकॉर्डिंग से लेके एडिटिंग से लेके, और मैकेनिकल हुआ करती थी, जो कि काफी वक्त और गुणवत्ता में भी उतनी उत्कृष्ट होने में काफी समय लेती थी। पर नई तकनीक की वजह से, हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम में रिकॉर्डिंग होने की वजह से, और अभी तो हमारे पास AI है, अभी हमारे पास प्रसारण में भी हमारे पास अपना वेब ऐप है, और हमारे पास न्यूज ऑन एयर ऐप है, तो इन सब गुणवत्ता बढ़ने से तकनीक में करीब करीब मैं बता रही हूँ कि 360 डिग्री जो हुआ है, परिवर्तन हुआ है।
1: जी, बहुत बढ़िया बात कही। अब बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाया जाए।
0: जी, मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे इंजीनियर से जुड़ा एक गाना बेहद पसंद है, जब आओ लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल।
1: क्या बात है,
0: थिंकिंग इडियट का गाना है और मुझे बेहद पसंद है।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब हम बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, मैं हेलो फरमाइश से बात कर रही हूँ।
0: हाँ जी, हेलो फरमाइश में ही आपका फोन लगा है, बताइए आप
1: जी,
0: कौन बोल रही।
1: मैं नेहा तिवारी छतरपुर से बोल रही हूँ।
0: जी बताइए नेहा जी।
1: बहुत मशक्कत के बाद मुझे आपका फोन लगा है
0: जी
1: विविध भारती में।
0: जी बहुत शुक्रिया कि आपका फोन लगा और स्वागत है इस प्रोग्राम में। बताइए आप छतरपुर से बोल रही ना।
1: जी जी जी जी छतरपुर से बोल रही हूँ।
0: छतरपुर के बारे में बताइए और नेहा जी अपने बारे में बताइए।
1: जी, मैं एक इंजीनियर हूँ पेशे से
0: जी।
1: और छतरपुर हमारा बहुत ही जो एक विरासत है, चंदेला राजाओं के द्वारा बनाई गई खजुराहो, वो करीब मेरे छतरपुर से 50 किलोमीटर

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश दीदी, आपको प्यार भरा नमस्कार। ममता दीदी को प्यार भरा नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार आपको भी विविध भारती परिवार की ओर से। बताइए आपका नाम क्या है?
1: जी मैं अशोक कुमार प्रजापति करौता लोहता वाराणसी से।
0: जी अशोक प्रजापति जी, बताइए क्या हाल है, वाराणसी का क्या हाल है?
1: वाराणसी का हाल चाल दीदी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है।
0: वो जो बनारस में गंगा आरती होती है शाम को, उसके बारे में बताइए जरा।
1: जी हाँ, गंगा आरती के बारे में आपने कहा तो दफा सुमे घाट पर हमारे कनमदे आरती कनमदे होता है 7 बजे से। आरती बहुत बढ़िया होता है और दुकानदार और हम लोग समय से पहुंच जाते हैं वहाँ पर और देखने के लिए तो हम लोग जगह करते हैं मैम, और बहुत बढ़िया ढंग से होता है और हाथ जोड़ के सभी लोग खड़ा रहते हैं, दुआ मांगते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं।
0: भाई उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी है और वहाँ बनारस की सुबह बड़ी खूबसूरत होती है, जब गंगा जी में जैसे सूरज बिल्कुल उगता है पानी में से, ऐसा दृश्य होता है। तो वो दृश्य हमने तो नहीं देखा लेकिन लोग बताते हैं, आपने देखा है कभी?
1: जी नहीं कन्नम, ने देखा नहीं है, हम तो जाते हैं देखे हैं, ये बात नहीं है समय से। तो सच बात है कि हम लोग जब जाते हैं, जैसे विश्वनाथ जी गए और गंगा जी घूमने गए और समय के हिसाब से अगर आरती के समय से हम लोग जाते हैं तो जैसे तर्तीवार हो गया तो तब ठीक है, पहुंच गया, बड़ा बढ़िया से हम लोग देख लेते हैं।
0: सही बात है, बनारस की चाट बड़ी मशहूर है, बनारस का पान बड़ा मशहूर है, अब हम ही सब बता देंगे, आपको कुछ बताएंगे?
1: जी बनारस के तो आपने पान के बारे में ये बात कही है ममता दीदी, हकीकत सच बात है कि हर व्यक्ति के मुंह में जो उम्र हो जाती है, छोटे बच्चे तो नहीं 18 साल से चालू कर लेते हैं पान खाना, और जो और पान भी खाएंगे और काम धंधा में अपना व्यस्त रहेंगे।
0: और वहाँ की गलियाँ पतली पतली सकरी सकरी गलियाँ,
1: हाँ ये तो पतली पतली जो गलियां है, जैसे कि कचौड़ी गली में है और जैसे कि बहुत दूर से कचौड़ी गली में हिलते ही मतलब खोआ मंडी में, जैसे एक अजीब सा महकाती है कि हमने कचौड़ी गली आ गया।
0: अच्छा कचौड़ी गली का नाम लिए, सुनिए कचौड़ी गली का नाम लिए, कचौड़ी गली का एक लोकगीत में भी आ गया है वो कचौड़ी गली, याद है क्या वो गनवा आपको?
1: जी जी जी
0: याद है तो सुनाइए जरा।
1: जी नहीं हम गा सकते,
0: नहीं गा सकते,
1: नहीं नहीं गाना तो देखिए कचौड़ी पर जो आपने बात कहा है कि गाना आ गया तो हमने सुना नहीं है दीदी, देखिए बात जो हकीकत है तो कचौड़ी गली जो हम लोग के बाप दादे से सब बहुत सदियों से ये है का नाम है, हम लोग की पैदाइश नहीं हुई थी तब भी कचौड़ी गली हम लोग जब जानकार हुआ तो हम लोग भी जब बनारस जाने लगे तो बाऊ जी से पूछने लगे पिताजी से कि ये कचौड़ी गली कौन सा होता है, कल कचौड़ी हुआ मशहूर है, कचौड़ी इतना अच्छा बनता है स्वाद, हो सकता है शायद विश्वनाथ जी के दुआ है कि कनमरे जय शंकर मोचन का भगवान श्री राम जी का, जो भी सचमुच है कि कचौड़ी ऐसा नहीं बन पाता,
0: कहीं नहीं मिल पाता, वो स्वाद नहीं मिल पाता, जो बनाते हैं उनके हाथ की भी प्रशंसा की जानी चाहिए कि जो मनोयोग से बनाते होंगे वो एक अलग तरह का स्वाद होता है और फिर वो जगह प्रसिद्ध हो जाती है। तो अलग तरह की बात है कि कचौड़ी के नाम से वो गली मशहूर हो गई है, और छोटे शहरों की ये खासियत है कि पान वाली गली और कचौड़ी गली और जो खस्ता दमालू वाली गली, इस तरह से नाम जो मशहूर हो जाते हैं बड़ा अच्छा लगता है। किसी व्यक्ति के नाम से मशहूर होते हैं, किसी महापुरुष के नाम से जगह वो मशहूर हो जाती है, वो जगह उसकी एक अलग तरह की खासियत होती है ना। और कौन कौन से घाट वहाँ के मशहूर हैं?
1: हाँ तो जी जैसे कि दशाश्वमेध घाट से 80 घाट, इतना घाटे से सब एक एक घाट जुड़ा हुआ है, सब हम लोग जब जाते हैं ना हम लोग को खुद नहीं पता चलता कि ये घाट तो हमने 10 मीटर चले फिर 10 मीटर चले फिर 20 मीटर, सब घाट ही घाट घाट ही घाट, तो इसीलिए 180 घाट उसको माना जाता है।
0: जी जी
1: 180 घाट सब जुड़ा

0: हुआ है।
1: बिल्कुल। अच्छा बताइए, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
0: जी गाना जरूर सुनना चाहते हैं। ऐ मेरे हम सफर एक

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, ममता जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: जी बताइए, उज्जैन के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: जी बताना चाहेंगे, उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर का मंदिर प्रसिद्ध है
0: जी,
1: जो बिल्कुल शिप्रा नदी के किनारे बना हुआ है। और बताना चाहेंगे, यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। सिंहस्थ का मेला भी 2028 में लगाया जाएगा यहाँ पर।
0: अच्छा, और आपका क्या काम काज है?
1: हाँ, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ ममता जी, और एक भजन गायक भी हूँ।
0: अरे वाह, गायक है, भजन गायक, तो कुछ गा के सुनाइए।
1: हाँ जी, हाँ, उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, हमारे 8 लोगों का ग्रुप है, उसमें हम 4 लोग आने वाले हैं, दो हारमोनियम बजाते हैं, ढोलक और एक तबला बजाते हैं।
0: तो आप हारमोनियम बजा के गा लेते हैं कि सिर्फ गाते हैं? हारमोनियम कोई और संगत करता है?
1: मैं गाने का काम करता हूँ।
0: तो ये कुछ गाने के लिए सीखा आपने कि बस ऐसे गाते गाते शुरू हो गए?
1: हाँ, बस कहीं सीखा तो नहीं ममता जी, बस मोबाइल पे या ऐसे जो रिकॉर्ड होते हैं ना, उनको सुन सुन के मतलब सीखे हैं हम 2019 में, जब कोरोना टाइम आया था उस समय पर।
0: अच्छी बात है।
1: जी, हमारे गुरु जी है, वो हमें सिखाते हैं। निर्गुणी भजन की प्रस्तुति भी हम देते हैं ज्यादातर, और भजन कीर्तन का प्रोग्राम भी करते हैं।
0: जी, बड़ा बढ़िया लगता है भाई। अब तो जैसे समय लोगों के पास कम होने लगा है कीर्तन वाला, तो जैसे युग ही खत्म हो रहा है, बहुत कम बचे हैं लोग जो कीर्तन गाते हैं। नहीं तो बाकायदा कीर्तन गाने के लिए बुलाया जाता था लोगों को घरों पर भी।
1: हाँ बिल्कुल, ऐसा तो हमारे इधर भी ममता जी ऐसा ही है, किसी बच्चे का बर्थडे हुआ या कोई धार्मिक फंक्शन होता है ना प्रोग्राम, उनके मतलब यहाँ पर हमें बुलाया जाता है।
0: अच्छा,
1: और हर मंगलवार और ऐसा जो मंगलवार के दिन तो हमारा प्रोग्राम फिक्स होता है हमारे मंदिर पर।
0: तो किन कवियों की रचनाएं आप गाते हैं ज्यादातर, जो भजन गाते हैं?
1: ज्यादातर तो, हाँ बिल्कुल बताना चाहेंगे, ज्यादातर तो हम प्रहलाद सिंह टिपानिया जी के भजन गाते हैं, निर्गुणी भजन, और एक और भजन आते हैं यूट्यूब पर राजू दास जी के, उनके भी मतलब हमने भजन काफी गाए हुए हैं।
0: जी, प्रहलाद सिंह टिपानिया तो जब गाते हैं तो लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं। तो अब जरा अपने हुनर के बारे में बताइए, आप जरा।

0: तारे तू। जी ममता जी,
1: जी बहुत बढ़िया आपने गाया, और हमारे श्रोता भी सुन रहे होंगे भाई, जिनके पास ये कला होती है वो बड़े खुश रहते हैं। जब आपका मन थोड़ा बहुत दुखी हो, उदास हो, तो आप गाकर खुद को हील कर सकते हैं, खुद को आप खुश कर सकते हैं ना। तो अब
0: जी बिल्कुल
1: कौन सा,
0: और बताना चाहूंगा मैं, उससे पहले बताना चाहूंगा मैं मोबाइल ऐप पे विविध भारती के कार्यक्रम सुनता हूँ, और सखी सहेली हेलो फरमाइश पिटारा के तहत आने वाले सभी कार्यक्रम को सुनता हूँ, और बड़े ध्यान से सुनकर मतलब कुछ ऐसे बातें होती है ना, उन्हें नोट भी करता हूँ।
1: जी बहुत बढ़िया, इसी तरह सुनते रहिए। फिलहाल बताइए अभी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: जी फिल्म का नाम है इतिहास, और गाने के बोले जुदा अपने दिलबर से होने लगी है।
1: धन्यवाद, आपने हमें फोन किया और इतनी सारी बातचीत की। अब बातचीत को दे रहे विराम, आपको सुनना

दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उनसे करबद्ध निवेदन है कि वो हमें कृपया अगली बार 2 महीने बाद

0: कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर है 4002466। मुंबई का STD कोड है 022, और जब भी आप फोन नंबर डायल करें उससे पहले मुंबई का STD कोड 022 जरूर डायल करें। चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण भंग, संपादन सहयोग सौरभ घारू, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, तो रोजाना सुनिए पिटारा। पिटारा
2: आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। FM बैंड 101.3 MHz पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 11 बजे हैं। लीजिए पेश है गैर फिल्मी नगमों व गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुना रहे हैं अभिजीत द्वारा गाए कुछ गैर फिल्मी नगमे।

0: सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
2: राजेश फ्लैट पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट, इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत।

0: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

आप सुन रहे थे अभिजीत भट्टाचार्य द्वारा गाए कुछ गैर फिल्मी नगमे कार्यक्रम सुगम संगीत में। इसी नगमे के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। प्रातः के 11:30 हुए हैं। समय चला है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत की पहली प्रस्तुति में आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और कुमार सानू के गाए इस गीत को फिल्म अलबेला से। इस गीत को लिखा है समीर ने, धुन है जतिन ललित की।

संगीतकार कामरान अहमद के संगीत से सजे इस गीत को सुना रहे हैं फिल्म हंगामा से। आवाजें हैं अभिजीत अलका और सोनू निगम की। इस गीत को लिखा है समीर ने।

गीतकार शकील आजमी के लिखे इस गीत को आप सुन रहे थे फिल्म जहर से। आवाज थी आतिफ असलम की। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जन्नत से। आवाज है केके की। गीत और संगीत है कामरान अहमद का।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य,

0: टी विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: फिल्म संगीत की अंतिम प्रस्तुति में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बरसात से ये गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। गीतकार हैं समीर, संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

0: आप सुन रहे थे बरसात फिल्म से ये नगमा, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। इसी नगमे के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।
1: द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री ढोंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री ढोंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
2: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
1: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HJT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। एक रिपोर्ट।
3: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में

0: एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के दो आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मदरटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का लाभ केवल बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका लाभ भारत के किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए। अमेरिका के सिएटल में आइडियाज फॉर इंडिया फोरम में भारतीय अमेरिकी टेक विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान उन्होंने उद्योग जगत से एआई को आम लोगों तक पहुंचाने, देश की डेटा संप्रभुता और मानवीय निगरानी पर ध्यान देने का आग्रह किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भी कहा कि एआई की सफलता का आकलन समाज को होने वाले लाभ से किया जाना चाहिए। दुष्प्रचार करने वाले पाकिस्तानी अकाउंट द्वारा प्रसारित एक फर्जी वीडियो का सरकार ने खंडन किया है। इस वीडियो में कथित तौर पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश को दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी और एआई से निर्मित बताया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली तेजी देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 113 अंक बढ़कर 74,427 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर के गाये गाने से। बोल निदा फाजली के हैं, संगीत उषा खन्ना का और फिल्म स्वीकार किया मैंने।

स्वीकार किया मैंने। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। और आपको याद दिला दें, आज जानी मानी अदाकारा शबाना आजमी का जन्मदिन है। तो चलिए विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें देते हैं जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां, और आज का ये कार्यक्रम उन्हीं के नाम करते हैं। सुनिए अगला गीत।

0: फकीरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहली बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
2: पेंटर बाबू
1: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
3: दिल तो पागल है,
1: दुश्मन
4: चिट्ठी न कोई संदेह,
1: गदर एक प्रेम कथा,
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
1: दास्तान बेमिसाल संगीत की,
6: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाँव,
1: एक उत्तम जीवन की

एक मूड, एक कैफियत गीत का चेहरा होता है। कुछ सही से लफ्ज जड़ दो, मौजूं से धुन की लकीरें खींच दो, तो नगमा सांस लेने लगता है, जिंदा हो जाता है। बस इतनी सी जान होती है गाने की, एक लम्हे की जितनी। हां, कुछ लम्हे बरसों जिंदा रहते हैं। गीत बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरों पर झुरियां नहीं गिरती, वो पलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सुनने वालों की उम्र बदल जाती है तो कहते हैं, हां वो उस पहाड़ का टीला जब बादलों से ढक जाता था तो एक आवाज सुनाई दिया करती थी।

0: क्या करें जब अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए? कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण? ब्रेन स्ट्रोक आने पर किन बातों का ख्याल रखें? सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका एमआरआई करना पड़ेगा।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज शबाना आजमी जो जानी मानी अदाकारा हैं उनका जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से हम बधाई दे रहे हैं और उन्हीं के नाम आज का यादों की महफिल कार्यक्रम। ये लिबास फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर और सुरेश वाटकर की आवाजें, गुलजार के बोल, राहुल देवबर्मन का संगीत।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में ये था गुलजार का लिखा गाना। संगीतकार राहुल देवबर्मन और फिल्म थी लिबास। लीजिए अब पेश है अर्थ फिल्म की एक गजल जगजीत सिंह की आवाज में। कैफी आजमी के बोल कुलदीप सिंह की तर्ज है।

0: जम्बो जेट जम्बो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्हा भेट जम्बो जेट सोई।
1: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
0: रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
1: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
0: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल ही चुका है कि ये इस प्रोग्राम में हम एक टेक्स्ट यानी इबारत लिखते हैं, उसमें से आपको शब्द और गाने ढूंढने पड़ते हैं। तो चलिए हम इबारत आपको पढ़ के सुना देते हैं आज की, जिन्होंने पढ़ी नहीं है इबारत। उसने डायरी के एक पन्ने पर कोई अफसाना लिखा था, खामोश अफसाना। मेरी निगाहें यदि नजरों ने चुपके से उसे पढ़ लिया था, लेकिन न बोला कुछ। उसकी खामोश आंखें कुछ कह रही थीं। उसकी आंखों में जाने कितने सवाल थे और शायद किसी जवाब का इंतजार भी। मैंने कहा, चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। उसने नजरें फेर ली और मुस्कुराकर डायरी को छुपाकर अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों ने कहा, हम इंतजार करेंगे, छोटी सी दुनिया, पहचाने रास्ते, कहीं तो मिलोगी। हम दोनों की अपनी एक छोटी सी दुनिया थी, जहां शब्दों की जरूरत नहीं थी, बस आंखें थी, इंतजार था और अधूरा अफसाना। फिर हम बिछड़ गए, लेकिन बिछड़ना फिर मिलना जिंदगी का दस्तूर है। एक अजीब शाम जब वो मिला तो जिंदगी खूबसूरत हो गई। अब जरा बताइए दोस्तों, किस मोड़ पर मिला वो, मिला या नहीं मिला, ये आपको पूछना है। आप सभी से ये सवाल है, आंखों से कैसी हुई बातें, दीजिए इन सवालों के जवाब। बोलती हैं आंखें जब हम नहीं बोलते। और आज ये भी बताइए कि डायरी के पन्ने पर आपने क्या कुछ लिखा, और आंखों से कब आप बोलते रहे, किससे आपने आंखों से गुफ्तगू की, और आंखों की भाषा कब आपने समझी। कई बार प्रेम के ऐसे लम्हे आते हैं जब आंखों की भाषा समझ में आती है। कई बार ऐसा लम्हा भी आता है जब माँ आंखों से कुछ कहती हैं और आप डर जाते हैं और उनकी बात आप मान लेते हैं। तो आंखों वाली भाषा कब आपने बूझी, कब आपने बुझाई, और साथ में डायरी के पन्ने पर क्या कुछ लिखा है, जरूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। अब जरा सुनिए गाना और बताइए इसमें कौन है कलाकार।

आपको बताना है फिल्म का नाम, संगीतकार का नाम पता है तो वो भी बताइए, गाना तो आपने बूझ लिया होगा कौन सा गाना है।

हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया फासले और कुछ श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में, जहां डायरी में लिखे अफसानों की बातें होंगी। क्या होता है जब आपकी डायरी चुपके से पढ़ ले कोई, क्या होता है जब हम आंखों से किसी के भीतर क्या चल रहा है पढ़ लेते हैं, तो नजरों से पढ़ने को किसे कितना इल्म है। तो सुरीले सफर में गीतों के माध्यम से जानते हैं, बिल्कुल जानिए। और हम तो ये कह रहे हैं कि सारे श्रोता अपने दिल की बात बताएं और बताएं कि आंखों से कौन सी भाषा आपने कही, सामने वाले ने समझ ली किससे कही, और आपने कब समझी आंखों की भाषा किसकी, पत्नी की, प्रेमिका की, अपने माँ की, पिता की, भाई की वगैरह। और एक श्रोता ने लिखा है कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, तेरी आंखों की चाहत में गानों के बहुत सारे बोल लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है अफसाना, नजरें, आंखों, चुप, छोटी, इंतजार, शाम, जिंदगी, हो सकते हैं आज के शब्द। आज के शब्द ढूंढना तो बहुत आसान है और गाने चुनना भी बहुत आसान है, बहुत सारे श्रोता चुन भी रहे हैं और हम उन श्रोताओं के गानों को शामिल भी कर रहे हैं अपनी प्लेलिस्ट में, क्योंकि आज हमने सोचा था कि आपके चुने हुए गानों से ही अपनी प्लेलिस्ट बनाएंगे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आंखों आंखों में बात होने दो, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है कि डायरी लिखना कितना विशिष्ट होता है, कितना असाधारण, वो भी जब खामोश सा कोई अफसाना डायरी में दर्ज करना हो, श्यामल रातों में जलने वाले दीपक के

लौ देखकर प्रेमी का इंतजार करना, कुछ प्रतीक्षा जीवन का आकार ले लेती है, वो समाप्त नहीं होती। प्रतीक्षा में शब्द नहीं होते, वे तो प्रकट होते हैं हवा की थरथराहट से, मोबाइल की हल्के कंपन से। प्रतीक्षा में धीरज ने एक बेचैन ठहराव होता है। बरामदे में बैठी प्रियतमा हर सांझ सड़क की ओर देखती है, वही मोड़, वही पेड़, वही धूल से भरा रास्ता। वो जानती है वो आएगा फिर से। तो इसमें आज की इबारत में हमने बहुत सारे सवाल भी पूछे, इन्होंने जवाब भी दे डाला है कि वो आएगा। हमने ये भी पूछा है कि कब आएगा, कैसे आया और किस मोड़ पर आया, और डायरी के पन्नों में आपने क्या कुछ अंकित किया, गाने के बोल, फिल्म का नाम, कहानी, कविता, या अपनी दिनचर्या, या फिर अपनी कोई दुखद बात, या कोई बहुत खुशगवार लम्हा, बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। फिलहाल बताइए कौन है हीरो हीरोइन।

अनपढ़ फिल्म का गाना था और हमने पूछा था कौन है कलाकार हीरो हीरोइन का नाम। अभी तक श्रोताओं की ओर से बहुत जवाब नहीं आए तो हम इंतजार करेंगे, अगले गाने के बाद आपको बताएंगे सही जवाब। तब तक आप लिख सकते हैं इस फिल्म में कौन थे कलाकार, इसका जवाब आप लिख सकते हैं और हम आपको बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे डायरी लिखने की आदत तो नहीं पर अपने पसंदीदा गीतों को विविध भारती से सुन सुनकर नोटबुक पे नोट जरूर करती थी ताकि उन्हें पढ़कर गा सकूं। इस तरह से काफी सारे नोटबुक का कलेक्शन हो गया था और कितने गीत मुजबानी याद भी हो गए। फिर समय के साथ बहुत कुछ बदल गया, अब तो सब कुछ मोबाइल में मौजूद है। तो जरा आज ये जो इबारत है इसमें जो शब्द हैं शब्दों से गाने याद कीजिए जो डायरी में आपने लिख रखे नोट किए हैं गाने के बोल फिल्म का नाम, तो कोई ना कोई गाना तो इसमें होगा, लिखिए और हम उसे अपनी प्लेलिस्ट में शामिल करके आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी श्रोताओं से ये अनुरोध है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सफर में अफसाने के निगाहों के चुपके से देखने खड़े रहने के एक मोड़ पर मिलना बिछड़ने की छोटी सी दुनिया में कभी तो मिलने के खामोशी से आंखों से देखने के गीत एक गुलदस्ते के समान सुनने को मिलेंगे। धन्यवाद, मेरा नाम लिखा है। धन्यवाद तो आप सभी को हम कह रहे हैं कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हैं। और हाँ, जो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं उसके जवाब भी देते चलिए और जो गाने हैं शब्द हैं शब्दों को चुनते चलिए और गाने के बोल लिखते चलिए। अब जरा सोचिए कि ये गाना आपने याद किया था आज, मुझे तो अब तक ये गाना नहीं नजर आया था लेकिन हमने सोचा कि ये गाना बजा कर देखते आप में से कितने

लोग इस गाने को सुनते हुए कौन सी बात याद कर सकते हैं, डायरी वाली बात या जो इबारत में हमने सवाल पूछा है कि वो मुलाकात किस तरह से हुई, जो बिछड़ गया राही तो वापस मिला तो कहाँ, किस मोड़ पर, कैसे मिला, कैसे मुलाकात हुई और आंखों से कौन सी बात कही। फिल्म का नाम बूझिए, किसकी है आवाज ये भी बूझिए, दो आवाजें हैं। विविध भारती से किस प्रोग्राम में ये गाना सुना था ये भी बताइएगा।

भाई वाह, लगता है ये गाना हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आया। बहुत त्वरित जवाब आने शुरू हो गए। बड़ी बहन फिल्म का नाम फटाफट लिखा हमारे श्रोताओं ने, और साथ में लता मंगेशकर और प्रेम लता की आवाजें हैं, और बहुत लोगों ने ये लिखा है कि भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में बजता है ये गीत। और एक श्रोता ने लिखा है कि परसों ही तो ये गाना भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुना था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी यादों की डायरी में निम्नलिखित गीत है, प्रेम है प्रेम पिया और कोरा कागज था मन मेरा मेरे महबूब वगैरह वगैरह गानों की लंबी फेहरिस्त इन्होंने लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो गाना आपने सुनवाया था आपकी नजरों ने समझा अनपढ़ फिल्म का, माला सिन्हा और धर्मेंद्र, ये जवाब बिल्कुल सही दिया है। और ये जवाब एक ही श्रोता नहीं बल्कि बहुत सारे श्रोताओं की ओर से आ चुका है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, लेकिन इस गाने में चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है, तो ये जो चुप की भाषा है, खामोशी की भाषा है, ये बड़ी अहम होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो जरा बताइए कि आप कब खामोश रहकर बहुत कुछ कह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लम्हात हैं हमारी जिंदगी में जब हम कुछ नहीं बोलते लेकिन फिर भी बहुत कुछ बोलते हैं, और नजरें बोलती हैं, आंखें बोलती हैं, आप नहीं बोलते हैं। तो कौन सा ऐसा लम्हा, कौन सी ऐसी घड़ी आई जब आप चुप होकर जवाब देते हैं? कई बार तो कोई करारी बात होती है, कोई ऐसी बात होती है जो दिल दुखाने वाली बात होती है, फिर भी आप चुप रह जाते हैं, लेकिन आपकी वो खामोशी बहुत कुछ कह जाती है।

एक श्रोता ने लिखा है कि डायरी लिखना कितना विशिष्ट होता है, कितना असाधारण, वो भी जब खामोश सा अफसाना डायरी में दर्ज करना हो। ये टिप्पणी पहले आ चुकी है और आप तक पहुंचा चुके हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि पानी पे लिखा खामोश अफसाना जो शबाना दी के लिए, उनकी हिरनी सी बड़ी बड़ी आंखों में उजालों के दिए जलते, एक खूबसूरत से ख्वाब आंखों में पले, मुस्कुराए वो खिलखिला के तो आसमां से चांदनी के नूर बरसने लगते हैं। लेकिन अब बात यहां पर हम चुप रहकर जवाब देने की की और आंखों की भाषा की नजरों की बात। तो जरा सुनिए ये गाना और बूझिए फिल्म का नाम और बताइए किसकी आवाज में है ये गाना।

फिल्म थी 20 साल बाद और वहीदा रहमान विश्वजीत थे कलाकार। हमारे श्रोताओं ने ये जानकारी भी दी है और सही जानकारी दी है। वाह, एक श्रोता ने लिखा है वाह मेरा चयनित गीत, ये तो बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। हेमंत कुमार की आवाज थी और शकील बदायूनी के बोल थे, हेमंत कुमार का ही संगीत था। गजब के बोल थे, जरूरत क्या तुम्हें तलवार और खंजर की, तो क्या ऐसी आंखें ऐसी निगाहें आपके इर्द गिर्द भी हैं? जब आप किसी की आंखों की तारीफ करते हैं तो यूं जरा बताइएगा, ये भी आज अपने दिल की बात कह डालिए खामोशी से, नजरों की बात भी कह डालिए खामोशी से। एक श्रोता ने लिखा है कि 20 साल बाद जरा नजरों से कह दो जी, एक सदाबहार क्लासिक है इस गीत को, मशहूर गायक हेमंत कुमार ने मखमली आवाज दी है, इसका संगीत भी उन्होंने तैयार किया था, क्या खूब लिखा है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि डायरी लिखना भाव प्रवणता की निशानी है, और बहुत सारे श्रोता

ये लिख रहे हैं कि डायरी तो लिखी लेकिन फिल्म के नाम और गीत के बोल लिखे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। कई बार हमें गाने नहीं याद होते हैं तो उस समय हम डायरी के पन्ने पलट लेते हैं, हालांकि आजकल पन्नों की ओर कौन जाए, मोबाइल के ही नोटपैड में लिख लिया करते हैं, लेकिन नोटपैड भी, मोबाइल का नोटपैड भी एक तरह का डायरी का काम किया करता है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे तो कमेंट भी खामोश रह जाते हैं, जरा कुछ लिखिए तो सही, खामोश नहीं बिल्कुल बोलते हुए नजर आएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि माँ की आंखें ही बच्चों को पता चल जाती हैं कि माँ किस मूड में है, और टीचर की निगाहें, उसका जिक्र भी तो कीजिए कि टीचर आज किस मूड में है। कुछ टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे तो उनकी पोशाक पहनकर हम अंदाजा लगाया करते थे कि अरे आज मिस ने ये वाली साड़ी पहनी है, इस दिन तो गुस्सा करती है तो आज जरूर गुस्सा करेंगी, ऐसा भी होता था। तो कौन सी आपकी टीचर है जिनकी निगाहों से आपको डर लगता था लेकिन अदब बहुत करते थे, उनके प्रति प्रेम भाव स्नेह भाव बहुत होता था। ये आपको अपने अनुभव साझा करने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि विभिन्न मुल्कों में हर देश की एक निर्धारित सरहद हुआ करती है और उस सरहद के निगहवान आंखें ही होती हैं। यहाँ ध्यातव्य है कि देशों ही द्विविधा, और तात्पर्य देश को भूमि के साथ ही साथ आतुर भी कहा जाता है। आतुर तो ये शरीर ही है, प्रणय में फिर ऐसी ही आतुरता देखी जाती है, जिसके निगहबानी का भरोसा जब प्रेमियों के बीच पनपता है तभी प्रणय साकार होता है। जरा आसान भाषा में लिख दीजिए भाई, ताकि हमारे सारे श्रोता समझ लें ये बात। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आंखों की होंगी बातें जिनके बिना जीवन वीराना लगता है, कल्पना कीजिए कि वे कैसे जीते होंगे जिनको ये सुख प्राप्त नहीं होता। आज एक गीत सुनने की तमन्ना है, 1964 की फिल्म है शबनम का गीत, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम। चलिए फिर यही गाना सुन लिया जाए। कई श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है और बहुत सारे श्रोता बहुत सारे गाने लिख रहे हैं, तो आप अपने गानों की डायरी खोलिए और उसमें से गाने चुनिए। आप जो सुझाव देते रहेंगे वही गाना सुनवाएंगे। सुनिए शबनम फिल्म का गाना, बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम। अगली कौन सी फिल्म हो, अगला कौन सा गाना हो, जरा बताइएगा। आंखों की, चुप रहने की, खामोशी की, अफसाना की, बहुत जल्द बताइए ताकि हम गाना प्लेलिस्ट में डाल सकें। अगली फिल्म का नाम

शबनम फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज, जावेद अनवर के बोल, उषा खन्ना का संगीत। हमारे सुधीर श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दे दिया, गीतकार और संगीतकार का नाम बिल्कुल सही सही। एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो अपने फिजिक्स के टीचर से डरते थे और उनकी आंखें भी बहुत अलग ही, सिर्फ हम ही नहीं सभी बच्चे उनकी आंखों और उनसे डरते थे। अभी भी याद है वो टीचर हमें। लेकिन एक बात यहां जोड़ना चाहेंगे, टीचर से डर लगे जो स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, लेकिन असल में उनसे आप असली ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके डर से आप बहुत सारी पढ़ाई कर ले जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है तिरछे नैनो वाली बीबी भोली भाली, और एक श्रोता लिख रहे हैं कि एक गाना है चुप हो जा अमीरों के सोने की घड़ी फिल्म बंदी। और अभी जो हम आंखों की बात कर रहे थे तो आंखों वाले गाने भी आप सुझाइए ताकि हम वो गाने हम सुनवा सकें। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले मैं जो भी फिल्म का गीत पसंद होता था लिख लेती थी, इस तरह मेरे पसंद के गीतों की डायरी तैयार हो जाती थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी की क्लिष्टता ही उसकी सुंदरता है। दरअसल हिंदी की क्लिष्टता सुंदरता नहीं कह सकते हैं, बल्कि लालित्य जो होता है वो सुंदरता को निखारता है। शब्दों का लालित्य, भाषा का लालित्य, भाव का लालित्य। एक श्रोता की टिप्पणी है, जब मोबाइल नहीं था तब सखी सहेली में जो गाने बजते थे वो बहुत ही बढ़िया हुआ करते थे, और फिल्म के नाम के साथ गाना हम नोटबुक पे नोट कर लिया करते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि वो मिला तो, पर शायद हकीकत में नहीं बस ख्वाबों में, पर क्या उसे मिलना कहेंगे। कई बार ख्वाबों में मिलना भी तो मिलना होता है, ख्वाब कई बार हकीकत में ढल जाते हैं और कई बार ख्वाब हकीकत से लगते हैं, हकीकत ख्वाब सा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है, अफसाना लिख रही हूं, चुप चुप खड़े हो हम इंतजार करेंगे, छोटी सी दुनिया आंखों आंखों में बात, जरा नजरों से कह दो वो शाम कुछ अजीब थी। अब बस बहुत सारे गाने हैं, इतने गाने अगर पढ़कर सुनाऊंगी तो फिर बाकी टिप्पणियों का क्या होगा। लेकिन आप गाने सुझाते रहिए ताकि हम अपनी प्लेलिस्ट को समृद्ध करते रहें आज के इस प्रोग्राम के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि समय बलवान है, जब मैं स्कूल और कॉलेज में था तब मेरी डायरी में लिखने की अच्छी आदत थी, कवियों की कविताएं, कोटेशंस, अखबारों के अच्छे लेख, देश विदेश के घूमने के स्थलों की जानकारी, जनरल नॉलेज के विशेष और अपने दिमाग से लिखी खुद की कविताएं। एक चीज आपने नहीं जोड़ा कि अखबार की कतरने भी इकट्ठी की जाती थी, कॉपी या डायरी में अखबार की कतरने बाकायदा कैंची से काटकर उसे चिपका दिया करते थे, और जब डायरी के पन्ने पलटते थे तो वो जानकारी सामने आ जाती थी, और जब कोई खास निबंध या आलेख लिखना होता था तो वो पन्ने पलट लिए जाते थे। आप में से बताइए कितने लोग हैं जिन्होंने डायरी में वो अखबार की कतरने संभाल कर आज भी रखी हैं, और कितने लोग हैं जिन्होंने उस डायरी को फेंक दिया या रद्दी में बेच दिया। उस डायरी में ऐसे लगता था कि जान होती थी, प्राण वायु होती थी डायरी। वो डायरी बड़ी अनमोल होती थी कि बड़े होने पर भी उस डायरी की अहमियत, मतलब जब याद आती है तो ऐसे लगता है कि वो डायरी किसी व्यक्ति की तरह है। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी के आने का इंतजार भी कितना प्यारा होता है, दरवाजे पर नजर रहती है, हर आहट पर लगता है शायद वही आए हैं, पता नहीं वो कब आएंगे, मगर मन उनकी राह देखना नहीं छोड़ता। इंतजार में एक मीठी सी खुशी होती है क्योंकि दिल में किसी अपने के आने की उम्मीद जो होती है। अब निगाहों की, आंखों की बातें और गाना भी वही। फिल्म का नाम है घर, आपको पूछना है कौन है हीरो कौन हीरोइन। गाने के बोल तो समझ में आ गए होंगे इस इंटरल्यूड म्यूजिक के साथ ही। बताइए कौन है गीतकार और संगीतकार, हीरो हीरोइन का नाम।

घर फिल्म का गाना था किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थी। गीतकार गुलजार, संगीतकार राहुल देवर्मन। बिल्कुल सही जवाब आया है और हीरो हीरोइन का नाम भी हमने पूछा था, विनोद मेहरा, रेखा। सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि अखबार में कुछ नई जानकारी या कोई प्रिय नायक नायिका हो तो अखबार को काट लिया करते थे, अब तो नहीं करते। मेरी बहन तो अभी भी पकवान की रेसिपी काटकर रख लेती है और फ्रिज पर चिपका देती है ना क्योंकि अक्सर यही होता है कि अखबार की कटिंग काटकर फ्रिज पर चिपका देते हैं, लेकिन कई बार भूल भी जाया जाता है कि अखबार की कटिंग रखी है कुछ नया बनाने के लिए, क्योंकि अब मोबाइल है, मोबाइल में गूगल पर जाकर नई नई रेसिपी मिल ही जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आंख मिली तो दिल धड़का फिल्म नागरानी, फिल्म का अन्य नाम कोबरा गर्ल, संगीत श्रीनाथ त्रिपाठी। इस गाने के लिए अपने शास्त्रीय रागों पर आधारित शैली के बदले चित्रगुप्त की सहायता से उन्होंने अरेबियन शैली संगीत बनाया था और आशा जी की मौलिक गायन शैली और रागिनी का नृत्य। इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यारी निगाहों से मैं देखता रह गया था कुछ देर जब मैं पहली बार मिला था सगाई से पहले अपनी होने वाली धर्मपत्नी को, जब वो मुस्कुराई तो मैं चुप नहीं रहा और खूब बातें की थी। लेकिन एक चुप की भाषा भी होती है, खामोशी की भाषा भी, जब बोलने से पहले जो भाषा होती है वो होती है आंखों की भाषा, और जब दिल मिलते हैं तब आंखों की भाषा बोलती है बड़ी खूबसूरती के साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने टीचर की बात कही तो मैं बता दूं कि बीएड करते समय हमारी उम्र 20-21 की थी और हमारे क्लास में जो लेक्चरर नई नई आई थी वो भी बीएड पास करके टेम्पररी बेसिस पर आई थी। बला की खूबसूरत थी, उनकी आंखें बिल्कुल चपल हिरणी सी थी और वो आंखें बोलती आंखें थी। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत और रोमांटिक गानों में से एक है। इस गीत को गुलजार साहब ने लिखा है। और एक श्रोता की टिप्पणी है कि मैं टीचर को हमेशा सताया करते थे, एक तो अपने भाई बहनों से हम बेहद प्यार करते थे और बचपन में मैं बहुत शरारती थी तो मैं अपनी आंखों से ऐसे इशारे करती थी कि सारे भाई बहन के परिचय फिल्म वाले सीन चालू हो जाते थे। मुझे नैनो वाली ने मतलब ये गाना सुनना चाहती हैं। चलिए अब फिलहाल जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं इसकी भी फरमाइश की है एक तरह से हमारे श्रोताओं ने, बहुत सारे श्रोताओं

ने लिखा है। तो ये गाना हम सुनवा रहे हैं, आपको बूझना है फिल्म का नाम और बहुत जल्द बताइएगा क्या है फिल्म का नाम और आवाजें किसकी हैं, किन आवाजों में गाना है और फिल्म का नाम।

बाबुल फिल्म का गाना था, तलत महमूद और शमशाद बेगम की आवाजें थी। हमने यही सवाल पूछा था, कुछ श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है और कुछ श्रोताओं ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन से ही खाना बनाने का बड़ा शौक था, किताबों में कोई नई रेसिपी आई तो मैं उसको काटकर डायरी में चिपका लेती थी, अगर नहीं काट पाती थी तो कॉपी पर लिखकर इसकी कटिंग करके चिपका लेती, यही मेरे पास आज भी धरोहर की तरह रखी हुई है। जब मैं ससुराल गई तो उसी कॉपी को ले गई, पापा चिढ़ाते थे ये क्या रेसिपी पढ़ पढ़कर खाना बनाओगी। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे बाजार फिल्म के गीत की पंक्तियां बहुत पसंद है, गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, तरसती आंखों से रास्ता किसी को देखेगा, और ये आज की इबारत से मैच भी कर रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि वो तो हमने भी चिपकाया था, पर रेखा के चित्र जहां भी कटिंग मिलती थी बस काटा और बायोलॉजी की फाइल में चिपका दिया, और उसे सजाया भी करते थे कलर के पेन से, कोई गोल कटिंग बीच में और चार साइड में, बहुत समय तक फाइल हमारे पास रही। क्या कभी आपने किसी कॉपी में जो छोटी सी नोटबुक हुआ करती थी उसमें एक तरफ फूल पत्ती ले आके चिपकाते थे और एक तरफ उसमें गानों के बोल लिखते थे, और कई बार संगीत की कॉपी में ऐसा बहुत किया जाता था, जब वो आपको परीक्षा में वो कॉपी सबमिट करनी होती थी तो उसकी बड़ी सजावट होती थी। तो आप अपने यादें ताजा कीजिए और साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में, फिल्म है ये रात फिर ना आएगी। आपको बताना है कौन है पर्दे पर गा रहे हैं ये गाना। बात मिलने की है यहाँ पर, और आज की इबारत से कौन सा शब्द है जो इस गाने में आ रहा है, कौन से शब्द आपको पूछना है, हीरो हीरोइन का नाम।

ये रात फिर ना आएगी। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में, SH बिहारी के बोल थे। और हमने आपसे पूछा था कौन है हीरोइन और कौन है हीरो, शर्मिला टैगोर और विश्वजीत। हमारे श्रोताओं ने सही जवाब लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि वो शाम बड़ी खूबसूरत थी, जाने पहचाने रास्तों पर चलते हुए अचानक ही वही चेहरा सामने था, बरसों बाद मिले थे, मगर आंखों ने जैसे एक पल में सारी दूरी तय कर ली। उसके हाथ में वही डायरी थी, वही खामोश अफसाना जिसे कभी मेरी नजरों ने चुपके से पढ़ लिया था। उसने कुछ नहीं पूछा, मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में वही पुराना इंतजार था। एक श्रोता ने लिखा है कि वो डायरी थी मेरी, एक मेरी डायरी थी, फिल्मी गीत थे उसमें, और दूसरी डायरी थी जिसमें गजलें लिखती थी, और एकल गायक गायिका को एक रंग के पेन से और युगल स्वरों को दो रंग के पेन से, सामूहिक स्वरों को कई रंगों के पेन से लिखा करते थे। मुझे गीत, खासकर सभी पुराने गीत बहुत पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि एक बार हुआ यूं कि हमें किसी की बात पर डांट पड़ी कि तुमने ये सही नहीं किया, और हम गुस्सा होकर बैठ गए, आंखों में आंसू भी आए। बुआ जी ने डांटा, उधर से पापा देख रहे थे और इशारे में कह रहे थे छोड़ो ये सब, बहन के सामने कह रहे थे, पर फिर हम चुप हो गए। मतलब आंखों की भाषा से इन्होंने समझ लिया। अब सवाल जवाब का सिलसिला, बताइए कब आप जरूरत से ज्यादा सवाल करते हैं, कब आप जवाब देने से कतराते हैं।

भाई, ये सवाल जवाब का सिलसिला था। बताइए, आप कब मतलब उम्र के किस पड़ाव में ज्यादा सवाल किया करते थे? वैसे बच्चे बहुत सवाल करते रहे, लेकिन आप क्या सही तरीके से अपने बच्चों के जवाब देते हैं ये भी बताइएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सवालों के जवाब किस तरह से देते हैं। हालांकि ये सवाल जवाब कुछ अलग तरह का था, एक हीरो हीरोइन के बीच सवाल जवाब का सिलसिला है। राजेंद्र कुमार और बी सरोजा देवी, सभी श्रोताओं ने ये लिख डाला है, जबकि मैंने पूछा नहीं था, तो इस बात के लिए आप सभी का शुक्रिया। और ये बात सही लिखी है आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी डायरी 1978 से 82 तक लिखी हुई है, जब कॉलेज फर्स्ट ईयर से ग्रेजुएशन तक के सफर में दिल दर्द दिल और आर्थिक दुर्दशा से भरी पड़ी है। कभी उठाकर स्याही से लिखा था, पढ़ता हूं तो स्वयं पर हंसता हूं। उम्र के एक पड़ाव पर आकर लगता है कि यह क्या नादानी थी, लेकिन वो बहुत अच्छा समय होता है जब आप अपने भावनाओं को कागज पर लिख डालते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बिछड़ना फिर मिलना जिंदगी का दस्तूर है, इन शब्दों में से गीत आया फिर मिलोगे कभी। एक श्रोता ने लिखा है कि आंखों की बात चली है तो बता दूं कि किसी की आंखों में पल भर के लिए जो दर्द छलका था, उस दर्द को आज भी याद करता हूं। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये रात फिर ना आएगी के बारे में जानकारी दी है। और सभी श्रोताओं ने लिखा है कि ससुराल फिल्म का गाना था। अब चलिए आगे बढ़े और आपको पूछना है कौन है इसमें हीरोइन और कौन है हीरो। फिल्म है बहू बेगम, और आपने कब किसका इंतजार किया और वो आपके इंतजार के बाद भी नहीं आया या नहीं आई।

0: बहु बेगम फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में साहिर लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था। और अब प्रोग्राम के आखिर में पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना, बुझिए आप कौन है इस फिल्म में कलाकार।
1: शम्मा जलती है

0: आए।
1: पेंगेस्ट फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। फिल्म में देव आनंद और नूतन होते हैं। इससे पहले जो गाना हमने सुनवाया था, हमने पूछा था कौन है कलाकार, मीना कुमारी और प्रदीप कुमार थे। अब आज का सुरीला सफर बस इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 46वीं कड़ी।

0: 1942 के आंदोलन में देश में कई जगहों पर प्रति सरकारें स्थापित की गईं। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, एसएम जोशी, जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर आंदोलन को आगे जारी रखा। गुप्त रेडियो केंद्र शुरू किए गए। क्रांति से नाना पाटिल के नेतृत्व में प्रति सरकारें स्थापित की गईं। अब किसी भी परिस्थिति में अंत तक यह आंदोलन जारी रखना ही है। आंदोलनकारियों की इस जिद के कारण ब्रिटिश राज सत्ता को एक के बाद एक झटके लग रहे थे, परंतु जब राज सत्ता की रीढ़ ही सेना और राज सत्ता के विरुद्ध चली जाती है, तब सारे समीकरण बदल जाते हैं। आजाद हिंद सेना को आदर्श मानकर ब्रिटिश फौज के नौसेना और वायुसेना के भारतीय अधिकारियों ने हड़ताल का आह्वान किया। मुंबई बंदरगाह में खड़ी तलवार नामक युद्ध पोत पर से यूनियन जैक उतार दिया गया। नौसेना के अधिकारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खुला युद्ध छेड़ दिया। कई महत्वपूर्ण शहरों में वायुसेना के अधिकारी हड़ताल पर चले गए। अंग्रेजों द्वारा कड़ी कार्रवाई की धमकी दिए जाने के बाद भी उन्होंने हड़ताल वापस नहीं ली। नाविक दल के इस संघर्ष में वंदे मातरम शब्द को युद्ध घोष का स्थान प्राप्त था। जिन भारतीय सैनिकों के बल पर अंग्रेजों ने राज चलाया था, उन्हीं भारतीय सैनिकों के विद्रोह के कारण ब्रिटिश सत्ता को अंतिम और सबसे बड़ा झटका लगा।
1: दूसरे विश्व युद्ध के कारण आर्थिक संकट में फंसा इंग्लैंड भारत में इन उग्र आंदोलनों के कारण पूरी तरह घिर गया। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिलने का समय बिल्कुल निकट आ गया, पर जाते जाते अंग्रेजों ने कुछ साल पहले जो फूट डालने की राजनीति की थी, उसके कट परिणाम अब दिखने लगे थे। बैरिस्टर जिन्ना के दुराग्रह के कारण मुस्लिम लीग और अन्य जातिवादी संगठनों की हिंसक कार्रवाइयों में भारत को खंडित स्वरूप में ही स्वतंत्रता मिलेगी, ये लगभग निश्चित हो गया था। बेशक 150 साल की अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने का आनंद सबसे बड़ा था। 1875 में बंकिम चंद्र ने भारत माता को वंदे मातरम कहकर जो पुकार लगाई थी, वो आज इतने वर्षों बाद फलदायी हो रही थी। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, ऐसे नारे लगाते हुए बलिदान देने वाले, शहादत को गले लगाने वाले युवाओं का या वंदे मातरम कहते हुए असहनीय अत्याचार सहने वाले सत्याग्रहियों का स्वतंत्र भारत का सपना आज साकार हो रहा था।
0: कुल मिलाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की अधिकांश घटनाएं वंदे मातरम की साक्षी में ही घटी हैं। वंदे मातरम, इन शब्दों के बिना मानो इस आंदोलन की किसी भी हलचल को पूर्णता मिलना असंभव था। संपूर्ण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वंदे मातरम के इस तेजस्वी मंत्र का संबल मिला। मैं माता को वंदन करता हूं, इतना सरल अर्थ वाले इन शब्दों से अंग्रेजों को इतना डर क्यों लगता था? उन पर प्रतिबंध क्यों लगाए जाते थे? उन शब्दों का उच्चारण करने वालों पर लाठी डंडों के साथ बंदूक की गोलियां भी क्यों चलाई जाती थी? अंग्रेजी राज सत्ता के मन में इतना भय पैदा करने वाली ऐसी कौन सी भावना वंदे मातरम शब्द में छिपी हुई थी?
1: वंदे मातरम, इस शब्द में है धधकती राष्ट्र भावना, इन शब्दों में है मातृभूमि के प्रति ज्वलंत निष्ठा, इन शब्दों में है मातृभूमि के चरणों में लीन होने की शरण भावना, इन शब्दों में है खड्ग की शक्ति।
0: पंद्रह अगस्त 1947 को हमारी मातृभूमि

पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। स्वतंत्रता की पहली किरण के साथ दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से पंडित ओंकारनाथ ठाकुर की आवाज में वंदे मातरम पूरे देश भर में सुनाया जा रहा था और उसी समय मुंबई आकाशवाणी केंद्र से किराना घराने की प्रतिभावान गायिका का दिव्य स्वर गूंज रहा था। गान हीरा हीराबाई बड़ोदेकर अपने मधुर स्वरों में तिलक कामोद राग में स्वयं तैयार की हुई रचना में वंदे मातरम प्रस्तुत कर रही थी।

0: 15 अगस्त 1947 क्रांतिकारी अरविंद घोष अब योगी श्री अरविंद बन चुके थे। आज उनका जन्मदिन था। आज उनके 75वें जन्मदिवस पर उन्हें अपनी भारत माता के स्वतंत्र होने का सपना साकार होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 1910 के बाद श्री अरविंद क्रांतिकारी कार्यों से योग मार्ग की ओर मुड़ गए थे। फिर भी वंदे मातरम के वे सच्चे अर्थों में प्रवर्तक थे। बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम लिखा, पर उसका आशय, उसका महत्व, उसकी चिंगारी भारतीय जनता के मन में पहली बार जगाई होगी तो वो श्री अरविंद ने। वंदे मातरम के दो अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किए ही थे। उसके साथ ही बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ का अंग्रेजी अनुवाद भी उन्होंने शुरू किया, परंतु कारावास के कारण उसमें बाधा आ गई और वो अनुवाद उनके क्रांतिकारी भाई बारिंद्र नाथ घोष ने पूरा किया। बंकिम चंद्र के वंदे मातरम और आनंद मठ की प्रेरणा से श्री अरविंद ने भवानी मंदिर की परिकल्पना की थी। भवानी मंदिर, ये संकल्पना उन्होंने लेख के रूप में युवाओं के सामने रखी और वो आध्यात्मनिष्ठ राष्ट्रवादियों के लिए गीता बन गई। श्री अरविंद ने भवानी भारती इस लेख में राष्ट्र के विषय में जो संकल्पित किया उसे स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं,
1: ये देश जड़ भू प्रदेश नहीं है, वो भगवती शक्ति की प्रतिमा है। पहले की महिषासुर मर्दिनी आज भारत भवानी बन गई है। उसके लिए सर्वस्व का त्याग करने वाले उसके पुत्रों को उसका अभिषेक करने के लिए आगे आना चाहिए। भवानी मंदिर बनाने के लिए ईंट पत्थरों की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीयता की भक्ति भावना से आकार लेने वाला वो मानस मंदिर होगा।
0: भवानी मंदिर की उनकी परिकल्पना यदि प्रत्यक्ष रूप में साकार हुई होती तो भारतीय सशस्त्र संघर्ष को एक संगठित स्वरूप प्राप्त हो जाता। बंकिम चंद्र के आनंद मठ उपन्यास में सन्यासियों की राष्ट्र भावना से समानता रखने वाला विन्यास इस लेख में है। भवानी मंदिर इस संकल्पना के पूरक के रूप में भवानी भारती नाम से श्री अरविंद ने संस्कृत भाषा में 99 श्लोक लिखकर आदिशक्ति से आर्त प्रार्थना की। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों के देवी महात्म्य में महिषासुर वध के रूपक को श्री अरविंद ने अंग्रेज रूपी असुर का कालिका माता के स्वरूप वाली भारत माता वध करती है ऐसी कल्पना करते हुए प्रस्तुत किया। इन 99 श्लोकों के अंत में समापन करते हुए अंतिम 2 चरणों में वे भारत माता को संबोधित करते हुए कहते हैं,

जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अनंत रूप धारण करने वाली, प्रीति, दया, धैर्य, अदम्य शौर्य, श्रद्धा, तितिक्षा और विविध विद्याएं, ये सब तू ही है। हे आर्य, प्रसन्न हो और भारतीयों के हृदय में चिरकाल तक निवास कर। हे प्रचंड तेज पुंज प्रतिमा के समान देवी, अपनी शुभ्र कांति से सागरों और पर्वत शिखरों को प्रकाशित करती हुई स्थिर होकर प्रसन्नता पूर्वक जगत के कल्याण के लिए तू आर्य भूमि में अर्थात हमारे भारतवर्ष में चिरकाल तक निवास कर।

सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम।

वंदे मातरम एक जय घोष। ये थी इस लघु रूपक श्रृंखला की 46वीं कड़ी, मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और ममता सिंह, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को LCA तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटबन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के दो आतंकवादियों को मार गिराया। वैश्विक

0: रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की और जापान में एशियाई खेलों में पहली बार हिस्सा ले रही भारतीय टेग बॉल खिलाड़ी क्विंसी जोआकिम डिसूजा ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। एक रिपोर्ट।
1: श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें मोंगार में 65 बिस्तरों वाला ग्यालसुएन जेत्सुन पेमा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, समद्रुप जोंखार त्राशीगांग राजमार्ग पर जगन्नाथ पुल और भूटान के बुमथांग स्थित राष्ट्रीय पशु प्रजनन केंद्र को भारत से 43 जर्सी गायों को दिया जाना शामिल है। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। बैठक में दोनों पक्षों ने मार्च 2024 में हुए ऊर्जा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टिकोण के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग में हाल की प्रगति का उल्लेख भी किया। भूटान की पनबिजली परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की सक्रिय भागीदारी का स्वागत किया गया और कहा कि इससे दोनों देशों के मौजूदा ऊर्जा सहयोग को और गति मिली है। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा है कि पिछले कई दशकों में सेमीकंडक्टर चिप एक छिपे हुए औद्योगिक घटक से आगे बढ़कर आर्थिक क्षमता, तकनीकी परिपक्वता और राष्ट्रीय क्षमता का मापदंड बन गई है। नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश, चाहे वो कितना ही विकसित क्यों न हो, अकेले चिप का निर्माण नहीं कर सकता। श्री मिसरी ने कहा कि ताइवान दुनिया की करीब 90% सबसे उन्नत चिप का उत्पादन करता है, लेकिन इसके लिए डिजाइन, सॉफ्टवेयर, उपकरण और सामग्री दूसरे देशों से आती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो हल्के लड़ाकू एफओसी ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HJT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HJT-40 विमान आधुनिक कॉकपिट से लैस है। ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेश निर्मित असैन्य हेलीकॉप्टर है जो उड़ान सुरक्षा मानकों AS4 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक रिपोर्ट।
2: फुल ऑपरेशन क्लीयरेंस प्राप्त LCA तेजस, HJT-40 विमान चालक प्रशिक्षण विमान और ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर का डिफेंस और नागरिक विमानयान क्षेत्र में शामिल होना एक अहम उपलब्धि है। इससे भारत मिलिट्री और सिविल पायलट्स के प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। देश में ही विमान निर्माण से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे आवश्यक नव उद्योग बढ़ेंगे। विदेशी विमानों के आयात की निर्भरता घटेगी, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत भी हो पाएगी। सुधीर, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। X@AIR News हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुकुटबन, आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग 38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि नई रेल लाइन

0: एक छोटा और बेहतर रेल मार्ग उपलब्ध कराएगी। इससे यात्रा की दूरी, परिवहन समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। ये रेल लाइन मौजूदा वर्धा मानिकगढ़ रेलखंड पर भीड़ कम करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध कराएगी। इससे मालगाड़ियों का संचालन अधिक सुचारू हो सकेगा। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि प्रगति मंच से सरकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में उन्होंने सक्रिय शासन की दिशा में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के बारे में बताया। राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख में वृद्धि हुई है। ये विशेष साक्षात्कार आज शाम 7:10 पर 100.1 MHz पर सुना जा सकता है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
1: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के दो आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष की सार्वजनिक सेवा को समर्पित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत एक नई और दूरदर्शी पहल सेवा प्रथम नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया। महेंद्रगढ़ में पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंच राज्य के छात्रों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं, जमीनी स्तर के इनोवेटर्स और आम नागरिकों को अपने नवीनतम विचारों, प्रौद्योगिकियों, उत्पादों तथा समाधानों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों का जीवन बदल रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान ने झारखंड के सुदूर गांवों से लेकर शहरों तक स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। राज्य के 91% से अधिक गांवों को ODF प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है, जहां अब ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष काम हो रहा है। स्वच्छता को हर नागरिक के स्वभाव और संस्कार में शामिल करने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छता केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए।
3: साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है, स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए।
2: प्रधानमंत्री के इसी विजन की वजह से आज झारखंड के ग्रामीण इलाकों में लगभग 42 लाख शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। इसके साथ ही राज्य के सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में गोवर्धन योजना के तहत कचरे से कंचन और बायोगैस बनाने की पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन का सीधा लाभ पाने वाली रांची की ग्रामीण महिलाओं ने इलाके में आए इस बड़े बदलाव पर अपनी खुशी साझा की।
4: मेरा नाम निरुपमा तिग्गा है, मैं नगड़ी प्रखंड के सपारुम गांव की रहने वाली हूं। ये जो योजना है स्वच्छ मिशन भारत का, प्रधानमंत्री हमारे स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय गाँव में दिए वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं।
5: हमारे सपारुम पंचायत के सपारुम गांव में 540 के लगभग शौचालय बने हैं। पहले तो इस गांव में बहुत शौचालय नहीं रहने के कारण बहुत परेशानियां, बहुत बीमारियां होती थी, परंतु अभी जब से शौचालय मिला है सभी को सुविधा होती है।
2: झारखंड में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इस साल 5000 से अधिक स्वच्छता लक्षित इकाइयों और कचरा संवेदनशील स्थानों की युद्ध स्तर पर सफाई की गई है। स्वच्छता की इस नई चेतना ने न केवल लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारा है बल्कि स्वच्छता से समृद्धि के संकल्प को साकार करते हुए विकसित भारत 2047 की नींव को और मजबूत किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कर्मवीर के साथ मैं महविश रहमान।
0: भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस मामले में चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश को सामान्य प्रक्रिया बताया है। इस आदेश में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के दोनों प्रतिद्वंदी गुटों को पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के दौरान पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में विभाजन होने पर उसके चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी जाती है। श्री राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में श्री त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस में अतीत में कई विभाजन हुए हैं और इसका चुनाव चिन्ह भी कई बार बदला गया है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने आज पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा शुरू की। पार्टी का नारा है नशा मुकाना सारा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लो और अन्य नेताओं ने माधोपुर से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट @AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वास्तविक GDP वृद्धि दर अनुमान को 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि यह संशोधन पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। एजेंसी ने आशा व्यक्त की कि भारत सभी अन्य G20 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज रफ्तार से बढ़ना जारी रखेगा। घरेलू शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 176 अंक बढ़कर 74,491 और निफ्टी 40 अंक बढ़कर 23,318 पर कारोबार कर रहा था। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टेक बॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने महिला सिंगल्स स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। एशियाई खेलों में भारत की ओर से टेक बॉल में पहली बार हिस्सा ले रही डिसूजा ने जापान की युना साकामोतो को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को LC-Tejas और HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटवन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रूपये की परियोजना को मंजूरी दी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह।
8: Yeah.

0: 12 o'clock फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजों में। लिखा था इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई ओपी नेगर ने।
1: जंबो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
2: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
1: रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग।
2: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
1: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
2: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: गीता दत्त और हेमंत कुमार की आवाजों में ये था शैलेंद्र का लिखा गाना, संगीत मुकुल रॉय का था और फिल्म थी डिटेक्टिव।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा,
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत

0: ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू।

0: मगर एक प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: दास्तान बेमिसाल संगीत की।
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाँव।
0: एक उत्तम जीवन की कहानी।

0: अक्टूबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कि नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहे।
0: मैटिनी शो कार्यक्रम में मुलाकात जाने माने शायर आलोक यादव से।
1: मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनक की तन्हाई थी। वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहाँ पहले मेरे भाई थी।
0: शनिवार 19 सितंबर को दिन में 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: गुमराह फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो दिन बहार आई गांवों में,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अनुभव फिल्म का गाना आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज में। कपिल कुमार के बोलते कनु रॉय का संगीत था। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है और इसी के साथ अपने रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये मन भी कैसी अबूझ पहेली सा है ना। जैसे ही किसी प्रिय की भावनाएं इसे छूती हैं, तो दृश्य यानी कि जो सीन है वही का वही रहता है, पर सब कुछ बदल जाता है। अब आंखें केवल देख नहीं रही होती, वो प्रतीक्षा बनकर रास्ता देख रही होती हैं। अब कान केवल सुनते ही नहीं, वो हर आहट पर चौंक भी रहे होते हैं, और मन वो तो जहाँ होता है वहाँ टिकता ही कहाँ है। या तो किसी बीते पल के फूल पर बैठा उसका रस उलीच रहा होता है, या फिर आने वाले पल की कल्पना में डूबा ढेर सारी अनकही बातों की बंधनवार बन रहा होता है। तो जिस खूबसूरत सफर का हमें था इंतजार, उसकी शुरुआत आज कौन से शहर से हमारी कौन सी सखी करने वाली है, इसका पता करते हैं फोन की इस पहली कॉल से। अरे वाह, इंतजार हुआ खत्म, अब सुनते हैं हमारी पहली कॉलर को और जानते हैं कहां से है हमारी ये सखी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, कैसी है मैडम आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए।
1: बढ़िया, मैं भी बढ़िया हूँ, मैं भी अच्छी हूँ।
0: तो आप बनती हमारी पहली सखी जिनका कॉल लगा है। तो पहले तो आप अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम है सोनी अली अंसारी, मैं यूपी से बोल रही हूँ, गाजीपुर जिले से, मखदुमपुर मेरा गांव का नाम है।
0: अच्छा
1: जी, मुझे गाना सुनना है, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। मैं मुझे सखी सहेली सुनना बहुत पसंद है, मेरा बहुत तमन्ना था कि एक बार मेरी कॉल लग जाए।
0: तो आपकी कॉल तो लग गई है, पर आप थोड़ा बहुत अपने बारे में तो बताइए। आपका गाना तो हम आपको सुनवाएंगे जरूर।
1: मैं कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ घर पर रहती हूँ, तो शेर व शायरी की शौक है, लिखती हूँ।
0: लिखती हैं आप? शेर व शायरी, एक छोटी सी आप एक लाइन दो लाइन सुना सकती हैं हमें अपनी?
1: अच्छा,
0: शायरी की
1: सुनाऊं?
0: सुनाइए।
1: सुना रही हूँ
0: बिल्कुल।
1: मेरे खूबसूरत से चेहरे का दीदार कौन करेगा, तुम रहेगा तो मुझसे प्यार कौन करेगा।
0: उफ़,
1: कुछ तो कशिश है मेरी आंखों में, वरना मेरे आंखों को नशा का जाम कौन करेगा।
0: ओह क्या बात है, क्या बात है, सच में बहुत बढ़िया।
1: मैं ना खूबसूरत नहीं हूँ, आज खूबसूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरी जिस सहेली से बात कर रही हूँ मैं, उनकी हो सकती है।
0: नहीं नहीं, आप बहुत खूबसूरत है, आपकी बातों से लग रहा है। और मैंने बहुत लोगों को देखा है शायरी करते हैं लेकिन दूसरे की तारीफ करते हैं, आज आपकी शायरी सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपने खुद की तारीफ में एक शायरी लिखी है। और सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए, आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: हम अंकिता राजेश तिवारी बोल रहे हैं, नांदेड़ महाराष्ट्र से। हाँ
0: अच्छा, तो बताइए, आज गणपति का उत्सव चल रहा है तो आप गणपति लेकर आई घर में?
1: हाँ लेकर आए ना गणपति।
0: तो उनकी सेवा चल रही होगी ना? खूब अच्छा सा।
1: हाँ
0: क्या भोग लगाया आज आपने उनको?
1: हाँ आज हमने उकड़ी से मोदक का भोग लगाया। हेलो
0: अरे वाह।
1: सहेली।
0: और बताइए, आप
1: हाँ
0: क्या करती हैं?
1: मैं अभी कॉलेज करती हूँ, बीकॉम।
0: बीकॉम में है। और
1: हाँ
0: गणपति बप्पा खूब सारी सुख समृद्धि आपके घर में लेकर आए, इसी
1: हाँ
0: की हम प्रार्थना करते
1: धन्यवाद।
0: हैं। और बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज?
1: देवा देवा गणपति देवा।
0: अरे वाह,
1: हाँ
0: बहुत
1: वो
0: बहुत
1: गाना।
0: प्यारा सा गीत है ये। तो बहुत अच्छा सा
1: हाँ
0: ये गाना आपके पसंद का हम सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते।
0: नमस्ते। तो बताइए आप जरा पहले अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: जी, मेरा नाम कल्पना मनोहर है और मैं भूली गांव से बोल रही हूँ,
0: अच्छा,
1: वाशिम से। हाँ,
0: वाशिम से। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप बताइए, आप क्या करती हैं कल्पना?
1: जी मैं आंगनवाड़ी मदद मिस हूँ।
0: अरे

0: वाह, आंगनवाड़ी में आप काम करती हैं, बहुत अच्छी बात। अच्छा ये बताइए कि आपका जो सबसे ज्यादा जो पसंदीदा कार्यक्रम है विविध भारती में, वो कौन सा है?
1: ये वो हेलो पिटारा, हेलो फरमाइश, आज के फनकार। तो
0: अच्छा,
1: सर मैं रेडियो की सुनती हूँ।
0: अच्छा ये सारी चीजें आपको सुननी अच्छी लगती है ना?
1: हाँ
0: तो और क्या करना अच्छा लगता है रेडियो सुनने के अलावा आपको?
1: कि मुझे बच्चों को पढ़ाना और ड्राइंग करना।
0: अच्छा आप आंगनवाड़ी में काम करती, तो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाती हैं?
1: हाँ मेरा बच्चा भी 6 साल का मेरे साथ ही पढ़ता है।
0: अच्छा तो आप उसको भी पढ़ाती हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और
1: हाँ
0: आज कौन सा आप गीत सुनना चाहेंगी आप हमें बताइए?
1: कारों का जो मुक्ता चेहरा हो,
0: तो ये
1: फूलों की
0: गीत,
1: हंसने की वादी हो।
0: अच्छा तो ठीक है, हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए कौन बोल रही हैं आप और कौन से शहर से बोल रही
1: हैं? जी मैम नमस्ते, मैं कानपुर कल्याणपुर से बोल रही हूँ मैम।
0: अच्छा आप क्या करती हैं आप?
1: जी मैम मैं जॉब ही करती हूँ, मेरा बुटीक है खुद का।
0: अरे वाह।
1: जी मैम तो मेरा सारा समय उसी में बीतता है और मैं आपका कार्यक्रम मैम बहुत मतलब मन लगा के सुनती हूँ।
0: अच्छा मन लगा
1: अपने काम के जैसे अपने काम में मन लगा के

0: करते हैं वैसे ही आपका प्रोग्राम भी मन लगा के सुनते, इतना अच्छा लगता है। हेलो सहेली और गीत माला ये सब तो मेरे बहुत ही मतलब पसंदीदा, भूल नहीं सकते समय की, ये समय मतलब चालू हो गया तो बस रेडियो चालू होना चाहिए।
1: ये तो सही बात है। और दूसरी चीज ये बताइए, आप जो करती हैं, आपका ये जो बुटीक चलाती हैं, तो उसमें आप मतलब किस तरीके के कपड़े रखती हैं, सलवार
0: जी? मैं लेडीज, हाँ मैम जी, मैं लेडीज कपड़े तैयार करती हूँ।
1: अच्छा अच्छा, तो आजकल तरह तरह के कपड़े ट्रेंड में हैं, जैसे गाउन भी चल रहे हैं तरह तरह के, है ना, और सलवार सूट तो चल ही रहे हैं, प्लाजो वगैरह काफी चल रहे हैं ना?
0: हाँ प्लाजो भी चल रहे, गाउन भी चल रहे, शरारा भी चल रहा है।
1: तो सबसे ज्यादा कौन सा आपको बनाने के मतलब आता है आपके पास ऑर्डर, कि सबसे ज्यादा कौन सा?
0: मैम इस समय तो सब लोग पैंटी सूट पहन रहे हैं ज्यादा, और साड़ी की जो ड्रेसें आ रही है तो साड़ी की ड्रेसें उनको जो पसंद आता है वो अपने हिसाब से सिलवाते रहते हैं।
1: हाँ आजकल ये भी ट्रेंड में ना कि जो पुरानी आपकी बनारसी तरीके की जो साड़ियां हैं उसके नए नए तरीके से आप शरारे बना सकते हैं ना, या आप
0: हाँ बहुत अच्छी सी ड्रेसें आ रही हैं, तो वो साड़ी से लेडी से आजकल अपनी जो साड़ी पुरानी रखी हुई है बनारसी, तो उनसे काफी अच्छी अच्छी ड्रेसें तैयार करवा रही है।
1: बहुत बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
0: तो मैम प्रेम पुजारी का गाना है रंगीला रे तेरे रंग में।
1: अरे वाह बहुत प्यारा सा गाना है, तो चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो आज हम कौन सी सखी से बात कर रहे हैं?
1: हम फरजाना सखी से बोलते हैं, ऊन पतिया, गुजरात सूरत।
0: अरे वाह, तो बताइए फरजाना जी, आप क्या करती हैं?
1: हम घर में ही है, दो बेटियां हैं, दोनों बेटी की शादी हो गई, एक बेटी की दो बेटी है
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: और एक बेटी को एक बेटा और बेटी है। हाँ
0: यानी आपने अपने कर्तव्य कर लिए हैं पूरे, अब आप आराम से है ना, रेडियो सेट के पास बैठ के गीत सुन सकती है ना
1: हाँ, अब बेटे की शादी हुई है, अभी 5 महीना खत्म हुआ, 6ठा महीना चालू है। हाँ
0: अरे वाह, यानी कि बेटे की भी शादी होगी, यानी आप घर में बहू भी लेकर आ गई है, ना?
1: हाँ बहू भी MP से लाए, मध्य प्रदेश से, यहाँ बुरहानपुर से। चंदन
0: आप सास के रोल में आ गई हैं।
1: का नाम, उनका नाम भी फिरोजा है,
0: अच्छा,
1: और मेरी बेटी सायरा और सबाना,
0: हाँ बहुत अच्छा
1: और
0: बात है।
1: बहू है तो नीलोफर और बेटा है तो सब्बीर।
0: अच्छा, तो आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: प्यासा सावन का तेरा साथ है तो,
0: अरे वाह, बहुत प्यारा सा
1: हाँ
0: गाना है, मुझे भी सुनना है
1: क्योंकि मेरी बेटी है ना बिजली वाली,
0: तो
1: उनको बहुत पसंद है,
0: अच्छा, अरे
1: वो
0: वाह
1: मोबाइल में रखेगी ना वही गाना रखेगी, उनके पप्पा के लिए भी मेरे लिए भी अच्छा लगता है उसको।
0: है, अरे वाह, बहुत अच्छी बेटी है आपकी। तो चलिए
1: हाँ
0: आपके साथ साथ मैं भी सुन लेती हूँ ये गीत, मुझे भी बहुत अच्छा लगता
1: जी
0: है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं शानू बोल रही हूँ भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा शानू जी, आप भोपाल से बोल रही हैं यानी कि आप मध्य प्रदेश से बोल रही हैं। तो बताइए क्या करना आपको बहुत अच्छा लगता है, पहले तो ये आप मुझे बता दीजिए।
1: जी मैं तो घर में ही रहती हूँ और हाउस वाइफ हूँ और बच्चे ही, बस खाना बनाना यही पसंद है और विविध भारती सुनना मुझे बहुत पसंद है।
0: विविध भारती पे आपको कौन सा कार्यक्रम है जो बहुत ज्यादा पसंद है?
1: मुझे तो सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। आज की फनकार बहुत अच्छा लगता है, आज के मेहमान, पिटारा के अंतर्गत सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और सखी सहेली एलो सहेली पसंद है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छे कार्यक्रम आपको पसंद है। अब ये बताइए आपके बच्चे छोटे हैं कि बड़े?
1: मेरे दो बच्चे तो बड़े हैं और एक थोड़ा लेट हुआ था तो वो 4 साल का है अभी। और हम अपनी बात भी कहना चाहेंगे, विविध भारती जैसे हमें सबकी आवाजें पसंद है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: गाना मुझे रफी साहब की आवाज में सुनना है, रूप तेरा मस्ताना फिल्म का, बड़े बेवफा हैं ये हंसने वाले।
0: अरे क्या बात है, ठीक है आपकी पसंद का हम ये गीत आपको सुनवा देते हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो आप कौन बोल रही हैं, पहले तो ये बताइए।
1: मैं साची सूरज चल्लारे बोल रही हूँ,
0: अच्छा, और कहाँ से बोल रही हैं?
1: यवतमाल से।
0: यवतमाल से। साची, आपकी आवाज सुन के ऐसा लग रहा है ना कि आवाज एक छोटी सी बच्ची की है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा
1: हाँ
0: है? तो बताइए, आप पढ़ती हैं
1: हाँ
0: तो आप कौन सी क्लास में?
1: छठी क्लास में।
0: ओ, सिक्स में? अभी आप छठी क्लास में, यानी कि आप बहुत छोटी सी हैं। आपको रेडियो सुनना अच्छा लगता है?
1: हाँ,
0: तो आप रेडियो पे क्या क्या सुनती हैं?
1: मम्मी के साथ सुनती हूँ।
0: मम्मी के साथ सुनती हैं। क्या सुनना अच्छा लगता है? वही जो मम्मी सुनती है, या आपको भी कोई अच्छा लगता है प्रोग्राम सुनना?
1: सखी सहेली भी बहुत अच्छा होता है,
0: सके सहेले अच्छा लगता है आपको? जब दो लोग बातें कर रहे होते हैं।
1: बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं उसमें।
0: बातें करनी अच्छी लगती है आपको?
1: हाँ
0: अच्छा, यानी कि सांची भी अच्छी अच्छी सी बातें करती है ना।
1: हाँ
0: तो आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं स्कूल में?
1: हाँ
0: मुझे लग ही रहा था कि आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी। और आपको क्या करना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है कि डांस करना?

0: अच्छा लगता है?
1: मुझको गाना
0: गाना अच्छा लगता है। तो चलिए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं ये तो बताएंगी।
1: आपके मन से कोई भी।
0: ठीक है, फिर मैं अपने मन से सुनवाती हूँ साथी के लिए, खास तौर पर ये गीत अच्छा लगेगा साथी को।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये बताइए, आप
1: जी
0: कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रही हूँ, कश्मीर से मैं बोल रही हूँ। मेरा नाम अफरोजा है। जी
0: अच्छा, अफरोजा जी आप बोल रही हैं कश्मीर से। बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही अच्छी जगह से आप बोल रही हैं। बहुत अच्छी जगह सच में। तो बताइए आप क्या करती हैं अफरोजा जी?
1: जी बस मैं हाउसवाइफ हूँ, घर का ही काम करती हूँ। दो बच्चे हैं मेरे, घर संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ,
0: अच्छा, तो बच्चे छोटे
1: और साथ साथ विविध भारती चलता रहता है। 23 सालों
0: हैं?
1: से रिश्ता है मेरा विविध भारती से।
0: ये तो सबसे अच्छी बात है आपकी। तो बताइए आपके बच्चे छोटे
1: जी
0: हैं कि बड़े?
1: मेरी 5 साल की बेटी है और 2 साल का बेटा है।
0: मतलब बहुत परेशान करते होंगे।

0: शैतानी करती रहती होंगी पूरे दिन घर में, है ना?
1: हाँ, अब क्या करें, लेडीज का काम ही यही है अब बच्चों को अच्छी शिक्षा देना,
0: बिल्कुल अच्छे से उनको पढ़ाना,
1: घर संभालना,
0: घर संभालना, सच में। और बहुत बड़ा काम है ये, मतलब आप जॉब करने जाते हैं, लोगों को लगता है वही चीज़,
1: काम नजर भी नहीं आता, ये काम नजर भी नहीं आता है,
0: जबकि सबसे जरूरी काम है।
1: हाँ, अगर कि मर्द लोग जैसे काम करते हैं उनका काम दिख जाता है, वो ऑफिस संभालते हैं फिर पता चलता है नहीं ऑफिस है, घर के जितने काम करेंगे ये नजर ही नहीं आते हैं।
0: ऊपर से कहा जाता है आप करती ही क्या है घर पे, जबकि अगर घर पे काम करना पड़ जाए ना तो बस पता चल जाएगा कितना काम होता है दिन भर का पूरा, और साथ ही बच्चों को भी संभालना ना, बहुत बहुत बड़ा काम है। आप विविध भारती आप सुनते हैं तो विविध भारती का कम से कम इतना तो एक योगदान रहता होगा ना कि आपका जो काम है पूरे दिन भर का थोड़ा आसान कर देता होगा, है ना?
1: बहुत ज्यादा कई सालों से, वही मैं बोल रही हूँ, कई सालों से रिश्ता है मेरा विविध भारती से, तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, और जब शादी से पहले मायके में सुना करती थी,
0: अच्छा,
1: एक भी प्रोग्राम मिस नहीं होता मुझसे, सखी सहेली है हर कोई एपिसोड सुनती थी मैं,
0: क्या
1: पिटारा में जो भी एपिसोड आते हैं हर कोई प्रोग्राम सुनती थी मैं विविध भारती का,
0: तो
1: अभी भी सुनती हूँ, लेकिन अब उतना टाइम ज्यादातर नहीं आता है क्योंकि बच्चे कभी इधर उधर,
0: हाँ नहीं बच्चे छोटे हैं, आपने बताया 5 साल के 2 साल के तो बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको तो पूरा वक्त देना पड़ता होगा आपको अपना,
1: बहुत ज्यादा। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि विविध भारती आज हेलो सैली ने मेरा पहली बार फोन लगाया इतने सालों से, मेरे ख्याल से 20 सालों से,
0: अरे
1: 20 साल के बाद फोन लगा है इस प्रोग्राम में,
0: बात कर
1: एक बार विविध भारती में मैंने बात की है वो है हेलो फरमाइश।
0: अच्छा, यानी कि आपकी चलो बात तो ही, मुझे ये सुनकर ही बहुत अच्छा लगा कम से कम, क्योंकि 20 साल इतना लंबा अरसा आपने
1: लगाया है।
0: नहीं सच में आप बहुत ही अच्छी हमारी श्रोता हैं, बहुत ही अच्छी, क्योंकि इतना आपने इंतजार किया कॉल लगाने के लिए, तो बहुत बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया। और आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी गाने के बोल है इस मोड़ से जाते हैं,
0: बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गीत है ना, इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हुए काश कभी हम आपसे मिल लें, हमारी मुलाकात हो जाए।
1: हाँ आप आइए ना कश्मीर,
0: बिल्कुल
1: जाइए, आप आइए और फिर देख रहे कितनी सुंदर जगह है, हर मौसम यहाँ बढ़िया से बढ़िया है।
0: नहीं कश्मीर का तो खैर नाम ही काफी है, तो चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का एक प्यारा सा ये गीत जो मुझे भी बहुत पसंद है।

आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय पलक झपकते ही तेजी से मुट्ठी में बंद रेत की तरह निकल गया, लेकिन हमारे मन की हथेली पर अपने सुनहरे चमकते निशान छोड़ गया है। और आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने हमें बांध लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको जरूरी जानकारी दे देते हैं, आपके कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो है 4002 4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर एक बार आप फिर से नोट कर लीजिए, 4002 4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867 0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 2867 0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी न कभी कामयाब जरूर होते हैं, और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न लगाएं और अपनी सखियों को अवसर दें अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल का, और साथ ही संपादन में सहयोगी बनी

0: नम्रता टिकोले। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहली बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीत।

0: प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाँ
0: एक उत्तम जीवन की कहानी।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है अलका सिन्हा की लिखी कहानी रिहाई, वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी का।
2: उसे उम्र कैद की सजा हुई थी, मगर उसके अच्छे चाल चलन के कारण उसे 2 साल पहले ही रिहा कर दिया गया। बरसों बाद आज वो अपने ही घर के सामने अजनबी सा खड़ा था। लंबी सांस भर बहुत संयत मन से उसने कंधे पर टंगे झोले में से चाबी निकाली और ताले में डालकर घुमाई। ताला ढीठ सा अड़ा रहा। इसी दशा में टंगे टंगे ये ताला भी उम्र कैद जितनी लंबी अवधि काट चुका था। यूं दरवाजा जोर से धकेलने पर शायद ताला खोलने की जरूरत ही न पड़ती, मगर ये बात उसके दिमाग में आई ही नहीं। एक आंख बंद कर उसने ताले की मोरी के भीतर झांकते हुए चाबी घुसेड़ कर पूरी ताकत से मरोड़ दी। कड़ कड़ की आवाज के साथ कराहता वो ताला आखिर होश में आया तो जैसे नींद से जागकर अविश्वास से पूछने लगा, कौन हो भाई? यहाँ तो बरसों से कोई आया ही नहीं है। तो क्या ओमी भी कभी आया नहीं मेरे पीछे? वो हल्के से बुदबुदाया। ओमी? कौन ओमी? दरवाजा भी अब तक बूढ़ा हो चुका था और उसकी याददाश्त पहले जैसी नहीं रह गई थी। खैर, उसने दरवाजे को जोर से धकेला तो बरसों की जमी धूल उस पर छिटक कर गिर पड़ी। चलो, किसी ने गले लगाकर स्वागत तो किया। वो हंसा तो धूल मुंह में घुस गई और वो खांसने लगा। भीतर का दृश्य जैसे फ्रीज हुआ पड़ा था। लंबे अरसे से एक ही स्थान पर रखी चीजें पड़ी पड़ी जम चुकी थीं। कुछ साफ नहीं दिख रहा था। हर तरफ पड़ी धूल की मोटी परत से उसका रंग रूप ही बदल चुका था। मैं किसी गलत घर में तो नहीं आया ना? ये मेरा ही तो घर है ना? किसके सहारे छोड़ गया था मैं अपना घर? ओमी? उसने पुकारना चाहा।

था, मगर गहरे निश्वास के साथ आंख नाक और मुंह में धूल भर आई। हाँ, बाथरूम भी यही है। हाँ, यही तो है बाथरूम, यानी घर तो मेरा ही है। बाकी सब भी धीरे धीरे साफ हो जाएगा। झाड़ू भी मिल गई, रसोई के दरवाजे के पीछे रखी थी, ठीक वहीं जहां हमेशा रहती थी। और इस एक छोटी सी बात ने उसे यकीन दिला दिया कि ये घर सचमुच उसका है। रात होते होते उसने घर को काफी हद तक ठीक कर लिया। यानी ओमी कभी आया ही नहीं मेरे जाने के बाद। मगर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो उसी के भरोसे सब कुछ छोड़ के गया था। वो जरूर यही कहीं छुपा बैठा होगा, नालायक यही कहीं बैठा होगा। उसने ओमी को खोजना चाहा, पलंग के नीचे, पर्दे के पीछे, खिड़की के बाहर, बगीचे में, हर तरफ देख लिया। ओमी कहीं नहीं था। अंधेरा गहराने लगा था। उसने बत्ती जलानी चाही तो तारे कटी हुई मिली, शायद चूहा कुतर गया था। किसी तरह तारे जोड़ी और स्विच दबाया तो बल्ब चनक कर टूट गया। खाने का मन भी नहीं था उसका, और खाने को कुछ था भी नहीं। वो वैसे ही अंधेरे में लेट गया, एक टक पंखे को देखता रहा, भीतर ही भीतर ओमी को पुकारता रहा।

खुली तो दिन चढ़ आया था। वो हड़बड़ाकर उठा, ओह इतनी देर हो गई, मैं तो इतनी देर तक सोता ही नहीं था, अब तक सब जग गए होंगे। उसने दाएं बाएं देखा, फिर उसे याद आया कि वो अपने घर में है, जेल की सलाखों से बाहर, अब तो वो खुद अपनी मर्जी का मालिक है। जब तक चाहूंगा सोऊंगा, जहां चाहे जाऊंगा, अब मैं आजाद हूं। अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। सुन रहे हो?

ना ओमी, ओमी, ओमी सुन रहे हो ना? अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। हाँ। उसे फिर ओमी की याद हो आई। याद आई कि ओमी को तो पता ही नहीं होगा कि उसे समय से पहले ही रिहा कर दिया गया है और वो अपने घर उसका इंतजार कर रहा है। उसका मन मायूस हो गया। आखिर ओमी के बिना ये आजादी किस काम की? हाँ, आएगा ओमी, आज जरूर आएगा। आएगा तो उसे क्या खिलाऊंगा? अच्छा चलो, बाजार से कुछ सब्जी भाजी खरीद ले आता हूँ। हाँ, आज अपनी पसंद की सब्जियां लाऊंगा। रोज रोज घी या कद्दू खा खाकर रुकता चुका हूँ। और हाँ, नया बल्ब भी तो लाना है। ओमी जरूर कहीं दूर से इस घर पर नजर रखता होगा, जलती बत्ती देखकर दौड़ा चला आएगा। हाँ, उसे क्या मालूम कि मैं समय से पहले ही रिहा हो गया हूँ। जरूरत का सामान खरीद कर वो घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने बड़े चाव से सब्जी बनाई। गोल गोल नरम नरम रोटियां सेकते हुए भीतर ही भीतर ओमी को पुकारता रहा। सोचा पास पड़ोस में पूछूं कि पिछली बार ओमी कब आया था यहाँ, मगर हिम्मत नहीं हुई। बाहर की दुनिया पराई हो गई थी। एक सजा याफ्ता से कौन बात करना चाहेगा? लोग उसे नहीं पहचानते अब, ये भी अच्छा ही है। उसने राहत की सांस ली और खा पी कर सो गया। बत्ती जली ही छोड़ दी। उसे भरोसा था कि बत्ती जलती देखकर ओमी दौड़ता हुआ यहाँ आएगा। नींद में भी वो हर खटके से जागता रहा, पर सुबह हो गई और ओमी नहीं आया। अगला दिन भी बीत गया, फिर एक और रात ओमी नहीं आया। वो हर रात बत्ती जली छोड़ देता, इस उम्मीद में कि उजाला देख कोई तो दौड़ा चला आएगा। लगातार चलता पंखा उसे बरसों पीछे लिए जा रहा था, बहुत पीछे, कॉलेज की गहमा गहमी के बीच। कॉलेज का वार्षिक उत्सव, सजी धजी भीड़ मंच की तरफ देख रही थी। भीड़ उत्साह से ओमी ओमी ओमी ओमी पुकार रही थी। भीड़ में से आवाजें आ रही थी, ओमी ओमी। वो देख रहा है, ओमी मंच पर खड़ा है। मंच पर इतनी तेज रोशनी है कि आंखें चुंधिया जाएं। तेज रोशनी में वो ओमी को ठीक से देख भी नहीं पा रहा, मगर वो उसकी आवाज सुन रहा है। वो कह रहा है, दोस्तों, आज की ये महफिल किसी खास के नाम, देखता हूँ मेरी आवाज उस तक पहुंचती है या नहीं। महफिल में तालियों की आवाज, सीटियां और उत्साह भर उठता है। ओमी एक तान भरता है और हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सबकी धड़कनें रुक गई हैं। वे सांस रोके ओमी का गीत सुन रहे हैं। उसे अपलक देख रहे हैं और ओमी है कि आंखें बंद कर गा रहा है। मखमली आवाज का जादू हर किसी पर छाने लगा है।

सुनिए, क्या क्या खूब गाते हैं आप। मैं तो खो ही गई थी, मगर ये गीत नहीं था, मेरे दिल की आवाज थी। और आपने क्या कहा कि आप तो खो गई। अरे, आप खो जाएंगी तो मैं खुद को कहाँ ढूंढूंगा। अच्छा, अपना नाम तो बता दीजिए ताकि ढूंढने में कुछ आसानी हो। जी, मेरा नाम गीत है। अरे वाह, आप गीत और मैं गायक, क्या खूब है। अब समझा ये निगाहें क्यों बार बार आपकी तरफ खींची चली जा रही थी। चलिए, आप तो बातें बनाते हैं। उसे खूब याद है ओमी और गीत की वो पहली मुलाकात, जिस दिन ओमी के दिल की आवाज गीत तक पहुंची गई। फिर तो वो हर जलसे में ओमी की आवाज के साथ खींची चली आती। यही हाल ओमी का भी था। जब वो गाने लगता तो सबसे पहले उसी की ओर देखता, फिर आंखें बंद कर तसल्ली से गीत में डूब जाता। गीत उसकी जिंदगी थी, इसीलिए तो उसने अपने बैंड का नाम ओम बैंड से ओम गीत बैंड कर दिया था। ओमी के दोस्त उसे गीत का नाम लेकर खूब चिढ़ाते थे, मगर वो चिढ़ता नहीं था। उल्टे एक मीठी मुस्कान उसके होठों पर आ जाती, जैसे कोई अपना सबसे प्यारा राज सुन ले और भीतर ही भीतर खुश हो जाए। उसके दोस्त जानबूझकर उससे बात करते हुए गीत का नाम बीच में डालते हुए दोहरी जुबान में उससे पूछते, ओमी भाई, आज के जलसे में तुम्हारे गीत ने गजब ढा दिया भाई। ओमी हंसकर कहता, यार, गीत ने मंच पर ही नहीं, मेरे जीवन के रंगमंच पर भी गजब ढा दिया है। हाँ। वो कुछ देर हंसता, मगर फिर संजीदा होकर कहता, हाँ, पहले मैं गाता था, अब जिंदगी गाती है। मेरे गीतों के शब्द अब लगे बोलने, जब से सुर पर उन्हें वो सजाने लगी है। दूर कहीं कोयलिया गाने लगी है। उसे संजीदा देखकर दोस्त भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते। अम्मा यार, ये तो सच है, जब से गीत तेरी जिंदगी में आई है, तेरी आवाज में बला का जादू आ गया है, एक नशा सा छा गया है तेरी गायकी में। ओमी एक पल के लिए रुका, जैसे वो इस बात की गहराई को तौल रहा हो, फिर धीरे से अपने भीतर ही बोल पड़ा, हाँ, मेरे हर बोल में वो होती है, हर सुर में उसका चेहरा होता है। जब उसकी झुकी हुई नजरों को देखता हूँ तो मेरी तान खुद ब खुद ऊपर उठती चली जाती है। सब जानते थे कि ओमी और गीत एक दूसरे के लिए बने हैं, ये जोड़ी कुछ अलग ही है। ये बात अब किसी से छुपी नहीं थी। जलसों में लोग ओमी का गाना सुनने आते थे, मगर कनखियों से गीत को भी देखते रहते। ये अनूठी संगत थी, सुर और शब्द की आवाज।

गीत की सहेलियां भी कहां कम थी। हर वक्त उसे ओमी के नाम की मीठी झिड़कियां देती रहती। ए, गाता तो ओमी है मगर भाव तेरे चेहरे पर होते हैं, ऐसा कैसे होता है गीत? देख अभी भी तेरा चेहरा कैसा सिंदूरी हो गया है। हायो रब्बा, ओमी को देखते ही ये तो किसी दूसरी दुनिया में जा पहुंचती है। उनकी बातें सुन गीत एक पल के लिए चुप हो जाती, फिर धीरे धीरे जैसे मन में सांस लेते सपने को शब्द देती भी बोल पड़ती। हाँ सच में, ओमी जब तान भरता है ना तो जाने मुझे क्या लगता है, जैसे जैसे मैं इस दुनिया में हूं ही नहीं, किसी और ही दुनिया में हूँ। हाँ जैसे मैं बादलों की पालकी पर जा बैठी हूँ और ओमी की तान के साथ साथ ऊपर उठती जा रही हूँ, ऊपर और ऊपर, पता नहीं कितने ऊपर। सहेलियां एक दूसरे को देखने लगती और गीत बोलती रहती। और पता है जब भीड़ तालियां बजाती है, जब सारा हॉल उसकी आवाज की जादूगरी से गूंज उठता है, तो मेरे भीतर कुछ उमड़ने लगता है, जैसे जैसे कोई नदी बरसों से शांत बह रही थी और अचानक उसमें बाढ़ आ गई हो, और मैं उस बाढ़ को रोकना नहीं चाहती, बस उसमें बहती रहना चाहती हूँ। गीत तू तो बनी ही उसके लिए है रे, यूं ही तो तेरा नाम गीत नहीं पड़ा। गीत अपनी सहेलियों के चूहल में खो जाती और कहती, माँ ने संगीत सीखा था और प्यार से मुझे गीत कहकर बुलाया करती, गीत तो बस मेरे पुकारने का नाम था। मगर जब ओमी मुझे गीत कहकर बुलाता है ना, तब सच मानो मेरे कानों में संगीत गूंजने लगता है, मुझे अपना नाम सच्चा लगने लगता है, जैसे सालों से ये नाम उसी की आवाज का इंतजार कर रहा था, वो मुझे पुकारता है और मेरे भीतर एक चमकार सी बज उठती है, जैसे किसी ने सितार की मिजराब को छू दिया हो। हाँ ऐसा लगता है मुझे। और सच में ऐसा ही था, ओमी की आवाज में गीत थी और गीत की सांसों में ओमी का सुर, दोनों एक दूसरे में इस तरह घुले थे कि अलग करना मुश्किल था, जैसे नदी में समाया आसमानी रंग। दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, बिना कहे बिना जताए। ये प्रेम शोर नहीं करता था, ये बजता था धीरे धीरे, मीठे मीठे।

0: उसे अच्छी तरह ध्यान है कि कॉलेज में इस जोड़ी की कितनी चर्चा थी। वो अचानक सोच में पड़ जाता है और खुद से ही पूछ बैठता है, पता नहीं दोनों कैसे होंगे, कहां होंगे। जरूर दोनों ने शादी कर ली होगी, शायद इसलिए यहां आना कम हो गया होगा। क्या पता, कहीं शहर छोड़कर तो नहीं चले गए होंगे। काश कोई ओमी को ये बता दे कि मैं समय से पहले ही घर आ गया हूं। काश कोई ओमी को बता दे। वो करवट बदलता है, उसके भीतर बेचैनी है। कैसे वो अपनी बात ओमी तक पहुंचाए, पता नहीं ओमी कहाँ है, क्या पता। कब से उससे बात नहीं हुई, हर रात यही सब सोचते हुए करवटों में बीतती है उसकी। अधनींदी सी हालत में वो बीते वक्त की परछाइयों को पकड़ने के लिए दौड़ता रहता है। बीती जिंदगी की यादें उसके भीतर शोर मचाती रहती हैं, जबकि सामने अजब सा सन्नाटा रहता है। वो उस कागज की तरह था जिस पर कुछ लिख कर मिटा दिया गया हो। न उस कागज पर लिखे को पढ़ा जा सकता था, न वो ऐसा कोरा था कि जिस पर कुछ नया लिखा जा सकता हो। बिखरी यादें उसके जहन में आती जाती रहती। वो फिर जा पहुंचा उसी जलसे में जहां ओमी गाना गाकर उठा था और भीड़ उसे घेरे खड़ी थी। ओमी हर किसी से बात कर रहा था, मगर उसकी आंखें उधर कोने में खड़ी गीत की तरफ देखे जा रही थी। गीत भी उसे ही देख रही थी और खुश हो रही थी कि कितने फैन थे उसके इर्द गिर्द। वो दूर से ही उनकी गिनती कर ही रही थी ताकि ओमी को बता सके। इतनी देर में उधर से मोहित बैंड के कलाकार गुजरने लगे। उसके पास से निकलते हुए उसके सिंगर मोहित ने ऊंची आवाज में कहा,
1: हीरे और पत्थर में फर्क करना सीख ले गीत, हीरा भी मैं हूँ और हीरो भी मेरी।
0: मोहित की बात पर उसके साथियों का ठहाका गूंज उठा। गीत ने भले ही उसकी बात पर लापरवाही से कंधे उचका दिए, मगर ओमी इसे हल्के में नहीं ले पाया। वो भीड़ का दायरा तोड़कर मोहित की तरफ बढ़ा। उसके फैन भी उसके पीछे पीछे हो लिए और देखते ही देखते बैट बल्ले निकल गए। अचानक ओमी ने देखा कि गीत को मोहित के साथियों ने घेर लिया था। ओमी सब कुछ भूलकर उस चक्रव्यूह में दाखिल हो गया, जिससे बाहर निकलने के लिए गीत भरपूर कोशिश कर रही थी। ओमी के पीछे उसके दोस्त भी आ गए। भीड़ में पता नहीं कौन किस पर हावी था। चीख पुकार के बीच गोली चलने की आवाज आई और कुछ ही देर में सायरन बजाती एम्बुलेंस आ पहुंची थी और गीत को जिसमें चढ़ाया जा रहा था। उसके कपड़े खून में भीगे हुए थे, कातर नजरें ओमी को ढूंढ रही थीं। गीत बेआवाज उसे पुकार रही थी। ओमी महसूस कर रहा था कि अगर गीत को कुछ भी हो गया तो उसकी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ओमी मन ही मन गीत को पुकार रहा था। हाँ, मन ही मन गीत को

एम्बुलेंस के बजते हूटर की तेज आवाज से उसकी नींद उचट गई और वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। अच्छा हुआ कि उसकी नींद टूट गई। वो उस घटना को सपने में भी दोहराना नहीं चाहता था। उसने अपनी आंखें कस कर मूंद ली। वो जीवन के उस प्रसंग को पूरी तरह नकार देना चाहता था जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी। मगर आंखें बंद कर लेने पर वो दृश्य और साफ साफ दिखने लगता था। आखिर वो उठकर बैठ ही गया, सोने की जबरन कोशिश छोड़ दी और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर अंधेरा था, मगर उसकी चेतना में वो दृश्य जस का तस कैद था, जिसे वो कभी दोहराना नहीं चाहता था। उसका ऐसा अतीत जिससे उसका वर्तमान इस तरह चिपका था कि उसे कभी अलग ही नहीं किया जा सकता था। यही वो पल था जहां से बदल गई थी उसकी दुनिया, वो दुनिया

और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर अंधेरा था, मगर उसकी चेतना में वो दृश्य जस का तस कैद था, जिसे वो कभी दोहराना नहीं चाहता था। उसका ऐसा अतीत जिससे उसका वर्तमान इस तरह चिपका था कि उसे कभी अलग ही नहीं किया जा सकता था। यही वो पल था जहां से बदल गई थी उसकी दुनिया, वो दुनिया जो ओमी की दिलकश आवाज से गुलजार थी, वो दुनिया जिसमें गीत की मासूमियत भरे प्रेम का दरिया छलकता रहता था। मगर उस दिन सब कुछ बदल गया था। भुलाने की लाख कोशिशों के बावजूद उस दिन की घटना उसके जहन में कब्जा करके बैठी थी। उसे अच्छी तरह ध्यान है कि मोहित के एक साथी ने पिस्तौल निकाल ली और ओमी की ओर घुमा दी। बचने की कोशिश में ओमी बगल घूम गया और गोली उसके पीछे खड़ी गीत के सिर पर लग गई। ओमी ये देखकर अपना आपा खो बैठा और उस व्यक्ति पर झपट पड़ा। हाथापाई में पिस्तौल छिटक कर दूर जा गिरी। ओमी तूफान की तरह पिस्तौल की ओर लपका। वह सोच की सुरंगों में गहरे जा घुसा था कि अचानक बरामदे में जलती बत्ती गुल हो गई। शायद बिजली चली गई थी, लेकिन पंखा चल रहा था। हो सकता है बल्ब फ्यूज हो गया हो, पूरी रात जलता रहा था। अब इस अंधेरे में ओमी उसे कैसे ढूंढ पाएगा? वो बेहद परेशान हो गया ये सोचकर। ऐसा ही परेशान वो उस दिन भी था जब ओमी पिस्तौल उठाने लपका था। वो जानता था कि इस वक्त अगर ये पिस्तौल ओमी के हाथ लग गई तो वो सारी दुनिया तहस नहस कर डालेगा, तांडव मचा देगा। उसने बिना एक पल गंवाए ओमी से पहले खुद वो पिस्तौल अपने हाथ में उठा ली और ओमी को गीत का ध्यान रखने का इशारा किया, जिसे खून से लथपथ हाल में एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जा रहा था। जीवन में आया ये कल बीत कर भी नहीं बीता और उसे आज भी उसी तरह उद्वेलित कर रहा था। उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखों को जोर से भींच लिया, जैसे वो आगे की घटना को रोक देना चाहता हो, ताकि वक्त वहीं थम जाता और वो न होता जो हुआ।

पीछे की बेंच पर बैठता है, खामोश, बेबस। वो ओमी को देखकर भी नहीं देखता कि कहीं पुलिस को ओमी पर किसी तरह का शक न हो जाए। उसे कुछ याद नहीं कौन उसकी वकालत करता है और वकालत में क्या क्या कहता है। वो बस खामोशी से सबकी दलीलें सुनता रहता है, न किसी का समर्थन करता है न विरोध। उसकी चुप्पी को हामी समझा जाता है और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। ओमी दूर से उसे जेल जाता देखता रहता है। ओमी की आंखों से झांकते सवालों और उसमें तैरती अंतहीन बेबसी को अनदेखा कर वो जेल की सलाखों में कैद हो जाता है।

वो दोबारा बिस्तर पर लेट जाता है, सोने की कोशिश करने लगता है, मगर उसे लगता है कि तब से आज तक वो नींद में ही तो जीता रहा और इसी अवस्था में इतने बरस गुजार दिए। वो करवट बदलता है और साथ ही दृश्य बदलता है। वो देखता है उसके हाथ में पिस्तौल है और पुलिस उसे पकड़कर लिए जा रही है। ओमी उसे रोकना चाहता है, उसके पीछे पीछे आ रहा है, मगर वो ओमी को रोक देता है। तो गीत का ध्यान रख, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, वो ओमी को देखकर बुदबुदाता है। ओमी दौड़कर एम्बुलेंस में जा बैठता है। उसके बाद कोर्ट कचहरी, पेशी पर पेशी, हर पेशी पर ओमी आता है।

हर रात यही कहानी कई कई तरह से उसकी आंखों में घूमती रहती है। हर रात वो बीच नींद में जाग जाता और फिर यादों का अंतहीन सिलसिला चल पड़ता। प्याज के छिलकों की तरह एक के बाद एक घटनाओं का सिलसिला उसे मथता रहता। वो याद करने लगता कि जेल जाते वक्त ओमी ने धीरे से उससे कहा था कि वो उसका इंतजार करेगा, उसके पीछे इस घर का ख्याल रखेगा। वह यह सब कतई दोहराना नहीं चाहता, वह उस सारी कहानी को भूल जाना चाहता है। उस रात भी इसी कोशिश में लगा था कि दिमाग में छपी इस दर्दनाक इबारत को किस तरह मिटाया जाए कि अचानक

कोशिश में लगा था कि दिमाग में छपी इस दर्दनाक इबारत को किस तरह मिटाया जाए कि अचानक कहीं दूर से उसके कानों में कोई आवाज सुनाई पड़ती है, एक मीठी तान, ऊंची तान, सुरीला आलाप। अरे अरे, ये आवाज तो ओमी की है। हाँ, ओमी की ही तो है, शत प्रतिशत ओमी की। हाँ, ये ओमी ही है, ओमी ही है। वो हड़बड़ाकर बिस्तर से उठता है। मैं जानता था ओमी जरूर आएगा। मैं जानता था वो जरूर आएगा, इसीलिए तो बत्ती जला रखी थी मैंने। हाँ, मगर कहाँ, बल्ब तो फ्यूज हो गया था, पर ओमी तक मेरी आवाज पहुंच गई होगी। देखा, अंधेरे की टोह लगाता ओमी आ ही गया मेरे पास। मैं आया, बस तुरंत आया। आता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ ओमी, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, कहता हुआ वो दरवाजे की तरफ लपका। चिटकनी खोलने की जल्दबाजी में हाथ दीवार से टकराकर छिल गया, मगर उसे सुध कहाँ थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, आगे पीछे झांका, वहां कोई दिखाई नहीं दिया। ओमी, जरूर तू मेरे साथ मस्ती कर रहा है, यही कहीं छुपा होगा तू बाहर, है ना? कहाँ है ओमी, कहाँ है तू, कहाँ छिपा है ओमी, देख सामने आ जा, कहाँ है? वो दरवाजे से बाहर निकल आया, सीढ़ियों की तरफ लपका, मगर वहां भी कोई नहीं था। कुछ पल को मायूस तो हुआ, मगर फिर अपनी बेवकूफी पर खुद ही हंस पड़ा। अरे, आवाज तो उधर खिड़की की तरफ से आ रही थी, और मैं यहाँ दरवाजा खोलने आ गया। वो खुद पर ही हंसने लगा और दौड़कर घर के पिछवाड़े में बगीचे की तरफ दौड़ा। उसके भीतर का कौतूहल देखते ही बनता है। जिस पल का वो इतनी रातों तक जगकर इंतजार करता रहा, आखिर वो सफल हुआ। हड़बड़ी के बावजूद वो दबे पांव घर के पिछवाड़े की तरफ बढ़ता है। बेतरतीब लताओं का जाल उसे किसी जासूसी फिल्म का आभास दे रहा है। अंधेरे उजाले के बीच हर पेड़ के पीछे कोई साया छुपा सा लग रहा है। वो धीमी आवाज में पुकारता है ओमी को, ओमी, ओमी, ओमी, मगर कोई उत्तर नहीं मिलता। ओमी, वो फिर पुकारता है, इस बार थोड़ी तेज आवाज में पुकारता है, ओमी, सुन रहे हो ओमी? पीछे की तरफ हल्की सी सरसराहट मालूम पड़ती है। वो हौले से घूमकर देखता है, मगर ओमी कहीं नहीं दिखता। अलबत्ता एक बिल्ली जरूर झाड़ियों से निकलकर दूसरी तरफ भाग जाती है। वो मायूस हो जाता है, उसकी आंखें सुनसान सड़क को टटोलती हैं, मगर दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। अंधेरा और घना होने लगता है, इतना घना कि जिसमें परछाई भी दिखाई न पड़े। आखिर वो ओमी को कहां से देख पाता? वो लौटकर कमरे में आ जाता है, गहरी सांस भरकर वापस बिस्तर पर लेट जाता है।

अगली सुबह जब वो सोकर उठा तो धूप की तेज किरण आंखों पर पड़ रही थी। वो बहुत व्याकुल था। अब वह और सब्र नहीं कर सकता था। उसे ओमी को खोजना ही था और ये काम वो अकेला नहीं कर सकता था। उसे किसी के मदद की जरूरत थी। वो उठकर पड़ोस में जाने को बढ़ा। हाँ, हो न हो वे जरूर बता पाएंगे कि मेरे पीछे यहाँ कोई कभी आया था और वो कहाँ रहता है। मैं जाकर पड़ोस में पूछ लेता हूँ। मगर दरवाजे पर दस्तक देने से पहले वो ठिठक गया। किसी ने चेताया कि अब वो क्या करने जा रहा है। वो सोचने लगा कि पड़ोसी को अपने बारे में क्या बताएगा, और ये भी कि वो इतने सालों तक कहाँ रहा और आज अचानक कैसे आ गया, और ओमी को क्यों ढूंढ रहा है। वो एक सजा याफ्ता मुजरिम था। ये जानकर पास पड़ोस के लोग पता नहीं उसके साथ कैसे पेश आए। हो सकता है उससे डरने लगे, अपने बच्चों को भी उससे बचकर रहने की हिदायत दे डाले। ऐसे में उसकी सहायता कौन करता। वो बहुत असहाय हो गया। फिर उसे ध्यान आया कि जेलर साहब उसे बहुत मानते थे। वो जेलर साहब की ओर जाने को लपका। सोचने लगा, क्यों ना जेलर साहब से ही मदद ले लूं। हाँ, उनकी वजह से ही तो मेरी सजा 2 साल कम हो गई और मैं जेल से छूटकर बाहर आ गया। हाँ, वो बहुत समझदार हैं। जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। हाँ, जेलर साहब के पास जाता हूँ। वहीं जाता हूँ मैं। वो सोचता है कि जेलर साहब कितने भले और मददगार हैं। वे जरूर उसकी सहायता करेंगे। वह याद करता है कि बिना उसके कुछ कहे ही जेलर साहब ने उसकी फाइल मंगाई थी और उसकी रिहाई के लिए अपील की थी। जेलर साहब भी एक ऐसे इंसान थे जिनसे वो अपने मन की बात कह सकता था और वही कोई रास्ता भी सुझा सकते थे। बस फिर क्या था, वो जल्दी से तैयार होकर जेल की तरफ निकल पड़ा।

क्या हुआ, घर में मन नहीं लगा? जेलर साहब ने पूछा। वो सीधा मुद्दे पर आते हुए बेचैनी भरे स्वर में कहता है, साहब ओमी से मिलवा दो ना। ठीक है, मिलवा देंगे, पर ये ओमी है कौन? साहब जी, वो मेरे साथ ही रहता था, बहुत अच्छा गाता था, अरसा हो गया उसकी आवाज सुने। वो मेरे साथ यहां भी आया था, मुझे जेल तक छोड़ने। उसने वादा किया था साहब कि वो मेरे घर का ध्यान रखेगा। जेलर साहब सोच में पड़ गए, कौन हो सकता है, क्योंकि उनके रहते तो कभी कोई से मिलने आया नहीं। खैर, जब ये जेलर साहब इस जेल में आए, तब अन्य मुजरिमों की तरह इसकी भी पिछली कहानी से जेलर साहब पूरी तरह नावाकिफ थे। हाँ, उसके स्वभाव की नरमी से जरूर जेलर साहब को प्रभावित किया था और उन्होंने उसकी समय पूर्व रिहाई की अपील भी लगाई थी। अपील करते समय ही उन्होंने उसकी फाइल पढ़ी थी और जाना था कि ये हत्या के जुर्म की सजा भुगत रहा है। उन्हें तब भी विश्वास न हुआ था कि ये व्यक्ति किसी का कत्ल कर सकता है। खैर, जेलर साहब ने अर्दली से कहकर उसकी फाइल मंगवाई थी कि शायद उसमें ओमी का कुछ पता ठिकाना मिल सके। अर्दली फाइल लाकर देता है, जेलर साहब उसकी फाइल पलटते हैं कि अचानक खट से एक तस्वीर फाइल से नीचे गिरती है। जेलर साहब से पहले वो लपक कर तस्वीर उठा लेता है और चहक उठता है, साहब जी, साहब जी, साहब जी, यही तो है ओमी। हाँ साहब जी, यही है ओमी, इसी को तो ढूंढ रहा हूँ मैं। इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसके बिना मेरी रिहाई का कोई मतलब नहीं है साहब जी। इसे ढूंढ दो, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो। जेलर साहब सोचने लगे कि फोटो फाइल से निकली है तो इसमें इसके बारे में भी जरूर कुछ लिखा होगा। वो फाइल के पन्ने पलटने लगते हैं। शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी को दफा 302 के जुर्म में आज तारीख। जैसे जैसे वे फाइल पढ़ते जा रहे थे, सारा रहस्य खुलता जा रहा था। जब उसे यहाँ लाया गया था और रिकॉर्ड के लिए जो तस्वीर खींची गई थी, ये वही तस्वीर थी, यानी ओमी और कोई नहीं, वो खुद था। जेलर साहब समझ चुके थे कि लंबे समय तक जेल की जिंदगी जीते जीते वो खुद को ही पहचान नहीं पा रहा था। अपने कॉलेज के ओम गीत बैंड का वो सिंगर, हिंदुस्तानी और पाश्चात्य संगीत का फ्यूजन, जिसके गाने की खासियत थी, जिसकी ऊंची तान और दिलकश आवाज के कितने ही दीवाने थे, वो और कोई नहीं, खुद ही था ओमी। जेलर साहब फाइल पलट रहे थे और महसूस कर रहे थे कि एक समय में वो कितना हसमुख और हाजिर जवाब हुआ करता था, कितना खूबसूरत, कितना सुदर्शन युवक, मूछों की हल्की धारी, चमकदार आंखों वाला वो युवक, संगीत की धुन पर थिरकता, आवाज के आरोह अवरोह पर झूमता ओमी एक जिंदा दिल इंसान था। उसके दिलकश आवाज को सुनने भीड़ उमड़ आती थी। ओमी, ओमी, ओमी, ओमी, हर तरफ उसके नाम की धूम मची रहती थी। ऐसे ही म्यूजिकल कॉन्सर्ट में अपने प्रतिद्वंदी मोहित बैंड के लोगों के साथ उसका झगड़ा हुआ। हाथापाई, जानलेवा हमला, जिसमें इसकी गोली से गीत नाम की युवती की मौत हो गई। उसके बाद से ही ये अवसाद में चला गया, ऐसे गहरे अवसाद में कि इसने खुद को बचाने की कोशिश करना तो दूर, बल्कि खुद की उसकी हत्या का इल्जाम अपने सिर ले लिया। उसके वकील ने कहना चाहा कि ये गोली बचाव के दौरान गीत को लगी थी, मगर शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी अब जीना ही नहीं चाहता था। जेलर साहब समझ रहे थे कि ओमी यानी वह खुद ही खुद को माफ नहीं कर पा रहा था और उसने अपने लिए ये उम्र कैद की सजा चुनी थी।

जिस तरह सभी कैदी अपनी रिहाई के दिन गिनते रहते थे, इसने कभी भी जेल से बाहर निकलने का सपना नहीं देखा। यही उसकी दुनिया थी। मगर जब जेलर साहब की मदद से उसकी रिहाई हुई, तब वो खुद ही दो हिस्सों में बट गया। वो खुद की पिछली जिंदगी को थर्ड पर्सन होकर देखता रहा और खुद को ही खोजता रहा। उसके नाम के अक्षर कैदी नंबर में तब्दील हो गए। उसके भीतर का ओमी जेल की ऊंची दीवारों में दफन हो गया। उसकी आवाज की खनक लोहे की सलाखों में गुम हो गई। जेलर साहब पूछना चाहते थे कि ये कैसी और किसकी रिहाई थी, क्योंकि जिसे कैद किया गया था वो रिहा होने से बिल्कुल अलग था। कैद तो किया था एक मशहूर सिंगर को, जिसकी लरजती आवाज के कितने ही दीवाने थे, मगर जिसे रिहा किया गया, ऊंची तान लेना तो दूर, वो तो किसी से दबी जुबान में भी बात नहीं करता था। चुपचाप हुक्म की तामील करना उसे बाकी कैदियों से अलग करती थी। हंसने गाने से तो उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। उसकी कोई पसंद नापसंद नहीं थी। अब वो किसी से नहीं लड़ता था, किसी से नहीं उलझता था, कोई बहस नहीं। उसमें न तो किसी तरह की जिद थी न उत्तेजना। कैद के इन लंबे वर्षों में वो एक निहायत तटस्थ व्यक्ति हो चला था, एकदम शांत और निर्विकार। अनजाने में या आत्मरक्षा में वो खुद अपनी प्रेमिका की हत्या का कारण बन गया था। इस आत्मग्लानी में घुल घुल कर उसकी जिद पानी हो गई थी और वो अपने भीतर ही भीतर खामोश होता चला गया। रिहाई के बाद अचानक वो गुमशुदा शख्स ओमी उसके भीतर उभरने लगा था और ये व्यक्ति दो बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियतों में बट गया था। जेलर साहब महसूस कर रहे थे कि वो मल्टीपल डिसऑर्डर का शिकार हो चुका था, यानी एक ही व्यक्ति में अलग अलग किरदारों को जीना। वो खुद को खुद से अलग करके देख रहा था, कुछ हद तक आउट ऑफ बॉडी जैसा एहसास। ये तुम्हारी ही तस्वीर है, समझे? तुम ही ओमी हो, शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी। सुना तुमने? समझे कुछ? तुम ही हो वो ओमी। जेलर साहब ने उसकी तस्वीर उसे वापस लौटाते हुए कहा। वह कुछ समझ नहीं पाया कि जेलर साहब क्या कह रहे हैं। वो अबूझ सा जेलर साहब का मुंह ताकने लगा। फिर वो अकबकाकर कुर्सी से उठा और उस फोटो को लेकर कमरे में लगे आईने के सामने खड़ा हो गया। कभी वो उस तस्वीर वाले कमसिन चेहरे को देखता तो कभी आईने में बड़ी अपनी अधपकी दाढ़ी को। जेलर साहब कह रहे थे कि ये दोनों चेहरे उसी के हैं, मगर उन दोनों में कुछ भी तो एक जैसा नहीं था। वे दोनों शख्स एक कैसे हो सकते थे? वह पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था, खुद से पूरी तरह अनजान। वो सोच रहा था, क्या कह रहे हैं जेलर साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं ही ओमी हूं। क्या कह रहे हैं जेलर साहब, पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी

गीतों भरी कहानी। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अलका सिन्हा की लिखी कहानी रिहाई। वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी का था, संपादन सहयोग सौरभ घारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र सिंह नेगी।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे विविध भारती कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से FM बैंड 101.3 MHz पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का मही चैनल है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत हम आपको जानकारी देंगे हमारी आज की सभा में शेष रहे और कल की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। तो आइए श्रोताओं, पहले आपको सुनवाते हैं हमारी आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही पूर्व आप सुनेंगे ठीक 5:05 पर कार्यक्रम नारी लोक। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से शाम के 5:30 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से शाम के 6:30 पर। राजस्थान में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर। शाम के 7 बजे आप सुनेंगे चौपाल कार्यक्रम। जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम के 7:30 पर।

रात्रि के 8 बजे फिनलैंड आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से जापान में होने वाले एशियाई खेल 2026 के 20वें संस्करण की पूर्व झलक जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम फिनलैंड 8:30 पर समाचार संध्या फिनलैंड आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 8:45 पर रात्रि के 9 बजे से आप सुनेंगे विविध भारतीय कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। हमारे केंद्र से फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि के 10 बजे से। रात्रि के 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। श्रोताओं से हमारी आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रम आप सुनते हैं हमारी कल की पहली सभा के कार्यक्रमों को। हमारी पाठक सभा की शुरुआत होगी की तरह सुबह 5:53 पर।

सुबह के 6 बजे अपनिंग आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। चिंतन अपनिंग आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से 6:05 पर, वंदना अपनिंग 6:10 पर, रामचरित मनगन अपनिंग 6:30 पर, कार्यक्रम खेती में बात अपनिंग 6:45 पर, आदिवासी लोक संगीत कार्यक्रम अपनिंग 6:50 पर, बातान अपनिंग 7:20 पर।

विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह के 7:30 पर। समाचार प्रभात आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह के 8:00। कार्यक्रम कुद्दी से आप सुनेंगे 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:45 पर। सुबह के 9:00 से आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी भाषा में प्रादेशिक समाचार।

सुगम संगीत आप सुनेंगे 9:10 पर। विविध भारती कार्यक्रम सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से सुबह के 9:30 पर।

हमारे केंद्र से सुगम संगीत आप सुनेंगे सुबह की 11 बजे, फिल्म संगीत आप सुनेंगे 11:30 पर, दोपहर के 12 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस समय शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी लोक।

0: नारी है शक्ति, नारी सम्मान, उससे रोशन है सारा जहां। हिम्मत, ममता, साहस की पहचान, नारी से ही बनता सुंदर संसार। इन्हीं पंक्तियों के साथ आगाज करती हूँ आज के नारी लोक कार्यक्रम का। नारी लोक कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों को प्रीति यादव का प्यार भरा नमस्कार। फिर हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बातचीत से, और आज की हमारी बातचीत का विषय है सोशल मीडिया, सोच समझ कर करे इस्तेमाल। इस विषय पर बात की है कंप्यूटर शिक्षिका नीलम सोनी से, जो कि वर्तमान में इमानुएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पासवाड़ा में कार्यरत है। तो आइए सुनते हैं बातचीत।
1: आज हमारे जिंदगी में सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म ने हमें दुनिया से जोड़ दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं या सोशल मीडिया हमारा इस्तेमाल कर रहा है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है सोशल मीडिया, सोच समझ कर करे इस्तेमाल। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है नीलम सोनी, जो कि वर्तमान में इमानुएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कंप्यूटर शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। नमस्कार नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: नमस्ते प्रीति जी।
1: नीलम जी, सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूंगी कि सोशल मीडिया हमारे लिए उपयोगी कैसे है और कब यह परेशानी का कारण बन सकता है।
2: सोशल मीडिया आज हमारे जीवन का एक

0: महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, इसके माध्यम से हमें शिक्षा, समाचार, नई जानकारियां और अलग अलग लोगों से जुड़ने का अवसर मिलता है। महिला ऐसे नई नई चीजें भी सीख सकती है, अपने काम या व्यवसाय को भी बढ़ावा दे सकती है। लेकिन जब हम इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं तो समय की बर्बादी, तनाव, नींद की समस्या, परिवार से दूरी जैसी परेशानियां हो सकती है। इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूरत और समय की सीमा के अनुसार करना चाहिए ताकि किसी भी तरह का परेशानी का सामना न करना पड़े।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं घर के काम के बीच भी लगातार मोबाइल देखती रहती है। सोशल मीडिया की यह आदत कैसे कम की जा सकती है?
0: प्रीति जी, सबसे पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि बार बार मोबाइल देखने की जो हमारी आदत होती है वह हमारे काम और एकाग्रता को काफी प्रभावित कर सकती है। अगर हम बार बार मोबाइल देखते हैं तो हमें प्रॉपर नहीं कर पाते हम उस काम को, और बार बार हमारा ध्यान उधर मोबाइल की तरफ ही डाइवर्ट होता है। काम करते समय मोबाइल को या तो हम साइलेंट रख दें या कहीं किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पे बार बार उसकी जो आवाज है हमें प्रभावित न करे और हम अपना काम आसानी से कर सके। केवल जरूरी कॉल या संदेश के लिए ही मोबाइल देखें, और सोशल मीडिया में एक दिन के लिए थोड़ा निश्चित समय हो तो ही बेहतर है, वरना सोशल मीडिया बहुत अच्छा भी होता है और उससे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। धीरे धीरे हम इस आदत को विकसित करके इसमें कमी की जा सकती है।
1: जी बिल्कुल ठीक। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें और संदेश आते हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन सी जानकारी सही है और कौन सी गलत?
0: हाँ, ये बात तो है कि अभी पता ही नहीं चल पाता है बहुत से लोगों को, जैसे जो मोबाइल यूज कर तो रहे हैं पर उनको ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सी न्यूज सही है और कौन सी न्यूज उनके लिए खराब है। सोशल मीडिया पर हर जानकारी सही नहीं होती जो हमें दिखाई जाती है, इसलिए किसी भी खबर को देखकर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए और न ही उन मैसेज को आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि खबर किस जगह से आई है, किस शोर से आई है और कहाँ से आई है और किसने भेजी है, इसलिए उसमें पूरी डिटेल को बिना जाने सोचे समझे कई बार हम आगे मैसेज को फॉरवर्ड भी कर देते हैं। इससे भी हमें कई सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं, और जानकारी अगर सही है तो ही हमें आगे फॉरवर्ड करना चाहिए, वरना अगर ऐसा जरा सा भी कोई संदिग्ध जैसी कोई बात लगे या हमें ऐसा लगे कि नहीं हमें नहीं करनी चाहिए तो हमें पहले पूरा जांच ले, विश्वास कर ले और फिर उसके बाद ही फॉरवर्ड करना चाहिए, आगे किसी भी चीज को पोस्ट करना चाहिए। देखा जाता है कि जैसे कि कितनी बार ये नहीं पता कर पाते कि ये न्यूज सही है या नहीं सही है, तो या तो उनका एक प्रॉपर लिंक पता चले तो ही हम आगे फॉरवर्ड करें, और जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ऐसी बहुत सी चीजें आती है जिसको बहुत से लोग बिना सोचे समझे या तो उसको लिंक पे क्लिक कर देते हैं और या फिर आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। कितनी बार लिंक पे क्लिक करने पर हमारा जो अकाउंट भी बहुत प्रभावित होता है, और बाकी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे हमें काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो अगर हम उसको पूरा जानते हैं तो ही हमें उसको आगे बातचीत करनी चाहिए, अन्यथा कहीं पे भी हमें कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए।
1: ऑनलाइन ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते समय महिलाओं को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: हाँ सही कहा अभी के, बहुत सारी ऑनलाइन ठगी तो बहुत ज्यादा चल रही है, जब से मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक आए तब से तो बहुत ही ज्यादा हो गई है। ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपनी बैंकिंग और व्यक्तिगत जानकारी किसी को भी न दें और अपने सारी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखें। ओटीपी, एटीएम पिन या जो यूपीआई ये जो पिन है, जो पासवर्ड है, अपनी आईडी भी किसी को न दें या किसी भी बैंक की जानकारी अनजान व्यक्ति को नहीं दें, और बैंक कभी भी अपना कॉल आगे से नहीं करता है कि हमें अपनी जानकारी दे। अगर वो उनको करना होता है तो वो पर्सनली कॉल करते हैं, हमें कभी जानकारी के लिए कॉल नहीं किया जाता है। किसी अनजान लिंक पर भी हमें क्लिक नहीं करना चाहिए, जैसे बहुत सारे लिंक ऐसे होते हैं कि आप क्लिक करिए और आपको ये गिफ्ट या ये वाउचर मिल जाएगा, तो हम उसको भी नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं है कि कौन है। तो और लालच देने वाले ऑफर से सावधान रहें, जैसे अभी अभी दिवाली है, नवरात्रि, इस पे इतने ऑफर आते हैं, बहुत से लोग बिना सोचे समझे उस पे क्लिक कर देते हैं और आईडी हैक हो जाती है और या फिर अकाउंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक या किसी संस्था का कर्मचारी बनकर जानकारी मांगता है तो पहले उससे पुष्टि करनी चाहिए, और बिना काम के बैंक बिना किसी रीजन के कभी फोन ही नहीं करता है, ये आप सुनिश्चित कर लें।
1: नीलम जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि कोई जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए, अब वैसे ही कई बार हम सोशल मीडिया पर अपनी निजी तस्वीरें और व्यक्तिगत जानकारी कहीं न कहीं साझा कर ही देते हैं, तो क्या ये सुरक्षित है?
0: नहीं, सुरक्षित तो बिल्कुल भी नहीं है। सोशल मीडिया पर जो हम पिक्चर डाल देते हैं वो बिल्कुल भी सुरक्षित तो नहीं है। पहले थोड़ा बहुत सुरक्षित था, पर जब से ये चैट जीपीटी और ये कैनवा और ये सब आ गया है तब से तो बिल्कुल भी इसको सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। मैंने खुद ने एक एग्जांपल देखा था, अभी थोड़े दिन पहले ही एक वीडियो देखी थी जिसमें किसी

0: लड़की ने अपनी एक फोटो इंस्टाग्राम पे डाली और वही फोटो लेके किसी ने हैकर ने किसी मतलब ऐसी गंदी वीडियो के साथ उसका फोटो अटैच करके डाल दिया। और जब उसे पता चला कि ये वीडियो वायरल हो चुकी तो उसके घर वाले को इतना शॉक लगा कि उनकी जो माता पिता थे दोनों ने सुसाइड करना पड़ गया। ऐसी फेक वीडियो बना के डाली गई थी कि वो सहन ही नहीं कर पाए थे। तो हमें किसी भी तरह से कोई भी इन्फॉर्मेशन या हमारी कोई भी व्यक्तिगत तस्वीरें जानकारी किसी को नहीं शेयर करनी चाहिए और प्राइवेसी सेटिंग सही तरीके से रखना चाहिए। केवल भरोसेमंद लोगों को ही जानकारी देनी चाहिए। इंस्टाग्राम पे हम हर किसी को फॉलो नहीं कर सकते, हर किसी को भी हम लाइक नहीं कर सकते। कोई भी फोटो या जानकारी पोस्ट करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या पब्लिक में वास्तव में करना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे व्यक्तिगत तस्वीरें डाउनलोड कर देते हैं, इसके बाद उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
1: जी नीलम जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या बच्चों और परिवार के सामने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए?
0: माता पिता की भूमिका तो सोशल मीडिया को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बताई जाती है। जैसे कि जो बच्चे हैं वो अपने घर से ही देख के सीखते हैं, बच्चे बड़ों को देखकर बहुत कुछ सीखने की कोशिश भी करते हैं। माता पिता बच्चों को सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान, प्राइवेसी और ऑनलाइन और सेफ्टी के बारे में जरूर समझाना चाहिए। बहुत बार पेरेंट्स खुद मोबाइल चलाते हैं पर बच्चों को उनके बारे में अवगत नहीं कराते, न उन्हें कुछ चीज की जानकारी देते, तो बच्चा भी उनकी अनुपस्थिति में कोई भी सोशल मीडिया पे कोई भी लिंक क्लिक करना और ये सब हो जाता है, तो उन्हें इन चीज के बारे में पता नहीं है। तो माता पिता का यह कर्तव्य है कि वो उन्हें बताए कि मीडिया के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, और हमें किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया के थ्रू। बच्चों के लिए उचित स्क्रीन टाइम तय करना चाहिए कि उनको बातचीत करनी चाहिए, वे ऑनलाइन क्या देख रहे हैं। जब भी बच्चे ऑनलाइन कुछ देखे तो माता पिता ये सुनिश्चित कर ले कि वो उनके आसपास ही रहे, वो कभी भी अकेले में बैठ के या कभी दोस्तों के साथ बैठ के सोशल मीडिया का यूज ना करें, क्योंकि कई बार छोटी मोटी चीज देखते देखते ही बच्चे बहुत कुछ देखने लग जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता है कि हम वो क्या देख रहे हैं, और उनमें उनको बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत मजा आता है, फिर क्या उनकी आदत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण माता पिता को बाद में पता चलता है और बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि माता पिता खुद भी मोबाइल का संतुलित उपयोग करें, ताकि जब माता पिता खुद मोबाइल का संतुलित उपयोग करेंगे तो बच्चे भी उन्हें देख के वही सीखेंगे जो माता पिता करते हैं।
1: जी नीलम जी, अगर किसी को महसूस हो रहा है कि वह सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो उसे कम करने के लिए उसे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, या सोशल मीडिया यूज करना ही छोड़ देना समाधान है, इसके बारे में आप बताइए।
0: उसे लग रहा है कि सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो धीरे धीरे उसका बंद करना शुरू करना चाहिए। उसके लिए उसको स्क्रीन टाइम का यूज करना चाहिए कि मुझे बस इतने टाइम में ही ये चलाना है, पर उससे ज्यादा मैं नहीं चला सकती। नोटिफिकेशन तो बंद ही होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो बहुत से लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो ही जाता है कि नहीं कुछ तो आया है, कुछ तो आया यूं करके, और वो फिर वो जो 10 मिनट का काम होता है वो आधे घंटे से ज्यादा भी हो सकता है। तो उनको इसके लिए सुनिश्चित होना चाहिए कि खाली समय में परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। अभी जैसे देखा जा सकता है कि घर में अगर 5 लोग हैं तो 5ों लोग मोबाइल चलाते मिल जाएंगे आपको, तो ये बड़ों को होना चाहिए कि वो मोबाइल का यूज न करके बच्चों के साथ बैठ के बातचीत करें, उनके साथ या तो कोई किताब पढ़े या फिर घूमने निकल जाए, या कोई भी जो माता पिता की अच्छी हॉबी है वो बच्चों में डेवलप करें। जरूरत पड़ने पर कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक भी किया जा सकता है, इसका कोई किसी तरह का ना उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर सोशल मीडिया छोड़ दिया जाए तो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है, उससे उनके हजारों काम पूरे हो सकते हैं।
1: जी नीलम जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया। अब अंत में श्रोताओं को सोशल मीडिया के सही उपयोग के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: हाँ, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी लोगों को सोशल मीडिया का बहुत कम उपयोग करना चाहिए, जरूरत पड़ने पर ही सोशल मीडिया का प्रयोग करें। आपको अगर कुछ काम है तो ही आप सोशल मीडिया का यूज करें, अन्यथा नहीं करें।
1: तो श्रोताओं, आज की बातचीत से यही सीख मिलती है कि सोशल मीडिया हमारे जीवन को आसान और बेहतर बना सकता है, बशर्ते हम उसके इस्तेमाल की सीमा और सुरक्षा दोनों को समझे। तो नीलम जी, आपने हमारे कार्यक्रम में भाग लिया और बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत की कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत और करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। इस कृषि यात्रा में हमारी महिला किसान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खेत से लेकर खाद्य सुरक्षा तक उनके योगदान को नमन। वर्ष 2026 मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। इसी अवसर पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC लेकर आया है कृषि सखी अभियान, महिला किसानों के सम्मान, जागरूकता और सशक्तिकरण की एक पहल। क्योंकि खेती आपकी मेहनत है, आपके सपनों की फसल है और इसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक जोखिमों से फसल को सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आइए महिला किसानों के योगदान को सम्मान दे, हर किसान को जागरूक बनाए और सुरक्षित कृषि की ओर आगे बढ़े। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महिला किसान सशक्त तो भारत समृद्ध।
1: आज फिर से स्वागत है बीना आपका कार्यक्रम में। अब हम चलते हैं अपने अगले विषय की ओर, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। हर वर्ष 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समान मूल्य के काम के लिए महिलाओं और पुरुषों को समान पारिश्रमिक के महत्व के प्रति जागरूक करना है। कार्यस्थल पर व्यक्ति का मूल्य उसके काम, योग्यता और योगदान से तय होना चाहिए, न कि उसके लिंग से। समान अवसर और समान वेतन न केवल कार्यस्थल में निष्पक्षता को बढ़ावा देते हैं, बल्कि परिवार और समाज के आर्थिक विकास में भी योगदान देते हैं। यह तो थी चर्चा, चलते हैं गीत संगीत की ओर। सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत और संदेश।

0: आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: भारत की कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत और करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। इस कृषि यात्रा में हमारी महिला किसान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खेत से लेकर खाद्य सुरक्षा तक उनके योगदान को नमन। वर्ष 2026 मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। इसी अवसर पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC लेकर आया है कृषि सखी अभियान, महिला किसानों के सम्मान, जागरूकता और सशक्तिकरण की एक पहल। क्योंकि खेती आपकी मेहनत है, आपके सपनों की फसल है और इसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक जोखिमों से फसल को सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आइए महिला किसानों के योगदान को सम्मान दे, हर किसान को जागरूक बनाएं और सुरक्षित कृषि की ओर आगे बढ़ें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महिला किसान सशक्त तो भारत समृद्ध।
1: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: फिर से स्वागत है पहले कार्यक्रम में। अब हमारा अगला विषय है विश्व बांस दिवस। पहले यह हर वर्ष 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। बांस को अक्सर हरा सोना भी कहा जाता है। यह तेजी से बढ़ने वाला पौधा है और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहले बांस से फर्नीचर, टोकरिया, सजावटी वस्तुएं, कागज और कई उपयोगी उत्पाद बनाए जाते हैं। इसके अधिक से अधिक उपयोग और बांस आधारित हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर स्थानीय कारीगरों और पारंपरिक हुनर को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। और खास बात, हमारे शहर का नाम भी बांस की अत्यधिक उत्पादकता के कारण ही बांसवाड़ा पड़ा है। अब हम अगला विषय लेते हैं, सामाजिक सरोकार बढ़ाएं। मानो समाज केवल लोगों से नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारियों और आपसी सहयोग से बनता है। सामाजिक सरोकार का अर्थ है अपने साथ साथ दूसरों की जरूरतों और समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना, स्वच्छता रखना, पर्यावरण की रक्षा करना या किसी दुखी व्यक्ति का साथ देना, ये सभी सामाजिक सरोकार के उदाहरण है। आइए अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाए, क्योंकि एक जागरूक व्यक्ति की पहल कई लोगों के जीवन में खुशियां ला सकती है। तो दोनों सामाजिक सरोकार को जरूर बढ़ाइए। अगला विषय हमारा, मानसून में मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाएं। मतलब बारिश का मौसम चल रहा है, जब तक बारिश आ जाती है ऐसे में मच्छरों का प्रकोप बढ़ना स्वाभाविक है और साथ डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां होना आम बात है। तो इससे बचाव के लिए घर के आसपास पानी जमा न होने दे, जैसे कूलर, गमले, पुराने टायर, बाल्टी और पानी की टंकी। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। पूरी आस्तीन की शर्ट व फुल पैंट जरूर पहनना चाहिए। आसपास DDT का छिड़काव करें। वो बुखार, तेज सिर दर्द या बदन दर्द जैसे लक्षण हो तो तुरंत चिकित्सीय सलाह हमें जरूर लेना चाहिए। और बच्चों को भी आसपास के वातावरण में जब वो खेलने जाए तो उन्हें जाते समय ओडोमास या ऐसा कोई भी पेंट जो मच्छर से जो सुरक्षा दे ऐसा लोशन जरूर लगा के भेजना चाहिए। फिर से चलते हैं, आइए सुन लेते हैं उससे पहले संदेश।
4: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग।

0: और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: तो बहनों, इसी के साथ समय हो चला है बारिश का आनंद ले, अपने आप को स्वस्थ रखे, मस्त रखे, और इसी के साथ दीजिए अनुमति आपकी दोस्त प्रीति यादव को फिर मिलने के वादे के साथ। नमस्कार।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी लोक एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5:30 होने को है। आइए सुनते हैं विविध भारती कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज अभिनेत्री शबाना आजमी का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और सुनते हैं उन्हीं की फिल्म से ये गीत। फिल्म का नाम है मासूम, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार गुलजार साहब और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

ये आवाज लता मंगेशकर की थी और फिल्म का नाम था मासूम। आइए सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, स्वर किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के। फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथोनी।

छुपाए रखा, झोला दबाए रखा।

कब छुपाए रखा, शोला दबाए रखा, हुस्न हमेशा रूठा रहता है, खुदा गवाह हम सच कहना है।

0: आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में अभी आपने समीर का लिखा ये गीत सुना। स्वर अलका याग्निक और साथियों के थे। फिल्म का नाम था जानवर।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं। 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।

0: दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए राजेश रोशन का संगीत, अमित खन्ना के बोल, आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम स्वामी।

अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म स्वामी का ये गीत सुना। गीतकार थे अमित खन्ना और संगीतकार थे राजेश रोशन।

हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में हम आपको जलीस शेरवानी का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। गाने वाले कलाकार अलका याग्निक, उदित नारायण और साथी ये फिल्म है हेलो ब्रदर।

0: कराने नए पुराने।
1: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। इस समय संध्या के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। 6:05 पर तराने नए पुराने इस कार्यक्रम का शेष भाग प्रसारित होगा।

0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग तथा समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में संयुक्त अरब अमीरात के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की भी शुभकामनाएं दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में आईएनएस कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में आज सेमीकॉन इंडिया में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री वैष्णव ने कहा कि देश भर के एक छात्र अब चिप्स डिजाइन और टेप आउट कर रहे हैं। लगभग 400 इंजीनियरिंग कॉलेजों के पास उद्योग स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन ऑटोमेशन टूल्स उपलब्ध हैं। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की सीमा से अधिक चीनी के भंडारण की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिन की खपत तक ही सीमित रहेगी। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजी नगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि यह संशोधन पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाता है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने का शेष भाग सुनिए। ये स्वर लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम हरजाई, गीतकार निदा फाजली और संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कार्यक्रम का अगला गाना प्रसून जोशी का लिखा हुआ, विशाल खुराना का संगीतबद्ध किया हुआ है। इसे आवाज सुनिधि चौहान ने दी है। फिल्म का नाम है नीरजा।

कुमार सानू की आवाज में अभी अपनी फिल्म आशिकी का ये गीत सुना। गीतकार समीर थे और संगीतकार नदीम श्रवण थे। इससे पहले आप सुन रहे थे चित्रा सिंह की आवाज, फिल्म का नाम अर्थ, इफ्तिखार की ये गजल थी और कुलदीप सिंह का संगीत था।

ये आवाजें लता मंगेशकर और जॉली मुखर्जी की थी। फिल्म का नाम था आईना। गीतकार समीर थे और संगीत दिया था दिलीप सेन, समीर सेन ने। इस गाने के साथ ही आज का तराने नए पुराने ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। झरोखा में हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले सुनिए इस सभा के शेष कार्यक्रम। अब से थोड़ी ही देर बाद में यानी 6:35 पर संध्या रंजन, 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता, फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला संध्या 7:00। संध्या 7:45 पर इंद्रधनुष में सुनिएगा अनमोल यादें, फिल्म पत्रकार राजीव वेजेकर से जयंत पात्रिकर की बातचीत, इसका भाग 11 प्रसारित होगा। प्रस्तुतकर्ता हैं जुबैर खान। रात्रि 8:00 सुनिएगा हवा महल, बीवी ब्यूटी क्वीन, लेखक शरद सिंह और निर्देशक अजीमुद्दीन। चित्रलोक का प्रसारण समय रात्रि 8:15 और रात्रि 9:00 आप सुनते हैं फिल्मी गानों का कार्यक्रम आपके लिए। आज के फनकार ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री शबाना आजमी पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले और प्रसारण समय रात्रि 9:30। रात्रि 10:00 सुनिएगा छाया गीत, आलेख और स्वर अनुराधा उपाध्याय का, प्रस्तुतकर्ता होंगे राघवेंद्र सिंह नेगी।
1: लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्तियां मिल चुकी हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। एनजीटी की ओर से इस सम्मेलन का आयोजन पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर किया जा रहा है। 2 दिन के इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के और जिला अदालतों के जज शामिल होंगे। साथ ही विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें हिस्सा लेंगे। 17 देशों के जज और न्यायिक प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये सम्मेलन सभी प्रतिभागियों को पर्यावरण और जलवायु से जुड़ी मुख्य चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करेगा। नवे राष्ट्रीय पोषण माह के तहत प्रदेश भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी थीम पर 8 अक्टूबर तक मनाए जा रहे पोषण माह को जन आंदोलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान आहार विविधता, प्रोटीन सेवन के साथ ताजा पके गर्म भोजन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। समेकित बाल विकास सेवाएं की उपनिदेशक प्रियंका शर्मा ने बताया कि पोषण माह के तहत रोजाना विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नई नई व्यंजन विधियों के माध्यम से बेहतर पोषण और प्रोटीन सेवन के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
2: तिल है तो तिल के

0: वो कैसे यूज करना है, या बाजरे का भी केक बना सकते हैं, बाजरे के बिस्कुट्स बना सकते हैं. तो डिफरेंट टाइप के जो रेसिपीज हैं, मूंगफली का कैसे भी तरह से यूज कर सकते हैं, है उसको कैसे पाउडर वगैरह बना के जो जो बच्चे का हेल्थ स्टेटस है या उसके एज स्टेटस के हिसाब से उसको दे सकते हैं. इस संदर्भ में हम आम लोगों के बीच में जानकारी पहुंचा रहे हैं ताकि वो हेल्दी खाएं और सेंसिबल खाएं, जिससे उनके जो हेल्थ है और न्यूट्रिशनल पॉइंट्स हैं वो अच्छी तरह से ग्रोथ हो.
1: केंद्र सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है. महीने में 10 टन से अधिक चीनी का उपयोग करने वाली इकाइयों के लिए यह स्टॉक लिमिट बढ़ाई गई है. उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने खुले बाजार से खरीदी जाने वाली चीनी के लिए 15 दिन की स्टॉक लिमिट बरकरार रखी है. सरकार ने यह निर्णय चीनी के प्रमुख उपभोक्ताओं के साथ परामर्श के बाद लिया है. मंत्रालय ने कहा कि खुदरा चीनी की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से लगभग 10% तक गिर गई हैं. मंत्रालय ने व्यापारियों से कटौती का पूरा लाभ आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की अपील की है. वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है. एजेंसी ने कहा कि ये संशोधन पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है. एजेंसी ने आशा व्यक्त की कि भारत सभी अन्य G20 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज रफ्तार से बढ़ना जारी रखेगा. ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं. प्रदेश के 26 नगरीय निकायों के प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं. इसके साथ ही अब महापौर, सभापति और अध्यक्ष पद को लेकर भी तस्वीर साफ होती जा रही है. इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने भरतपुर और भीलवाड़ा नगर निगम अध्यक्ष निर्विरोध बनाने में कामयाबी हासिल की है. भरतपुर में अनुराधा सिंह महापौर बनेंगी, वहीं जसवंत कंवर भीलवाड़ा नगर निगम की मेयर निर्वाचित हुई हैं. उधर धौलपुर नगर परिषद सभापति का चुनाव आज निर्विरोध संपन्न हुआ. गिरीश गर्ग को सभापति घोषित किया गया. वहीं जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगमों और सुकेत नगर पालिका में अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो गए हैं. कल दोपहर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र भरे जा सकेंगे. 21 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 22 सितंबर तक नाम वापसी हो सकेगी. 25 सितंबर को अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा. वहीं उपाध्यक्ष पद का चुनाव 26 सितंबर को होगा. 11वां आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाएगा. इस वर्ष की थीम स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद रखी गई है, जो भारत की समृद्ध आयुर्वेदिक विरासत के साथ भविष्य की बदलती स्वास्थ्य जरूरतों के विजन को दर्शाती है. आयुर्वेद को दुनिया भर में स्वीकार्यता दिलाने और इस क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास भी आयुष मंत्रालय की ओर से व्यापक रूप से किए जा रहे हैं. जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने आकाशवाणी समाचार जयपुर को बताया कि आयुर्वेद दिवस से पहले 100 दिन का काउंटडाउन कार्यक्रम रखा गया, जिसके माध्यम से लोगों को परंपरागत चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद अपनाने के लिए जागरूक किया गया. उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार जीवन शैली अपनाने को कहा.
2: अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो कि हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, और परिवार, समाज, देश को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आयुर्वेद को अपनाना बहुत ही आवश्यक है ताकि हम खुद स्वस्थ रह सकें और बाकियों को भी स्वस्थ रह सकें. तो मेरा आपके माध्यम से यही सभी को संदेश है कि आयुर्वेद के सिद्धांत जो कि शाश्वत हैं, उनका पालन करें. हम अपनी जो दिनचर्या है, यानी लाइफ स्टाइल है, अपना जो फूड हैबिट्स है, डाइटेटिक्स है, उसको हम आयुर्वेद के अनुसार आयुर्वेद सम्मत करेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं और देश को स्वस्थ बना सकते हैं.
1: भीलवाड़ा जिले के बिगोद क्षेत्र में आज एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई. बिगोद थाना प्रभारी जय सुल्तान कविया ने बताया कि दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 758 पर कार और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर से हुई. हादसे में मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति और उनके पुत्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद

कार चालक मौके से फरार हो गया। और अब मौसम। राज्य में नए मौसमी तंत्र के असर से कई हिस्से तरबतर हैं। मौसम विभाग के अनुसार चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, सवाईमाधोपुर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, बीकानेर और राजधानी जयपुर में भी बरसात का दौर चला। पाली जिले के सांडेराव और देसूरी सहित आसपास के इलाकों में आज कुछ देर बारिश हुई। उधर स...

0: बारिश हुई है। तेज बारिश के चलते कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। वहीं जल्लारा क्षेत्र में खोलड़ी और अमरोजा पुल के पास नदी में पानी की आवक भी बढ़ी है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और पुलों को पार करते समय सावधानी बरतने की अपील की है। कमलेश कुमार जड़ोला, आकाशवाणी समाचार, सलुम्बर।
1: विभाग ने आज भी 28 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट बताया है। वहीं कल 25 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, झालावाड़ और जयपुर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं उदयपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। बीकानेर संभाग में भी छुटपुट स्थानों पर बरसात के आसार हैं। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में कल से बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है। मॉनसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। वहीं राज्य के अन्य भागों में 21 सितंबर से मॉनसून की विदाई की संभावना है। इस बीच मॉनसून के अंतिम दौर की बारिश से राज्य के बांधों में जलस्तर में सुधार आया है। जल स्रोत अब तक 60% से अधिक भर चुके हैं। कुल 693 में से 82 बांध लबालब हैं, वहीं 409 आंशिक रूप से भरे हैं। लोक देवता रामदेव भादवा मेले के लिए देश भर से श्रद्धालु रामदेवरा पहुंच रहे हैं। रामदेवरा मार्ग पर पदयात्रियों के जत्थे और ध्वजाएं नजर आ रही हैं। वहीं कई जगह भक्त घोड़े लेकर बाबा के जयकारे लगाते देखे जा सकते हैं। श्रद्धालु जत्थों के वातावरण उत्साहजनक बना हुआ है। वहीं पाली में जसोल माता के अवतरण दिवस पर प्राचीन मंदिर में आकर्षक सजावट की गई है। मंदिर में महाआरती और भक्ति संध्या का भी आयोजन किया गया। उधर सलूम्बर में आज जयसमंद की पाल पर गवरी का मंचन किया गया। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग गवरी देखने पहुंचे। गवरी राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला धार्मिक लोक नाट्य और उत्सव है। इसमें नृत्य, संगीत, अभिनय और कहानी का मेलजोल देखने को मिलता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जयपुर और उदयपुर में भी मेलों का आयोजन। केंद्र सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन की। प्रदेश में 26 नगरीय निकायों के प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित। भरतपुर और भीलवाड़ा नगर निगम में भाजपा के महापौर। और नए मौसमी तंत्र के असर से राज्य के कई हिस्से बारिश से तरबतर। कल 25 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख मैना देवी ने तैयार किया है। जिले में बीते दिनों नगर निकाय चुनाव के परिणाम घोषित हुए। जल प्रबंधन और किसानों से जुड़े कामों के साथ विकसित भारत जन सेवा अभियान की शुरुआत हुई। धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम भी हुए। नगर निकाय चुनाव के तहत जिले के 8 स्थानीय निकायों के 290 वार्डो के परिणाम घोषित हो गए हैं। इनमें निर्दलीय प्रत्याशियों ने 133, कांग्रेस ने 91 और भाजपा ने 64 सीटों पर जीत दर्ज की। माकपा के 2 प्रत्याशी विजयी रहे। अध्यक्ष पद के लिए 15 और 16 सितंबर को नामांकन हुए। 8 निकायों में कुल 29 अभ्यर्थियों ने 41 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। जिले में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक विकसित भारत जन सेवा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान रक्तदान शिविरों के आयोजन होंगे। साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए स्कूलों के विद्यार्थियों को विकसित भारत की संकल्पना से जोड़ा जाएगा। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ टाउन के महात्मा गांधी मेमोरियल जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में आमजन, खासतौर पर युवाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। जिला और खंड स्तर पर 500 से अधिक लोगों ने ऑनलाइन रक्तदान की शपथ भी ली। जल अर्पण कार्यक्रम के तहत जिले के 70 गांवों में जल संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां हुई। हनुमानगढ़ जंक्शन के अग्रसेन भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया। यहां राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। जल शपथ और जल संरक्षण रैली भी हुई। चंडीगढ़ में हुई भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड BBMB की बैठक में इंदिरा गांधी नहर में सितंबर माह के दौरान 3 में से 1 समूह का रेगुलेशन यथावत रखने का निर्णय लिया गया। 20 सितंबर तक बांधों के जलस्तर के आधार पर राज्यों के हिस्से का फिर से निर्धारण किया जाएगा।

0: कृषि विभाग ने उर्वरक की ऑनलाइन बिक्री के लिए डीबीटी पीओएस एप्लीकेशन का नया वर्जन लागू किया है। अब किसानों को फार्मर आईडी के जरिए सब्सिडी वाला उर्वरक मिलेगा। जिले में करीब 1,73,000 किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है। पहले दो चरणों में 1,00,000 से अधिक किसानों ने 15,000 मीट्रिक टन यूरिया की डिजिटल बुकिंग की है। हनुमानगढ़ में मिलेट्स यानी श्री अन्न पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें बाजरा, ज्वार, रागी, सावा, कोदो और कुटकी जैसे अनाजों को आहार में शामिल करने की जानकारी दी गई। किसानों को मिलेट्स की खेती, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के बारे में बताया गया। जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। हनुमानगढ़ टाउन के एमएमपीजी कॉलेज मैदान में जिला स्तरीय समारोह हुआ। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। समारोह में वीरांगनाओं और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया गया। हनुमानगढ़ टाउन के सुखा सिंह महताब सिंह गुरुद्वारे में सालाना जोड़ मेला आयोजित हुआ। श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका। वहीं गोगा मेड़ी में नवमी के अवसर पर मुख्य मेले में राजस्थान सहित पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और अन्य राज्यों से काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने गोगा पीर के दर्शन किए। मेला क्षेत्र में पीने के पानी, चिकित्सा और विश्राम की व्यवस्थाएं की गई। गणेश चतुर्थी पर जिले के गणेश मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम हुए। घरों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई। वहीं तीज पर महिलाओं ने तीज माता की पूजा की और झूलों का आनंद लिया। जन्माष्टमी पर कृष्ण मंदिरों में सजावट, भजन कीर्तन और झांकियों के कार्यक्रम हुए। जिले में 77वां वन महोत्सव मनाया गया। कोहला वनखंड की लवकुश वाटिका में पौधरोपण किया गया। मां यशोदा के नाम अभियान के तहत 501 पौधे लगाए गए। पौधों का जियो टैग कर हरियालो ऐप और मेरी लाइफ पोर्टल पर अपलोड किया गया। वहीं शिक्षक दिवस पर शिक्षण संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रम हुए। कई जगह शिक्षकों के सम्मान में विशेष कार्यक्रम रखे गए। इसके साथ ही हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लागनवाला 20वां रोजगार मेला में 51,000 बत्ता नौजवानों ने नौकरी लागन रा कागजात वर्चुअल तरीका सौंपेला। जयपुर और उदयपुर में ये कार्यक्रम। केंद्र सरकार थोक ग्राहकों सारू शक्कर भेड़ीकरण री मियाद 15 दिनों बधार 30 दिन की नी। प्रदेश में 26 नगरी निकायों में प्रमुख निर्विरोध चुनी चिया। भरतपुर और भीलवाड़ा नगर निगम में भाजपा रा महापौर। और नुआ मौसमी तंत्र रा असरों राज्य रा कई हल्का में चोखी बिखा। काल 25 जिला में बरसात रो येलो अलर्ट। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल रखा जावन वाला 20वां रोजगार मेला में 51,000 बत्ता नौजवानों ने न्यारा न्यारा सरकारी महकमा और संगठन में नौकरी लागन रा कागजात वर्चुअल तरीका सौंपेला। आमाय राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और रक्षा मंत्रालय शामिल है। इस मौके मारो कार्यक्रम में मौजूद जनता ने संबोधित करने रो कार्यक्रम है। देश भर में 45 थोड़ा रोजगार मेला लगाया जावेला। प्रदेश में जयपुर और उदयपुर में रोजगार मेला लगेला। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जयपुर रा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लगाया जावन वाला रोजगार मेला में 51 नौजवानों ने नियुक्ति पत्र सौंपेला। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उदयपुर में नौजवानों ने नौकरी लागन रा कागजात देवेला। हाल ताई भया 19 रोजगार मेला रे जरिए 12,00,000 बत्ता मुटियारा ने न्यारा न्यारा सरकारी महकमा और संगठन में नौकरियां दे दी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल में दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन रो उद्घाटन करन रो कार्यक्रम है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एन

0: टीरियों रख्या जावन वाला इन सम्मेलन में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य मुद्दा मत विचार करो जावेला। दो दिन रा इन सम्मेलन में पर्यावरण रा जानकार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रा जज शामिल फैला। इस आगे न्यारा न्यारा मंत्रालय रा सचिव और आला अहलकार इनमें शिरकत करेला। 17 देश रा जज और न्यायिक प्रतिनिधि इन कार्यक्रम में शामिल फैला। नवा राष्ट्रीय पोषण माह तहत प्रदेश में न्यारा न्यारा कार्यक्रम रखा जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी मुद्दा मत है 8 अक्टूबर तक मनाया जा रहा पोषण माह दौरान खान पीन री विविधता प्रोटीन सेवन सागे ताजा पकौड़ा गर्म भोजन रा महत्व रे बारे में जाग जगाई जा रही है। समेकित बाल विकास सेवाओं के उपनिदेशक प्रियंका शर्मा बतायो कि पोषण माह तहत रोजीना न्यारा न्यारा मुद्दा माथे कार्यक्रम राखर लोगों ने व्यंजन बनावन रा नवा नवा तरीका रे जरिए खान पीन माए बेहतर पोषण और प्रोटीन काम लेवन सारू सीख दी जा रही है।
1: तिल है तो तिल के लड्डू को कैसे यूज करना है, या बाजरे का भी केक बना सकते हैं, बाजरे के बिस्कुट्स बना सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो रेसिपीज हैं, मूंगफली का कैसे भी तरह से यूज कर सकते हैं, है उसको कैसे पाउडर वगैरह बना के जो बच्चे का हेल्थ स्टेटस है या उसके एज स्टेटस के हिसाब से उसको दे सकते हैं। इस संदर्भ में हम आम लोगों के बीच में जानकारी पहुंचा रहे हैं ताकि वो हेल्दी खाएं और सेंसिबल खाएं, जिससे उनके जो हेल्थ है और न्यूट्रिशनल
0: पॉइंट्स है वो अच्छी तरह से ग्रोथ हो। केंद्र सरकार थोक ग्राहक शक्कर भिड़ीकरण री मियाद 15 दिनों बधार 30 दिन करती नी है। महीना में 10 टन 32 शक्कर काम लेवन वाला कारखाना सारू आ स्टॉक लिमिट बधाई ची है। उपभोक्ता मामलात खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खुला बाजार में खरीदी वाली शक्कर सारू 15 दिन री स्टॉक सीमा बरकरार रखी है। मंत्रालय के मुजब खुदरा बाजार में शक्कर रो मोल करीब 10% उतर क्यो है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज चालू माली साल सारू भारत री वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर अनुमान ने 6 बधार 7% करती नो है। एजेंसी रे मुजब वो पश्चिम एशिया में लड़ाई के कारण उपजा हालात बीच भारत री माली व्यवस्था री मजबूती ने बतावे है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश रा 26 नगरीय निकायों में मुखिया निर्विरोध चुनी चिया है। इन बीच भारतीय जनता पार्टी भरतपुर और भीलवाड़ा नगर निगम माए महापौर निर्विरोध बनावन माए कामयाबी हासिल की है। भरतपुर माए अनुराधा सिंह जबकि भीलवाड़ा माए जसवंत कंवर नगर निगम ने महापौर चुनी ची है। दूजिकानी धौलपुर नगर परिषद माए गिरीश गर्ग रे निर्विरोध सभापति बनवा रो ऐलान करी चियो है। इस बीच जयपुर जोधपुर और कोटा नगर निगम रा महापौर और सुकेत नगर पालिका रा अध्यक्ष रा चुनाव सारू आज पर्चा दाखिल करन रो काम शुरू भयो। नाम पाना काल दोपहर 3 बजे तक दाखिल करया जा सकेला। 21 सितंबर में पर्चा री जांच करी जावेला और 22 सितंबर तक नाम पाछा लिया जा सकेला। 25 सितंबर ने अध्यक्ष जबकि 26 सितंबर ने उपाध्यक्ष ओहदारा चुनाव सारू वोट पड़ेला। 11वां आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर ने मनायो जावेला। इनरो इन साल रो मुद्दो स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद राखी चियो है। आयुर्वेद ने दुनिया भर में इलाज रो तरीको मनावण और ई हल्का माय अनुसंधान और नवाचार न बढ़ावो देवन री कोशिश आयुष मंत्रालय री ओर करी जा रही है। जयपुर माय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान रा कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा बतायो कि आयुर्वेद दिवस 100 दिन पहले रो काउंटडाउन कार्यक्रम राखी जो जिनमाय लोगों ने इलाज रा परंपरागत तरीका आयुर्वेद ने अपनावन री जानकारी दी रही जी।
2: अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं जो कि हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी भी है, और परिवार समाज देश को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आयुर्वेद को अपनाना बहुत ही आवश्यक है ताकि हम खुद स्वस्थ रह सकें और बाकी को भी स्वस्थ रह सकें। तो मेरा आपके माध्यम से यही सभी को संदेश है कि आयुर्वेद के सिद्धांत जो कि शाश्वत हैं उनका पालन करें। हम अपनी जो दिनचर्या है यानी लाइफस्टाइल है, अपना जो

0: फूड हैबिट्स हैं, डाइटेटिक्स है, उसको हम आयुर्वेद के अनुसार आयुर्वेद सम्मत करेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं और देश को स्वस्थ बना सकते हैं।
1: भीलवाड़ा जिला रा बिगोद हल्का में नेशनल हाईवे नंबर 758 में एक मोटरसाइकिल रे कार रिफेट में आ जावनो मोटरसाइकिल सवार एक जोड़ा और मारा बेटा री मौत वेकी। बिगोद रे थाना प्रभारी जय सुल्तान कविया बतायो के हादसा पाछे कार चलावन वालो मौका फरार फेंक्यो, जिन्ना पुलिस हेर रही है। अरब मौसम राज्य में बना नवा मौसमी तंत्र रा असरों चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, सवाईमाधोपुर, नाकौर, अजमेर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, बीकानेर और राजधानी जयपुर में बरसात हुई है। पाली जिला रा सांडेराव और देसुरी समेत आरएसआर रा हल्का में आज थोड़ी देर ताई जोरदार में बरसियो। माना सलूंबर खबर नवीस बतायो के काल मोड़ी रात गरज और जोरदार बायरा सागे सरोवी बिरखा आज रुक रुक कर चलती रही।
2: गुरुवार देर रात से शुरू हुआ बारिश का दौर शुक्रवार को भी दिन भर जारी रहा। जिले में सबसे ज्यादा बारिश सरड़ा में दर्ज की गई, जबकि सेमबारी, जल्लारा, लसाड़िया और सलूंबर क्षेत्र में भी अच्छी बारिश हुई है। तेज बारिश के चलते कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। वहीं जल्लारा क्षेत्र में खुलड़ी और अमरोजा पुल के पास नदी में पानी की आवक भी बढ़ी है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और पुलों को पार करते समय सावधानी बरतने की अपील की है। कमलेश कुमार जड़ोला, आकाशवाणी समाचार, सलूंबर।
1: मौसम महकमो आज प्रदेश रा 28 जिला में बरसात रो येलो अलर्ट जारी कीनो है, जबकि काल अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, झालावाड़ और जयपुर समेत 25 जिला में चोखी बिरखा रा आसार है। उदयपुर और कोटा संभाग में कठे कठे भारी बारिश री संभावना है। बीकानेर संभाग में कठे कठे बरसात रा आसार है। ये बीच राज्य रा आतुनी हल्का माए काल बिरखा माए कमी फेवन रही शंका है, जबकि राज्य रा दूजा हिस्सा माए 21 सितंबर नु चौमासारी बिरखा बंद फेवन रही संभावना है। इस साल चौमासारा आखिरी दौर माए फिर बिरखा राज्य रा बंधा माए पानी रो लेवल थोड़ो ऊंचो आयो है। कूड़ा बावड़ी, तालाब और बंधा हाल ताई 60% बत्ता भर गया है। राज्य रा 693 मायो 82 बंधा पूरा, जबकि 409 थोड़ा घना भरिया है। लोक देवता बाबा रामदेव रा भादवा मेला माए शामिल हुए वंसारू आखा देश में मोटी तादाद माए जात्रु रामदेव रा पूग रिया है। रामदेव रा गेला माथे पैदल जात्रुआ रा जत्था और ध्वजा नजर आ रही है। दुजिकानी सलूंबर माए आज जय समुद्री पाल माथे गवरी स्वांग खेली जियो, जिन्हें देखन सारू बारिश रे बावजूद मोटी तादाद माए लोग पुग्या। इन माए नाच गान, अभिनय और कहानी रो मेल जोल निजरावे है। गवरी मेवाड़ हल्का रो मोटो धार्मिक लोक नाट्य और उत्सव है। हर साल राखी रा त्योहार पाछे 40 दिन ताई उदयपुर, राजसमंद और सलूंबर जिला समेत न्यारा न्यारा हल्का माए गवरी रा आयोजन रख्या जावे है। इन माए कलाकार ढोल मंडल री थाप माथे धार्मिक और पौराणिक प्रसंग सुनावे है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 27 सितंबर दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित कर्या जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात में विचार बतावेला। आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 मथे 25 सितंबर ताई राय दे सको हो। नरेन्द्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ये विचार भेजा जा सके है। आखिर माय खास समाचार एक फेर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काल लागन वाला 20वां रोजगार मेला में 51,000 बत्ता नौजवाना ने नौकरी लागन रा कागजात सौंपेला। जयपुर और उदयपुर में आई कार्यक्रम। केंद्र सरकार थोक ग्राहक का सारू शक्कर घड़ीकरण री मियाद 15 दिनों बढ़ा 30 दिन की नी। प्रदेश में 26 नगरीय निकाय में प्रमुख निर्विरोध चुनी चिया। भरतपुर

0: दुधीवाड़ा नगर निगम में भाजपा रा महापौर और नुआ मौसमी तंत्र रा असर राज्य रा कई हलका में चोखी बिरखा काल 25 जिला में बरसात रो येलो अलर्ट ईसा की प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़।
2: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से राजस्थानी प्रादेशिक समाचार एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस समय शाम के 7 बजे ही प्रस्तुत है चौपाल कार्यक्रम।
3: भारत की कृषि हमारी अर्थव्यवस्था

चौपाल कार्यक्रम हमारा सब भाइयों ने छोरा दियो वाईजी भाई ने राम राम किसान भाइयों देखो सोरो पूरे पर्यटक को ने सोरा ऊपर से चाबी भाई आज बेगा चाहिए सब का चेहरा खिला थका आज लगी जा थका है मेनो विशेष कारण आप सब जान ही रहो कि आज जो बारिश थी है इन्हें थी कि किसान भाई एकदम खुश खुश नजर आ जाए क्योंकि जायज भी है तो ने पानी की जरूरत भी थी किसान भाई आना पानी थे कि खूब खुश थे गया ने देखो फसल भी अपनी एकदम खुश थे गई लगे है अंतिम समय में आटलू पानी जरूरी भी है तो किसान भाई हर क्षेत्र में पानी पड़ो होगा ये आप अनुमान कर सका मैं आ पानी अपनी फसल बल्ले घी प्रतिम काम करेगा किसान भैया देखो पानी तो जरूरत थी खरी इंद्र देवता भगवान केम आना फिर आवा नाराज नाराज होता है क्या खबर पड़ी नहीं है फिर भी अपने किसान भाई ने कहा कि देखो खेती में जो काम करी रहा एना में अवरे विशेष करी में अपनी जो आना क्षेत्र में सोयाबीन करी हुए मक्का करी मिल रखी है किसान भाई इन्हें निगरानी में लाजा थका है फिर भी आगे सोरा ऊपर आप बात करी रहा किसान भाइयों के जे आ दलहनी फसलें अपने करी मिली हैं दलहनी खरीफ फसलों में अवरे भी अपने खरपतवार ने कीट नियंत्रण नो काम जो है ये किसान भाइयों देखो आम तो खरीफ फसल में जे जे भी उगाई जावा वाली दलहनी फसलें जिनके मूंग है उड़द है अरहर है आने प्रभावी खरपतवार नियंत्रण हरु निराई गुराई ने रासायनिक उपायों में समय पर उपयोग करव जरूरी है खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण का मुख्य उपाय जिनके यांत्रिक नियंत्रण भी आप कर सकें क्योंकि किसान भाई आ शुरुआती दौर में फसल हारू बेहद संवेदनशील थाए हैं એટલે આ દોરાન ખેતર મે ખરપતવાર થકી આપણે ફસલ રહે ખેતર રહે એ મુક્ત રાખવું જરૂરી છે ફસલ ઉગવા બાદ ભી કિસાન ભાઈઓ નિરાઈ ગુડાઈ કરતા થકા રહેવું જોઈએ જરૂરત પડે તો બાદ મે ભી આપણે ભાઈઓને બાર બાર ખરપતવાર નિયંત્રણ કરતું થકું રહેવું જરૂરી છે આતો થઈ ગઈ યાંત્રિક નિયંત્રણ ને આને હાથે હાથે કિસાન ભાઈઓ रासायनिक नियंत्रण भी अपने किसान भाई करी सके किसान भाई देखो रासायनिक नियंत्रण यदि मजदूरों की कमी हो तो बस अनुशंसित खरपतवार नाशक जिनके पेंडा मेथिलीन आने सही मात्रा में सही हिसाब से की प्रति एकड़ ना हिसाब से की अपने नमी युक्त खेतर में छिड़काव समय पर करवा दिए किसान भाई खड़ी फसल में खरपतवारों में कुछ अलग प्रकार भी रहे हैं जिनके कुछ खरपतवार चोरी में संकीर्ण पत्ती वाला खरपतवार रहे हैं आधार पर कृषि विशेषज्ञ ने सलाह थकी

दवानों प्रयोग करवा जुए। किसान भाई प्राचीन काल थकी आप बात करा तो भारत में उगाई जितनी भी जवाबारी फसलें हैं इनमें दलहनी फसलों अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आ फसले आमतौर पर प्रोटीन ना मुख्य स्रोत माने हैं। किसान भाइयों आप सब भी जानी जाओ कि हर प्रकार ना भोजन में दालें जो सम्मिलित थाए हैं, दाल थकी संपूर्ण भोजन पूर्ण केवा है, वना दाल थकी आपने भोजन पूर्ण नहीं केवा तो पेट भी नहीं भरा। तो दाल वाली जो फसलें हैं ये आपने प्रोटीन ना मुख्य स्रोत माने हैं। दलहनी फसलों ना अंतर्गत मुख्य रूप थकी अरहर मूंग उड़द आनी खेती थकी किसान भाई काम करे हैं ने आई खेती थकी किसान भाई अपनी आमदनी भी सुधर करी जा थका है। किसान भाई जिनके अरहर की फसल में विशेष प्रकार ना कीट जिनके अपने कही छे करके फली बेदक मक्खी है फली बग है आवा तरह ना कीट हारू ये नियंत्रण हारू मोनोक्रोटोफास या पसे डाइमिथ्रोएट जो दवाई है इन छिड़काव थकी किसान भाई अपनी फसल बसावी शके कीट नो नियंत्रण भी अपने बसावी शके। किसान भाई आने अलावा बिस्टर बीटल पीला मोजेक रस चूसवा वाला कीट जे हैं जिनके सफेद मक्की चेपा तेला आवा कीट थकी नुकसान थवा वाला अपने जे ऑक्सीडेमेटोन मिथाइल 250 मिलीग्राम या पसे मेलाथियन 375 मिली प्रति एकर ना हिसाब थकी किसान भाइयों ने छिड़काव करवे हुए। किसान भाइयों आना तरह थकी आपने छिड़काव करूंगा तो अपनी फसल जो है एक आखरी फसल में खरपतवार नियंत्रण ने कीट नियंत्रण थकी अपनी फसल जो है ये पूर्ण रूप थकी आपने बसावी शकल। क्योंकि किसान भाई देखो हमेशा अपने किसान भाई जो है ये महंगा ना बीज लावे है महंगा नी मेहनत करे है तो मेहनत नो किसान भाई ने के नो के अपने पैदावार अच्छी था उपज अच्छी थी ने इन्हें आमदनी जो है किसान भाई ने पूरे पूरी मलबीज हुए। किसान भाई देखो आता थी गई अपने बात खरीफ फसल में दलहनी फसल में खरपतवार नियंत्रण बल्ले कीट नियंत्रण की बात करी है। किसान भाइयों अबे आप सौरभ पूरो भरियो तो कोई नहीं पहले बढ़िया सु भजन हमरा ने पछे बीजी बात करा।

0: भारत की कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत और करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। इस कृषि यात्रा में हमारी महिला किसान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खेत से लेकर खाद्य सुरक्षा तक उनके योगदान को नमन। वर्ष 2026 मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। इसी अवसर पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC लेकर आया है कृषि सखी अभियान, महिला किसानों के सम्मान, जागरूकता और सशक्तिकरण की एक पहल। क्योंकि खेती आपकी मेहनत है, आपके सपनों की फसल है और इसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक जोखिमों से फसल को सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आइए महिला किसानों के योगदान को सम्मान दे, हर किसान को जागरूक बनाएं और सुरक्षित कृषि की ओर आगे बढ़ें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महिला किसान सशक्त तो भारत समृद्ध।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: किसान भाई देखो भजन सांभू अपने ने हम रेडियो ऊपर अपने रोज अलग अलग कया कया भाई ने लावी ने बात इन्होंने अनुभव जो है ये अपने भाई ने साझा करा ने सोरा ने माध्यम थी इन्होंने बात जो है बताड़ा। तो किसान भाई आज भी मारे एक भाई थी की बात थी थी ने इन्हें फसल ना दौरान अपने जो मल्चिंग विधि करा हा फसल खड़ी फसल में पौधों जड़ों में अपने जो मिट्टी सड़प्बा काम करा हा

0: एक मल्चिंग मीडिया बारे में थोड़ी सी जानकारी आली है तो आप सब बोलने बात सांभ पे बीजी अगर बात करें अपने
1: कार्बन पदार्थ बढ़ा सकता है।
2: अच्छा, देखो मिट्टी
1: हितेश भाई आपने किसान से है कि मल्चिंग विधि आप जिम कही

अभी चौपाल कार्यक्रम प्रसारित किया गया। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आइए सुनते आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: खेतीबाड़ी सुनबोड़ा सब काश्तकार भाई लगन है महेश भाई को राम राम और मनसुनी जी आपने भी राम राम
1: खूब खूब ओजू राम राम महेश भाई सा और आपने खेतीबाड़ी कार्यक्रम री बाट उड़ीकता सगड़ा काश्तकार भाया ने और डाणिया में चूल्हा पर काम करती सगड़ी बहनावा ने बड़ा बुढ़ा ने ढो करज और राम राम सा।
0: देखो आपनो कार्यक्रम है खेतीबाड़ी और अपना जो का किसान भाई ही बाकी तो देखो जो मुख्य काम है रोजगार को वो यही है कि खेती किसानी को काम है और किसान भाई ने देखो रात दिन खेत कमाए मेहनत करनी हुए और कोई भी फसल है भी कमाए सुबह से लेके शाम तक कई प्रकार का काम रहे तो किसान जो भी फसल उगावे साल में दो फसल उगावे ठीक है या फिर एक उगावे तो भाई जब फसल तैयार हो जाए भी टाइम फिर बिने बेच के करके दो पैसा आवे पर किसान की जो आमदनी है बार लगातार बनी रहे इसके लिए जरूरी है कि भी खेती के साथ साथ में पशुपालन में भी बतौर महत्व दिया जाए।
1: खेती के साथ साथ पशुपालन आर्थिक लाभ रो मजबूत जरियो बन सके है भाई साहब। भारत में कृषि और पशुपालन एक दूसरा का पूरक व्यवसाय है। विशेष रूप से छोटा और सीमांत किसानों के लिए केवल खेती पर ही निर्भर रहबा की बजाय अगर वे फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करेला तो बीस बाकी परिवार की आय भी बढ़ेगी और रोजगार उपलब्ध कराबा रहा आर्थिक जोखिम ने कम करबा रहा यो प्रभावी माध्यम बन सके है सा।
0: देखो किसान भाई जब फसल उगावे तो भी फसल की बढ़वार के लिए जो की जरूरत पड़ेगी भी जो खाद पर निर्भरता है तो रासायनिक खाद को ज्यादा उपयोग करवा से तो देखो जो खेत को स्वास्थ्य है मिट्टी को स्वास्थ्य है वो प्रभावित हो है और किसान की लागत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इस प्रकार से क्या कि जो जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट है भी को उपयोग किसान भाई करे तो मिट्टी को स्वास्थ्य भी चौक हो रहा है फसल भी चौकी मिले तो जो पशु ही जो कि अपना किसान भाई भी गाय भैंस रखे तो पशुओं से जो गोबर हुआ है बीसू खाद बने और पशुओं ने यो फायदा है कि भाई देखो पशु ने एक हरे चारो चावे और भी के साथ में खली भी चावे तो जो किसान भाई जब फसल उगावे तो भी वह फसल से चारा की एक तो प्राप्ति होवे और जो पशुओं से जो गोबर मिल रहे हैं भी एक खाद मिल जाए तो दोनों ही चीजों ने एक दूसरे को फायदा है।
1: और इसके साथ साथ ही अपना जो काश्तकार भाई है वह दूध से दही घी पनीर छाछ आदि मूल्यवर्धित उत्पाद बनार भी आपनों जो आर्थिक आय है आमदनी है भी मत चोखो मुनाफो कमा सके है सा।
0: बिल्कुल दूध देखो दोनों टाइम निकाले जाए यार आजकल तो देखो गांव कमाए भी देखो गाड़ी आवाने लागी क्योंकि भी दूध ने बेचबा की भी समस्या को नहीं क्योंकि हर घर में देखो दूध की खपत है गाड़ी आवे है हर घर के कने और बैठे वो संग्रह करके दूध ने ले जाए है क्योंकि शहरा कमाए तो अत्र चाय की दुकान मिठाई की दुकान भी दूध की जो है रात दिन खपत है फिर आप बताया कि भी जो डेयरी व्यवसाय है वो भी कमाए में पनीर माओ छाछ कई प्रकार का उत्पाद ही जगह दूध से बने।
1: और देखो कई आपने काश्तकार भाइयों के साथ समस्या कही है भाई साहब कि वह बड़ो डानू डोर न रख सके क्योंकि वाकन कही है कि भाई जगह कम हुए तो ऐसा अपना काश्तकार भाई बहन कही कर सके हैं कि कम भूमि वाला काश्तकार भाई बकरी भेड़ ऐसा छोटा डाना डोर भी पाड़ अपनी आय ने बढ़ा सके है। बकरिया री जो मांग है वीरे दूध री जो मांग है वह कई औषधीय गुणा के साथ वी को दूध आवे है तो वी की मांग भी आज के अपने ही आधुनिक बाजार में दिन प्रतिदिन आपा बढ़ती देख रहे हैं सा।
0: बिल्कुल बकरी आप सही बताया कि भी कोई किसान भाई का अगर चारे की समस्या है ज्यादा अभी गाय भैंस वो खरीद कौन सके राख कौन सके तो बकरी जो है कम खर्च कमाए जो को पल जाए है और भेड़ बकरी राख के एक रेवड़ के रूप में भेड़ बकरी पालन करे जाए है तो चूंकि आमदनी प्राप्त हो सके और बकरी का आप बताया कि भी दूध की औषधीय गुण ही मांग है तो पशुपालन जो है एक आर्थिक लाभ को जरिए है और खेती और पशुपालन भी एक सिक्के का दो पहलू ही।
1: तो चला अब आपने कार्यक्रम रो दूसरो छोर नेड़े आगो है कि आपने कार्यक्रम से जुड़ बड़ा सगला काश्तकार भाइयों बहनों ने सुनावा एक चोखो सा लोकगीत
0: सुनाओ सर।

0: हिवड़े रोहार सीमा मिश्रा और साथिया की आवाज में बहुत ही चौकोर लोकगीत आप सुनाया अभी। तो लोकगीत के बाद अब जानकारी की अगर बात करा तो पशुओं का माय प्रजनन संबंधी समस्या और समाधान ये विषय पर जानकारी अपने देसी डॉक्टर राम अवतार शर्मा।
1: तो चाला और अनमिल लेवा या जानकारी।
2: करसा भाया राम राम सा। करसा भाया आज आपने बीच में पधारिया है डॉक्टर राम अवतार जी शर्मा। आप प्रोफेसर है पशुधन उत्पादन और प्रबंधन का। आप प्रसार शिक्षा निदेशालय श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबरी रू पधारिया है और आज आप बात कर पशुओं में प्रजनन संबंधी समस्या और समाधान के बारे में। तो डॉक्टर साहब माका स्टूडियो में आपको स्वागत है सर। राम राम सा।
3: राम राम सा जी।
2: तो सौ पहली में डॉक्टर साहब आपने वही पूछना चाहूँ कि जो दुधारू पशु हुए हैं जो अपना कासगार ढंडा सांसर रखे गाय भैंसा तो आमे जो प्रजनन संबंधी जो समस्या वहाँ हुए है वह खास कौन कौन सी हुआ करे।
3: किसान भाइयों अपने पशुओं में जैसे गाय और भैंस मेन दुधारू पशु अपने किसान भाई गाय और भैंस को जो है ना पालते हैं।
2: हाँ सर।
3: इसमें पशुओं में उत्पादन की जो कमी का जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि पशुओं की प्रजनन संबंधी विकार। जब पशु समय पर जो है ना गर्भित नहीं होता है तो पूरे ब्यांत पर उसको जो है ना दूध उत्पादन नहीं मिल पाता है तो जबकि उसका खर्चा बराबर लगता रहता है।
2: हाँ।
3: तो पशुओं में जो प्रजनन संबंधी समस्या है दुधारू पशुओं में उत्पादन की कमी का एक सबसे बड़ा कारण है। जैसे गाय और भैंस सामान्यता प्रतिवर्ष एक बच्चा देती है।
2: हाँ।
3: अपने कहावत है कि जो वर्ष 52 गाय भैंस होती है वो लाभदायक होती है परंतु क्या है कि हमारे किसान भाइयों की उचित देखभाल नहीं कर पाते हैं या उसका उचित प्रबंधन नहीं होने के कारण बहुत सारे पशु प्रतिवर्ष गर्भित नहीं हो पाते जबकि किसान भाइयों का उसमें खर्चा बराबर लगा रहता है और इस तरह से उनको नुकसान उठाना पड़ता है।
2: हाँ सर।
3: इसमें कई तरह की जो प्रजनन संबंधी समस्याएं आती हैं उसमें जैसे पशुओं का गर्मी में नहीं आना पशुओं का बार बार फिरना जिसको रिपीट ब्रीडिंग भी कहते हैं।
2: हाँ सर।
3: और तीसरी तरह की बात होती है कि पशुओं में कई बच्चेदानी जो होती है उसमें गांठखा होना पशुओं की बच्चेदानी में संक्रमण होना कई तरह की इस तरह की समस्या आती है जिससे कि पशु जो है ना साल भर में एक बार नहीं ब्याह पाता जिससे कि हमारे किसान भाइयों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है।
2: बिल्कुल सही आप सही फरमाया। तो सांसर है वो टेम सारू ताव में को नहीं आवे जी वजह आ दिक्कत आवे तो इका काई कारण वह इनकी अनटेक कर सके।
3: किसान भाइयों मेन जो किसान भाइयों के पशुओं की जो बात होती है जो मैं अपना भी गर्भित की बात कर रहे हैं कि समय पर गर्भित होना चाहिए परंतु कई बार पशु ताव में नहीं आता है। पशुओं में एक नियमित अंतराल में गर्मी में आना सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि हमारे गाय भैंसों में एक गर्मी के मध्य चक्र का एक साइकिल होता है 21 दिन में आता है एक दो दिन आगे पीछे हो जाता है। यदि ये एक नियमित अंतराल है कई पशुओं में नियमित अंतराल में कई एक कारण होते हैं जिनके कारण कि वो गर्मी में नहीं आता है जिससे कि वो वर्ष 52 नहीं रह पाता है।
2: हाँ।
3: जैसे जन्म के समय पर कई जननों में विकृति आ जाती है जो कि आनुवंशिक कारण भी हो सकता है कई बच्चेदानी की ग्रंथियों का अविकसित होना होता है। तो इस तरह के विकार में क्या करें कि पशु चिकित्सक से संपर्क कर किसान भाई उसको जाने की क्या कमी है क्योंकि पशु चिकित्सक से जांच करने पर इस तरह की बातों का पता लग सकता है। साथ ही कई बार पशुओं में एक जो सबसे बड़ी कमी जो किसान भाइयों से होती है कि संतुलित पशु आहार नहीं दे पाते हैं। संतुलित पशु आहार नहीं देने के कारण भी उनमें विटामिन और खनिज लवणों की कमी के कारण भी पशु जो है ना गर्मी में नहीं आ पाता है। कई बार पशुओं में प्रजनन संबंधी जो हार्मोन्स है उनका स्रावित नहीं हो पाते उनकी मात्रा या उनका स्तर पशु के शरीर में एक प्रॉपर नहीं रह पाता है जिससे कि वो गर्मी में नहीं आते।
2: अच्छा।
3: तो इन कई तरह के कारणों से पशुओं की जो है ना ताव में आने की एक समस्या होती है। इनके प्रबंधन में यही है कि पशुपालन भाई अपने पशुओं को नियमित रूप से जो है ना संतुलित पशु आहार खिलावे। संतुलित पशु आहार का यही तात्पर्य है कि उस आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में

0: उपलब्ध होने चाहिए हर जीव को जीने के लिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा, खनिज लवण और विटामिन, इनकी पशु की आवश्यकता अनुसार उनका समावेश पशु आहार में होना चाहिए उचित मात्रा में।
1: बिल्कुल सर।
0: मुख्य रूप से प्रजनन के लिए, ताल में आने के लिए जरूरी है कि पशुओं के आहार में उचित मात्रा में खनिज लवण मिश्रण और विटामिन का समावेश करें।
1: अच्छा।
0: क्योंकि कई तरह के जो पोषक तत्व हैं, पशु हमारा दूध देता है, तो वो दूध के में भी ये तरह के पोषक तत्व हैं जो पशु के शरीर के बाहर आते हैं। बाहर से यदि उनकी सप्लाई नहीं करेगा हमारा किसान भाई, आहार के माध्यम से कर सकते हैं, तो इस तरह की समस्या पशु के ताव में नहीं आने की होती है। कई बार क्या होता है, पशु ताव में तो आता है पर किसान भाई को पता नहीं लग पाता है, जिसको हम कहते हैं साइलेंट हीट।
1: अच्छा।
0: हीट में तो है पर पशु का जो है ना वो लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। इस तरह की समस्या भी कई पशुओं में होती है। उसके लिए पशु को एक सांड के साथ में छोड़े, जिसको हमारे टीजर बुल कहते हैं, जिससे कि उसका हीट डिटेक्शन यानी गर्मी का पता लगाया जा सके और समय पर पशु को गर्भित कर सके।
1: अब बात आवे डॉक्टर साहब की जो ठंडा है बार बार फिर जावे, देखो कई कारण होंगे।
0: हाँ, कई बार क्या होता है कि ऐसी अवस्था में पशु बार बार गर्मी में तो आते हैं पर गर्भित नहीं हो पाते। जैसे मैंने अभी आपको बताया किसान भाइयों कि ये एक पूरा जो है ना मध्य चक्र 21 दिन का है, पशु तो 21 दिन में अपने गर्मी में आ रहा है पर गर्भधारण नहीं कर पाता है। इसमें कई तरह की जो है ना अंडाणुओं का उत्सर्जित नहीं होना या उत्सर्जित होने में देरी होना, जिससे कि उनमें निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है।
1: अच्छा।
0: पशु गर्भित नहीं हो पाता है, तो इसमें कई तरह की जो है ना कारण है, जिसमें सबसे बड़ा कारण है कि मादा पशुओं में क्या है, प्रजनन संबंधी हार्मोन्स की कमी होती है।
1: अच्छा।
0: इन हार्मोन्स की जब पशु शरीर में कमी होती है तो वो जो है ना गर्भधारण नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है कि पशुओं में जो सीमन होता है उसमें भी कई खराबी होती है।
1: अच्छा।
0: सामान्य रूप से मानते हैं कि हम सामान्य जो है ना स्पर्म की जो संख्या है 70% हो, यानी कि खराब गुणवत्ता का नहीं हो, संतुलित आहार की कमी होना। अभी मैंने आपको किसान भाइयों निवेदन किया कि पशुओं को उनकी आवश्यकता अनुसार सारे पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मिलने चाहिए। किसी भी तत्व की कमी होती है तो पशु का जो है ना जो गर्भित होने के लिए या जो पशु के गर्भधारण के लिए जिन हार्मोन्स की आवश्यकता है उनका स्राव भी इससे जो है ना प्रभावित होता है। साथ ही बच्चेदानी में संक्रमण होने के कारण भी पशु जो है ना बार बार फिरने की समस्या होती है। तो इस तरह की कई समस्याएं हैं जिनसे कि पशु बार बार गर्भित नहीं हो पाता और घर नहीं पाता।
1: हाँ सर, डॉक्टर साहब आप इसका कारण तो बता दिया कि भाई जो ढंडो है बार बार फिर जावे, पर अन्य प्रबंधना को क्या कराना, रोक क्या सके या पहचाने क्या।
0: इस तरह की समस्या होने पर पशुपालक भाई सबसे बड़ी बात तो यह है कि गर्मी में आने के 10 से 15 घंटे बाद ही गर्भ धारण करवाएं। कई बार हमारे किसान भाई क्या करते हैं, जैसे पशु हीट में आया, गर्मी आते ही ताव में आते ही वो जो है ना उसको गर्भित करवा देता है। उस समय जब अंडाणु नहीं निकलेंगे तो वो जो है ना गर्भित नहीं हो पाएगा। तो एक साधारण सी बात है कि जो गाय भैंस अपनी शाम को गर्मी मारी है उसको सुबह गर्भित करवाएं, सुबह यदि गर्मी में आ रही तो उसको शाम को गर्भित कराएं, जिससे कि उसमें जो है ना परिपक्व अंडाणु होकर के निश्चित होकर के पशु गर्भ धारण कर सके, सबसे बड़ी बात किसान भाइयों के लिए।
1: अच्छा, अच्छा।
0: दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कई उत्तम स्तर के जो है ना सीमन का, जिसमें कि एटलीस्ट 70% नॉर्मल स्पर्म होने चाहिए, कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रयोग में लें। हालांकि ये हमारे जितने भी हैं पशु चिकित्सक महोदय इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। किसान भाइयों, दूसरी जो मैं महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा कि पशुओं में ये जो बार बार फिरने की समस्या है, इसके लिए उत्तम स्तर का जो वीर्य है जिसमें 70% तक नॉर्मल स्पर्म होने चाहिए, क्योंकि इनकी मृत स्पर्म ज्यादा होते हैं तो निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। अतः कृत्रिम गर्भाधान में क्या करें कि अच्छी किस्म का गुणवत्ता का सीमन प्रयोग में लेते हुए उचित स्थान पर ही इसको जो है ना छोड़ा जाए, जिससे कि निषेचन की क्रिया सफल हो सके। और किसान भाइयों, तीसरी जो सबसे बड़ी बात जो किसान भाई अपने स्तर पर कर सकते हैं कि संतुलित पशु आहार पशु को खिलाएं, जिसमें कि उचित मात्रा में खनिज लवण मिश्रण और विटामिन का समावेश हो, क्योंकि पशुओं में खनिज लवण मिश्रण में जैसे टोटल खनिज तत्वों में 75% कैल्शियम और फास्फोरस होता है, 25% और अन्य तत्व हैं, इनका समावेश पशुओं की आवश्यकता अनुसार उनकी जितनी मंडेड जो मात्रा है उसका समावेश पशु आहार में करें। इसके लिए क्या करेंगे, नियमित रूप से खनिज लवण मिश्रण 2% खनिज लवण मिश्रण जो बांटे में नियमित रूप से मिलाएं। नियमित रूप से यदि रोजाना किसान भाई अपने पशु को खिलाना चाहे तो 50 ग्राम मात्रा खनिज लवण मिश्रण की दाने बांटे में मिलाएं, या एक बार में ही जो अपना 100 किलो बांटा बना रहे हैं किसान भाई।

0: किसान भाई ऐसे हैं कि रोजाना नहीं मिला सकते, तो 100 किलो बांटे में 2% 2 किलोग्राम खनिज लौण मिश्रण का समावेश पूरा बना करके रखें और 1 किलो उसमें साधारण नमक बना दें जिससे कि इनकी पूर्ति स्वतः पशु के उसमें हो जाए।
1: तो मोटी बात आई है कि खाना पीना को तो आपने ध्यान रखना ही रखना है आपका डांडा सांस।
0: और एक महत्वपूर्ण बात किसान भाइयों और है कि कई बार क्या होता है कि पशुओं की बच्चेदानी में संक्रमण होता है, इस संक्रमण के निदान के लिए नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाकर के पशु चिकित्सक से इसका उपचार जरूर करवाएं, उसको लेकर के नहीं बैठे रहे, अदरवाइज उसमें क्या होगा कि पशु में परमानेंट जो है ना बांधता आ जाती है।
1: डॉक्टर कन तो जानो ही चाहिए कोई यदि बीमारी है आप।
0: समय समय पर उसकी जो है ना अपन जांच करवाते
1: रहना चाहिए जी। अब बात आवे डॉक्टर साहब की जो है प्रजनन है कती तरह हुए और नस्ल सुधार ताणी कौन सी विधि ज्यादा बढ़िया रही है
0: पशुओं में। किसान भाइयों एक सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि हमारे किसान भाइयों के स्तर पर मेन बात यह होती है कि पशुओं में वैसे प्रजनन तो एक तो बाह्य प्रजनन होता है एक अंतः प्रजनन होता है। पशुओं की नस्ल सुधार के लिए बाह्य प्रजनन, बाह्य का मतलब कि जो भी अपने गाय भैंस जब भी गर्मी में आए तो उससे 4 से 6 पीढ़ी दूर वहां सांड से उसको गर्भित करवाएं जिससे कि उसमें उत्तम लक्षणों का या उसमें ओज का जो है ना समावेश हो और उसकी उत्पादन क्षमता अच्छी हो। क्योंकि अंतः प्रजनन जिसको हम इनब्रीडिंग कहते हैं उसमें कई तरह के गुण का ह्रास होता है उसमें नहीं ले, जिससे नस्ल सुधार के लिए जरूरी है कि आउटब्रीडिंग यानी 4 से 6 संतति बचा करके प्रजनन करते हैं तो होने वाली संतति में अच्छे गुणों का समावेश होता है। साथ ही किसान भाइयों में निवेदन करूंगा कि अपनी जैसे गाय है, गाय में अपनी दूध उत्पादन के लिए अपन गाय ले रहे हैं तो इसमें अपने साहीवाल है, लाल सिंधी है, गीर है, इसकी शुद्ध नस्ल से जो है ना 4 से 6 पीढ़ी बचा करके प्रजनन कराएं जिससे कि आने वाली पीढ़ी में अच्छे उत्पादक पशु तैयार हो सके, आने में अच्छे गुणों का समावेश होगा, उसकी उत्पादकता अच्छी होगी।
1: अब बात आवे आप बार बार ही बात को जिक्र भी करो कि जो पशु आहार है वो पशु प्रजनन में बहुत महत्व रखे, तो इन थोड़ो विस्तारों बताओ साहब।
0: किसान भाइयों देखो पशु आहार तो पशुओं के जितने भी पोषक तत्वों से होने वाली कमियां हैं उनके विकार हैं उनसे बचाने के लिए आवश्यक है कि किसान भाई पशुओं को दिए जाने वाला आहार संतुलित होना चाहिए। संतुलित का मतलब कि उसमें जितने पशु की आवश्यकता अनुसार जितने पोषक तत्व चाहिए उतने सभी पोषक तत्वों का संतुलित मात्रा में समावेश करें। जैसे पूर्व में भी मैंने आपसे निवेदन किया कि किसी भी आहार के जो अवयव हैं कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, खनिज तत्व है, वाइटामिन है, इन सब का समुचित मात्रा में समावेश करना चाहिए। जैसे मैं निवेदन करूंगा कि दाना बांटा जो होता है किसान भाइयों को ज्यादातर दाना बांटा में सबसे ज्यादा जो खर्चा लगता है दाना बांटे में लगता है। जैसे आहार में हरा चारा, सूखा चारा, दाना बांटा होता है। दाना बांटा में ज्यादातर पोषक तत्व देने का एक तरीका है जिसमें कि जैसे 100 किलो बांटा हमारा किसान भाई बना रहा है उस बांटे में 25% तक मोटे मोटे रूप में देखें कि जो उसका रुपये में से चारा ना तो कोई भी अपने अनाज वाले इसमें गेहूं जो समय के अनुसार ज्वार बाजरा मक्का जैसा समय हो तो जैसे कि रुपये में से चारा 25 भाग तो अपने ये ले ले, 15 से 20 भाग तक वो जो है ना चूरी हुई जो दो दाल वाली फसलें उनके टूट फूट और छिलका और 30 से 32 भाग तक उसमें चापड़। किसान भाइयों चापड़ आप सभी जानते हैं कि ऊपर रेसे की मात्रा होती है जो कि पाचकता को बढ़ाती है। और पांचवी चीज जो मैंने अभी निवेदन किया है कि 2% खनिज लवण और 1% साधारण नमक का समावेश करके लगभग अपन पशु के लिए संतुलित बांटा अपने स्थानीय रूप से बना सकते हैं जिससे कि पशु की आवश्यकताएं सारी पूर्ति हो जाती है। और कई तरह के जो कई जैसे कि कई अभी अपन ने बात करी कि कई खनिज तत्वों की कमी से या विटामिन की कमी से जो पशु में बार बार फिरने की ऐसी समस्या आती है उससे भी हमारे पशु को हम बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों संतुलित पशु आहार का पशुओं के नियमित रूप से जो है आवश्यकता अनुसार खिलाएं। साथ ही किसान भाइयों मैं निवेदन करूंगा कि एक और मुख्य कारण है कि कई बार पशुओं के जो अंडे दानी में गांठ हो जाती है जिसके कारण भी पशु में जो है ना प्रजनन संबंधी कई विकार हो जाते हैं। तो इस तरह की समस्या में पशु बार बार गर्मी में आते हैं अथवा लंबे समय तक कई बार गर्मी में भी नहीं आते। ये तरह की बीमारी एक आनुवंशिक होती है जो कि प्राय देखा गया है कि 3rd से 5th व्यात में ज्यादातर होती है पशुओं में।
1: अच्छा
0: तो इस बीमारी के उपचार के लिए पशु भाई उसको अपने स्तर पर न रख करके उसका नजदीकी पशु चिकित्सालय

0: में जाकर के उपचार करवाएं, क्योंकि यदि इसका समय पर उपचार नहीं किया जाता है तो पशुओं में बांझपन की स्थायी शिकायत हो जाती है। हाँ। एक बात और होती है किसान भाइयों, कई बार जो है ना पशुओं में एक हार्मोन्स की कमी से, प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो कि मतलब उसकी गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी को मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, उसकी कमी के कारण क्या होता है भ्रूण की मैच्योर मृत्यु हो जाती है, उसको अबॉर्शन कहते हैं। अच्छा। तो उसके लिए जरूरी है कि इसके हार्मोन्स में क्या होता है कि कार्पस ल्यूसियम का कमजोर बन जाता है जिससे कि उसमें गर्भपात की समस्या होती है। तो इसका भी स्तर बनाए रखने के लिए जरूरी है संतुलित पशु आहार लें और अपने नियमित रूप से पशु चिकित्सक की जांच करवा के पशु में इसके स्तर को बनाए रखें।
1: बहुत बढ़िया सर, डॉक्टर रामावतार शर्मा जी आपका कासगार बयान बहुत बढ़िया जानकारी दी कि पशुओं में प्रजनन संबंधी समस्या आवे तो वहां का समाधान की कर करा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: तो भाई देखो जानकारी भी बहुत चौकी दिया डॉक्टर रामावतार शर्मा पशुओं का माए प्रजनन संबंधी समस्या और भी के समाधान के बारे में। वही देखो मैंने सुनी जी जका पशु ही गाय भैंस भेड़ बकरी जका किसान के लिए जका भाई वहाँ का रात दिन का साथी ही और पशु जब स्वस्थ रहे जो को खानो पीनो भी मिलते रहे निरोगो रहे तो किसान की भी देखो आत्म प्रसन्न रहे क्योंकि पशु हो चाहे मीनू को भी जब पशु चोको रहेगा स्वस्थ रहेगा चोको खान पान मिलेगा बिने चूकी आवास व्यवस्था मिलेगी तो उत्पादन भी जदि चोखो देगा।
3: और यो जो अबार मौसम बदल रहा है भाई साहब तो ई बदलता मौसम में मनुष्य रो तो ध्यान रखनो ही रखनो जरूरी है वीके सागे सागे आपनो पशुधन जी के बारे में अबार अपना कार्यक्रम में आप इतनी बात कर रहे हैं वीरो भी मोटो ध्यान रखनो जरूरी है क्योंकि ई बरखा रे मौसम टाइम पशु आपने नाना डोर ने आपा जड़े रखा हाँ तो वडे भी काई है कि पानी इकट्ठो हो जावे है पानी इकट्ठो होबा से कई तरीका का जो मच्छर है कीट है जीवाणु है वो बैठे पैदा हो जावे है वो आपने डांडा डोर ने बीमार कर सके है सा जिसे आपनी आमदनी पर तुरंत प्रभाव पड़ सके है।
2: बिल्कुल जटे अपना पशुपालक भाई जगह किसान भाई पशुओं ने बांधे पर जगह बिल्कुल देखो साफ सुथरी हुए और रोजाना भी की साफ सफाई जरूरी है क्योंकि कीचड़ कादो हुए जटे गंदगी में बटे मक्खी मच्छर ये प्रकार का जीव जंतु हो जाए और पशु देखो ज्यादातर खूंटस भी बंदेड़ो रहे और जब साफ सुथरी जगह होगी आराम से बैठ पाओगे सो पाओगे तो वो स्वस्थ रहेगा।
3: और अब स्टूडियो की घड़ी आपने भैसा यो इशारो कर रही है कि आज रे खेतीबाड़ी कार्यक्रम में इतने ही और आज रे खेतीबाड़ी कार्यक्रम से थे आज्ञा दिलाओ था की बहन मनस्वनी ने
2: और महेश भाई ने देवा आज्ञा
3: करा राम राम सा।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। अब सुनेंगे कार्यक्रम 20वें एशियन गेम्स 2026 का पूर्वालोकन। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

जापान के आइची नागोया में एशिया का सबसे बड़ा खेल मंच सज चुका है। इस बार 500 से अधिक भारतीय खिलाड़ियों का दल 35 अलग अलग खेल स्पर्धाओं में देश का मान और

0: तिरंगे की शान बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इन भारतीय खिलाड़ियों के कंधे पर आईची नागोया में सिर्फ 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदें ही नहीं हैं, बल्कि उनके सामने खुद का ही बनाया हुआ 28 गोल्ड समेत 107 मेडल्स का एक बहुत बड़ा पहाड़ पार करने की भी बड़ी चुनौती होगी। खास बात ये भी है कि भारतीय दल में 300 से ज्यादा खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कदम रख रहे हैं। उन्हें ये साबित करना है कि भारत की नई पौध दबाव में बिखरती नहीं बल्कि निखरती है। औपचारिक रूप से 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक होने वाले इस खेल महाकुंभ में हमारे एथलीटों की नजरें एशिया के टॉप थ्री देशों में जगह बनाने और कई खेलों में लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक का टिकट पक्का करने पर भी टिकी हैं। भारत जिन खेलों में भाग ले रहा है उनमें तीरंदाजी, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, ट्रैक एंड फील्ड की अलग अलग स्पर्धाएं, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कैनोइंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, घुड़सवारी, ई स्पोर्ट्स, तलवारबाजी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, कुराश, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, रोइंग, रग्बी सेवंस, सेलिंग, सिपकटेकरा, शूटिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्क्वाश, सर्फिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, सॉफ्ट टेनिस, टेक बॉल, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, घुड़सवारी और वुशु जैसे खेल शामिल हैं। एशियन गेम्स में इस बार भी एथलेटिक्स में सबसे अधिक भारतीय खिलाड़ी भाग लेने जा रहे हैं। 70 से अधिक सदस्यों वाले एथलेटिक्स दल में 30 से अधिक पुरुष और करीब 40 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। पिछली बार भारत ने 6 स्वर्ण समेत 29 पदक जीते थे। इस बार भी ढेर सारी उम्मीदें हैं। एथलेटिक्स में 100 मीटर स्प्रिंट के भारत की बड़ी उम्मीद गुरिंदर वीर सिंह बिल्कुल तैयार है। दिल्ली में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज फाइनल के बाद उन्होंने एशियन गेम्स की संभावनाओं को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: हर कंपटीशन एक जर्नी का पार्ट होता है। हमारा फाइनल गोल, हमारा फाइनल जो रेस है वो एशियन गेम्स है, हमको वहाँ अच्छा करना है। ये प्रिपरेशन है, फिटनेस प्लेयर है, हम अच्छा भागे हैं, बट हाँ होपफुली अच्छा परफॉर्म करेंगे और मेडल जीतेंगे।
0: महिला ट्रिपल जंपर निहारिका वशिष्ठ भी पूरी तरह से तैयार हैं और उन्होंने गोल्ड का लक्ष्य रखा है।
2: देखिए एशियन गेम्स के लिए मेरा टारगेट है कि मैं 14 मीटर्स के ऊपर ही लगाऊं, तो उस चीज को माइंड में रखते हुए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और अपना वो टारगेट अचीव करने की कोशिश करूंगी।
0: हैमर थ्रोअर तानिया चौधरी ने दिल्ली में नेशनल रिकॉर्ड बनाया और उसके बाद एशियन गेम्स के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट है।
3: अभी अपना पीवी किया है तो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ, अब वहाँ पे जाके थ्रो लगाने के लिए अब अच्छा करेंगे।
0: भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीमें इस बार न सिर्फ मेडल बल्कि गोल्ड मेडल की बड़ी दावेदार हैं। दोनों टीमों के पास गोल्ड जीतकर लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का मौका भी है। हॉकी में भारत की उम्मीदों के बारे में हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद आजमी ने बात की भारत के पूर्व कप्तान जफर इकबाल से।
4: जफर साहब, भारत 4 बार एशियन गेम्स का गोल्ड जीत चुका है, 2026 में डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगा, इस बार चुनौती कितनी अलग होगी, खासकर जब गोल्ड के साथ टीम 2028 का सीधे ओलंपिक का टिकट हासिल करेगा?
5: देखिए इम्पोर्टेंट तो ये सब गेम्स हैं दोनों मेन एंड वुमेन के लिए, और जो भी जीतेगा नेचुरली वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा ओलंपिक गेम्स के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा सबके दिमाग में होगा, ना कि ओनली हिंदुस्तान की टीम इस बात को सोच रही होगी, क्योंकि जापान इज द होस्ट कंट्री, ऑल्सो द पाकिस्तान भी है उधर, मलेशिया इज ऑल्सो देयर, साउथ कोरिया इज ऑल्सो देयर। तो मेरे ख्याल में सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा, दिस इज द गोल्डन चांस एनीबॉडी हु विंस द गोल्ड, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा कंपटीशन है एशियन गेम्स का। मगर अगर ये बात कहें कि वर्ल्ड कप या ओलंपिक गेम्स, उसका स्तर अलग है
4: जी,
5: यहाँ का स्तर अलग है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल हिंदुस्तान की टीम, ये तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वी आर स्ट्रांगेस्ट टीम, बहुत मजबूत टीम है हमारी, बट ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम इसके गोल्ड ही लेके आएंगे, लाना चाहिए भी, बिकॉज विद द सेम मेंटेलिटी अगर आप जा रहे हैं तो यू कैन डू इट, हमारा अपर हैंड तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट, और हमें मुझे बहुत उम्मीद है कि हम गोल्ड जीतेंगे इसमें, मगर खेलों की दुनिया में यू नेवर नो के व्हाट विल हैपन, तो इसमें मैं जरूर कहूंगा कि हमारी टीम स्ट्रांग है और हम लोगों को मेंटली भी स्ट्रांग रहना चाहिए, फिजिकली और हम लोग को एक्सपीरियंस भी है। वर्ल्ड कप जब कोई खेलता है तो उसकी प्रिपरेशन हायर लेवल पे चली जाती है, बिकॉज यू हैव टू मीट ऑल दी हाई रैंक टीम, चाहे वो बेल्जियम है, ऑस्ट्रेलिया है, हॉलैंड है, जर्मनी है, तो यहाँ पे अच्छा मुकाबला रहेगा। वी शुड विन द एशियन गेम्स।
4: महिला टीम पिछले दिनों से काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है एशियन गेम्स में। सबसे बड़ी हालांकि चुनौती चीन, दक्षिण कोरिया ये है, लेकिन वर्तमान में जिस तरह टीम खेल रही है, जिस तरह वर्ल्ड कप में भारत

0: मैत्री चीन को बराबर पर रोका था, उसको देखते हुए महिला टीम के बारे में क्या कहेंगे, कितनी संभावना है?
1: नहीं, अच्छी संभावना है कि मेडल पोडियम पे ये आ सकते हैं, क्योंकि जब वर्ल्ड कप में फिफ्थ पोजीशन लेके आए हैं तो इट्स बिग अचीवमेंट फॉर द वुमेन्स टीम।
2: वेटलिफ्टिंग में एशियन गेम्स में इस बार सिर्फ महिला वर्ग में भारतीय चुनौती है। भारतीय वेटलिफ्टिंग दल की अगुवाई 49 किलो भार वर्ग में मीराबाई चानू करेंगी। उनके सामने अपने पिछले रजत पदक का रंग बदलने का बड़ा दबाव होगा, लेकिन हर दबाव से निकलकर निखरने के लिए भारतीय वेटलिफ्टिंग दल तैयार है। भारतीय टीम की सदस्य ज्ञानेश्वरी, जो 53 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लेंगी, वो बता रही है कि मुश्किलें तो होंगी, लेकिन अच्छा करने का लक्ष्य इस बार तय कर रखा है।
3: मैं चाहूंगी कि अपना बेस्ट प्रदर्शन करूं। एशियन कंट्रीज, चाइना और बाकी अदर कंट्रीज भी आती है तो थोड़ा टफ रहता है।
2: हरजिंदर कौर, जो 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय दल की उम्मीद होंगी, वो बताती हैं कि वो अपना बेस्ट प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
4: टारगेट मेरा यही रहे, क्योंकि मैं अपना बेस्ट देख के आऊं परफॉर्मेंस, जैसे मैंने कॉमनवेल्थ गेम में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था।
2: और अब बात शूटिंग की। इस बार पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर की मौजूदगी में भारतीय शूटिंग टीम के सामने हांगझू के 22 पदकों के रिकॉर्ड को पार करने की बड़ी चुनौती है। टीम कितनी तैयार है और क्या उम्मीदें हैं, बता रहे हैं ट्रैप शूटर केनान चिनाई। केनान, इस बार फिर से मेंस ट्रैप इंडिविजुअल इवेंट और मेंस ट्रैप टीम इवेंट में आप उतरने जा रहे हैं, हांगझू की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए इस बार कैसी तैयारी है?
5: सर, हमारा तैयारी तो बहुत अच्छा रहा इस बार। पहले हमारा हाई परफॉर्मेंस कैंप था 10 दिन कोचेस के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, तो हम थोड़ा प्रिपरेशन में और ध्यान दिए इस बार और थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस दिए प्रिपरेशन में। इस बार हमारा कोच भी बहुत स्ट्रिक्ट है प्रिपरेशन में, तो हमारा स्पोर्ट्स साइंस टीम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दिए इस बार, क्योंकि जापान जा रहे हैं, इस बार चाइना नहीं जा रहे और कंडीशंस डिफरेंट रहेगा, वेदर डिफरेंट रहेगा, फूड डिफरेंट रहेगा, अकोमोडेशन भी डिफरेंट रहेगा, तो देखी जाएगी सर वहाँ जाके कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए।
2: और पिछली बार टीम इवेंट में तो गोल्ड आया था, लेकिन इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल दूर रह गया था। पिछली बार वो कौन सा पहलू रह गया था जिसमें सुधार कर इस बार गोल्ड जीतकर तिरंगे को सबसे ऊपर फहराने का टारगेट आपने तय किया हुआ है?
5: सर, वो तो कभी भी ड्रीम है, वो तो दिल में कभी भी रहता है। ये भी कंपटीशन में गए तो वही दिल में रहता है, वही दिमाग में रहता है। लास्ट टाइम मैंने ब्रॉन्ज जीता था इंडिविजुअल में, तो अच्छा था सर। वो मेरा सेकंड गेम्स था, ये मेरा तीसरा गेम्स है, तो कोशिश तो पूरा करेंगे। तो
2: आपके ट्रैप इवेंट में मुख्य रूप से किन एशियाई देशों की तगड़ी चुनौती होती है और उससे निपटने के लिए आपने अपने कोच अंशर सिंह के साथ और चेक कोच डेविड कोस्टेलिंकी के साथ क्या खास प्लानिंग की है?
5: ऐसे तो प्लानिंग नहीं करे कौन सी नेशन को हराएंगे, मगर ऐसे प्लानिंग करेगी हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे आए, हमारा बेस्ट एफर्ट कौन सा, टारगेट्स पे प्रैक्टिस करना है, कौन सा बंदूक यूज करना है, कौन सा एम्युनिशन यूज करना है, वो सब डिस्कशन होता रहता।
2: और किरण, पिछली बार भारतीय शूटिंग दल ने 22 मेडल जीते थे, बहुत बड़ी संख्या थी, इस बार कितनी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि आप तो टीम के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कैसी परफॉर्मेंस चल रही है वो भी चर्चा होती होगी, तो ओवरऑल क्या लग रहा है?
5: सर, ऐसा है कि हमारा राइफल पिस्टल टीम मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है वर्ल्ड में, तो आई थिंक दे विल डू रियली वेल। आई थिंक दे हैव अ वेरी वेरी गुड चांस इन बीटिंग अ लॉट ऑफ द कंट्रीज एंड गेनिंग मेडल्स फॉर आवर कंट्री। शॉटगन टीम ऑल्सो इज कमिंग अप वेरी वेल, वी हैव अ यंग टीम गोइंग दिस टाइम, सो I think what I've seen at least in the camps and in the preparation to the games that everybody is putting their best foot forward. बहुत ज़्यादा effort दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा training कर रहे हैं, तो कुछ तो positive आएगा।
2: भारत का मुक्केबाजी दल हमेशा मेडल का बड़ा दावेदार रहा है। पिछली बार लवलीना बोरगोहेन के सिल्वर समेत भारतीय दल ने 5 पदक जीते थे, इस बार उससे आगे निकलने का इरादा है। पदक जीतने की कितनी उम्मीदें हैं और पिछली बार से कितना बेहतर भारतीय दल कर सकता है, इस बारे में बता रहे हैं भारतीय बॉक्सिंग दल के पूर्व चीफ कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त एसआर सिंह।
6: देखिए, हमारे पास इस टाइम 6 लड़के और 5 लड़कियां जो है टीम में गई हैं और काफी स्ट्रांग टीम है, जो कि एक्सपीरियंस टीम है, जो पीछे कॉमनवेल्थ गेम में अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। स्पेशली लड़कियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और लड़कों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, 2 गोल्ड मेडलिस्ट थे उसमें, तो हमें उनसे एक्सपेक्टेशन है अच्छा प्रदर्शन करें।
2: आईची नागोया में भारतीय कुश्ती दल से देश को कई पदक जीतने की मजबूत उम्मीद है। भारतीय दल की बात करें

0: तो पुरुष फ्री स्टाइल में अमन सहरावत हैं, सुजीत कलकल हैं, सागर जगलान, दीपक पूनिया और रजत रूहल की चुनौती होगी। महिला फ्री स्टाइल में अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम, निशा दहिया 68 किलोग्राम, मानसी अहलावत 62 किलोग्राम, मनीषा भानवाला 57 किलोग्राम, दीपांशी 50 किलोग्राम और प्रिया मलिक 72 किलोग्राम में चुनौती पेश करेंगी। ग्रीको रोमन में भी हमारे तीन पहलवानों की चुनौती होगी। दीपांशी कहती है कि गोल्ड जीतने के लिए इस बार पूरी तैयारी है।
1: तैयारी बहुत ही अच्छी है, जाएंगे कॉन्फिडेंस से और मेडल लेके आएंगे वहाँ से।
2: कितना जोश है?
1: फुल 100 of 100।
2: कितने मेडल आएंगे?
1: जितने हम बच्चे जाएंगे रेसलिंग से उतने ही मेडल आएंगे हमारे।
0: 68 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी चुनौती पेश करने जा रही निशा बता रही है कि तिरंगा लहराने का इस बार लक्ष्य तय कर रखा है।
1: तिरंगा ही लहराना वहाँ जाके, मेरा तो एम यही है।
0: पहलवान प्रिया मलिक का कहना है कि किसी का डर नहीं है, भारत बेस्ट है।
3: प्लान तो यही है सर कि अपना बेस्ट देना है, सब यही सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि अपना 100% देंगे और अच्छा करेंगे।
2: जो जापान कोरिया की जो डर था वो निकल चुका है, वो उनकी लड़कियां बड़ा मजबूत है।
3: नहीं सर, कोई डर नहीं है, हम ही सबसे बेस्ट है, इंडिया सबसे बेस्ट है।
0: पुरुष वर्ग में सुनील कुमार इस बार मेडल की उम्मीद कर रहे हैं।
4: पिछली बार मैंने ब्रोंज मेडल जीता था, अगली बार मेडल का रंग चेंज करूंगा, गोल्ड मेडल लेके आऊंगा देश के।
2: इस बार क्या ज्यादा फोकस किया है इस एशियन गेम्स के लिए, जो तैयारियां की, किन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया है?
4: ग्राउंड रेसलिंग पे ज्यादा फोकस किया।
2: क्या लग रहा है इस बार कितने पदक कुश्ती से आएंगे?
4: कम से कम 10 मेडल देंगे कुश्ती के।
0: भारत के पारंपरिक खेल कबड्डी में पहले कोई खास चुनौती नहीं दिखती थी, लेकिन अब पुरुषों और महिलाओं दोनों वर्गों में ईरान की कड़ी चुनौती सामने आती है। भारतीय पुरुष टीम के सदस्य पवन इस बार की संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं।
5: बिल्कुल मेडल लेके आएंगे, और कबड्डी से हमेशा एक्सपेक्टेशन रही है कि मेडल लेके आई है, और आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कबड्डी बिना मेडल के आई है। 2018 में ऐसा हुआ था कि जो थर्ड पे फिनिश किया था, लेकिन अभी 2022-23 में जब भी हम मेडल लेके आए थे, गोल्ड लेके आए थे, और डेफिनेटली अभी गोल्ड लेके आएंगे।
0: क्रिकेट की बात करें तो इस बार भारत अपनी सेकेंड ग्रेड टीम नहीं बल्कि मुख्य टीम को मैदान पर उतार रही है। पुरुष टीम कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में सीधे क्वार्टर फाइनल से शुरुआत करेगी। महिला वर्ग में कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम अपने स्वर्ण पदक की रक्षा के लिए उतर रही है। भारत ने अपना क्वार्टर फाइनल मैच जापान के खिलाफ जीत लिया है, अब सेमीफाइनल मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ 20 सितंबर को होगा। अपने पारंपरिक खेल तीरंदाजी में हमें अक्सर बहुत उम्मीदें रहती हैं। हम आपको बता दें कि पिछले एशियन गेम्स में कंपाउंड इवेंट में हम सुपर पावर साबित हुए थे और 5 के 5 गोल्ड मेडल जीते थे। कंपाउंड और रिकर्व श्रेणियों में कुल मिलाकर 12 खिलाड़ी इस बार भाग ले रहे हैं। पहले सुन लेते हैं कंपाउंड आर्चर कृतिका प्रदीप संभावनाओं को लेकर क्या कह रही हैं।
6: मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं अपने शूटिंग पर फोकस करूंगी और इंडिया के लिए मेडल लाने की पूरी कोशिश करूंगी। लेट अस होप फॉर द बेस्ट कि सारे ही मेडल आए। इस बार सब अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, वही तैयारी चलती है, सो विल डू आवर बेस्ट।
0: रिकर्व टीम से भी इस बार बेहतर प्रदर्शन की संभावनाएं हैं, ऐसा रिकर्व टीम की सदस्य कुमकुम महोत भी मान रही हैं।
7: एशियन गेम्स में उम्मीद, मतलब मैं मेरा बेस्ट दूंगी, मेडल तो आएगा 100% आएगा, और मेडल टीम का भी हो सकता है, मिक्स टीम का भी हो सकता है, और इंडिविजुअल का भी हो सकता है।
0: वॉलीबॉल कभी हमारा ताकत वाला खेल नहीं रहा है, फिर भी इस बार हम उलटफेर के लिए तैयार हैं। एशिया के शीर्ष देशों की मौजूदगी में बेहतर प्रदर्शन इस बार हमारा एकमात्र लक्ष्य है। बैडमिंटन में एशियाई टीमें दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में शुमार हैं। इन देशों में भारत भी शामिल है, लेकिन सच ये भी है कि 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु अपने शिखर से ढलान की तरफ हैं। वहीं युवा सनसनी लक्ष्य सेन के प्रदर्शन में निरंतरता की कमी दिखाई देती है। आयुष शेट्टी और उन्नति हुड्डा जैसे कुछ युवा चेहरे जरूर कुछ प्रभावित करने में सफल रहे हैं। हालांकि डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मेंस डबल्स जोड़ी इस बार भी कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है। संभावनाओं को लेकर चिराग शेट्टी खुद क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं।
8: एशियन गेम्स के लिए आई थिंक इट्स ऑलवेज लाइक अ लॉट ऑफ पीपल विल से दैट या वी आर द पेयर टू बीट अ वीक और टू 10 मिनट बिफोर द एशियन गेम्स। आई वुडंट से दैट, देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर गुड प्लेयर्स एज वेल। वी जस्ट वांट टू गो आउट देयर एंड हैव एज मच फन एज वी नॉर्मली डू ऑन अ बैडमिंटन कोर्ट, एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट आई थिंक वी विल बी एबल टू गो डीप इनटू द टूर्नामेंट, एंड That's the only thing we want to do. Like, not really think too much about the results. When we are able to keep the results aside and take one match at a time, I think we'll do really well.
0: चीन और जापान जैसे देशों की मौजूदगी

0: टेबल टेनिस में पदक तक पहुंच पाना हमेशा से एक कठिन चुनौती रही है, लेकिन मानुष शाह, मानव ठक्कर, हरमीत देसाई, श्रीजा अकुला, बिया चितले, सिंड्रेला दास और पायस जैन जैसे युवा खिलाड़ियों से इस बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस के गोल्ड मेडलिस्ट पायस जैन क्या कुछ कहते हैं इस बारे में वो जानते हैं।
1: तैयारियां काफी अच्छी चल रही है एशियन गेम्स के लिए, और जो हमारा पास परफॉर्मेंसेज है टेबल टेनिस का एशियन गेम्स में, एंड अभी इस साल में फिर बात करूँ क्यों डबल्स है, मिक्स डबल्स है, सिंगल्स है, आई फील कि हम सारे अच्छे कर रहे हैं, एंड या वी आर रेडी जो भी चैलेंजेस आने वाले एशियन गेम्स के लिए, एंड रियली हैप्पी एंड ऑनर्ड एशियन गेम्स आने के लिए। लेट्स सी हाउ इट गोस, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई कैनॉट पिन पॉइंट कि कितने आएंगे, कैसे आएंगे, यू कैनॉट, मतलब स्पोर्ट्स है, बट आई फील कि या इट्स गोइंग टू बी बेटर देन द लास्ट टाइम।
0: स्क्वाश में अनाहत सिंह ने हाल में कई चौंकाने वाले परिणाम दिए हैं, अपने से कहीं ऊंची रैंकिंग वाले खिलाड़ियों को कई मौकों पर मात दी है। साथ ही जोशना चिनप्पा और अभय सिंह जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी इस बार भारतीय टीम में शामिल हैं, तो पदक की पुख्ता उम्मीदें हैं। पदक की संभावनाओं को लेकर क्या कहती हैं युवा खिलाड़ी अनाहत
2: सिंह?
0: भारतीय मार्शल आर्ट्स के लिहाज से वुशु हमेशा से एक ऐसा साइलेंट परफॉर्मर रहा है जिसने वैश्विक स्तर पर देश को लगातार गौरव दिलाया है। इस बार भी भारत को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कोच अमित पाल टीम की संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं।
3: अभी इस एशियन गेम्स के लिए हमारी टीम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, और लास्ट ईयर हमने एक सिल्वर मेडल लिया था, बट इस बार मे बी होप हम 7 एथलीट जा रहे हैं और मे बी हम 5-6 के आसपास में मेडल सिक्योर करेंगे, इस बार पूरा कॉन्फिडेंस हमें।
0: जूडो में हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में कमाल किया, इस बार भी अस्मिता डे, यामिनी मौर्या और आई तखिलबम की मौजूदगी से टीम से बहुत बढ़िया प्रदर्शन की संभावना है, ऐसा खुद अस्मिता डे मान रही है।

0: भारतीय तैराकों से पदक की उम्मीद से ज्यादा एशियन गेम्स के कड़े पूल्स में टाइमिंग सुधारने और फाइनल में जगह बनाने की कड़ी चुनौती होगी। देखना है इस बार भारतीय तैराक उन उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। वर्चुअल स्पोर्ट्स के दौर में भारतीय ई स्पोर्ट्स टीम ने अब तक एशियन गेम्स में सिर्फ एक कांस्य पदक जीता है। इस बार उससे बेहतर की उम्मीद है। भारतीय ई स्पोर्ट्स के महासचिव लोकेश सूजी कहते हैं कि चारों इवेंट में इस बार हम पदक जीतेंगे।
1: इस बार हमारे चार गेम टाइटल्स के लिए हमारे ई स्पोर्ट्स एथलीट जा रहे हैं, टोटल 15। पूरे कॉन्फिडेंट है कि हमारे एक्चुअली चारों के चारों जो टाइटल्स हैं उसमें हमारे मेडल आएंगे।
0: पोकेमॉन यूनाइट में पदक को लेकर आशान्वित हैं टीम के सदस्य अदनान।
2: आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 इयर्स। मैं 5 साल में से 4 साल जीता ही हूँ ये गेम में। एंड यस, एज एन ऑफिशियल इंडिया को रिप्रेजेंट करना फर्स्ट टाइम है। हम तो गोल्ड का ही ट्राई कर रहे हैं, पूरी कोशिश रहेगी। अभी रिसेंट में एक इवेंट हुआ था उसमें हम लोग 2nd आए थे एशिया में ही, तो वी आर गोना ट्राई फॉर गोल्ड दिस टाइम।
0: एशियन गेम्स में टेकबॉल का डेब्यू हो रहा है। ये खेल नया है लेकिन भारत का दावा तगड़ा है। इस बात की झलक क्यूमसी डिसूजा के प्रदर्शन से मिल गई है। उन्होंने विमेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचकर अपनी पदक की दावेदारी पेश कर दी है। उन्होंने पहले मैच में कंबोडियन प्रतिद्वंदी को हराया, फिर जापान की वर्ल्ड नंबर 7 युइना साकामोतो को हराया। अब वो पदक से सिर्फ एक जीत दूर रह गई हैं। कल सुबह उनका सेमीफाइनल मैच इंडोनेशिया की सुमाया से होगा। हालांकि मिक्स डबल्स में अपने साथी अनस इमरान के साथ वियतनामी जोड़ी के हाथों क्वार्टर फाइनल में हार से उनकी चुनौती समाप्त हो गई है। आईचिन अगोया एशियन गेम्स में भारत की तैयारियों और संभावनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय खेल प्राधिकरण साई की खेल पत्रकार हिमिका चौधरी। हिमिका, सबसे पहला सवाल और सबसे पहली बात ये कि एशियन गेम्स 2026 में शूटर और ओलंपिक के डबल मेडलिस्ट मनु भाकर और एशियन गेम्स में शॉटपुट के गोल्ड मेडलिस्ट तेजिंदर पाल सिंह तूर आईचिन नागोया में भारतीय दल के फ्लैग बेयरर होंगे। ये इन खिलाड़ियों के लिए कितना बड़ा मौका है और जो ये फैसला लिया गया है ये कितना अच्छा है?
3: नमस्कार, आपका ये जो सवाल है, देखिए, फ्लैग बेयरर एक देश के लिए बनना वो किसी भी खिलाड़ी के लिए इतना बड़ा एक मौका है, एक गर्व की बात है। और

0: जब इनको जैसा आपने पूछा कि इन दोनों को चुना गया ये कितनी अच्छी बात है, मनु क्योंकि जैसा आपने कहा डबल ओलंपिक मेडलिस्ट है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है स्पेशली यंग जेनरेशन के बीच, तो मुझे लगता है उसका सिलेक्शन जेनजी को भी बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा ये खेल देखने के लिए। और तेजिंदर पाल तूर का तो बहुत बड़ा फॉलोइंग है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, और हमें पता है कि हरियाणा पंजाब इस इलाके के जो बच्चे हैं वो खेल में काफी रुचि रखते हैं, शायद इंडिया में सबसे ज्यादा रुचि रखते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं, तो उनके लिए भी मुझे लगता है कि एक बहुत ही इनकरेजिंग मोमेंट होगा जब वो देखेंगे उनमें से कोई जो है इंडिया का फ्लैग बेरर बनके आईची नगोया में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
1: और इस बार संख्या की बात करें तो भारत का दल छोटा है लेकिन पदक की जो उम्मीद है वो पिछली बार से ज्यादा की जा रही है, इसकी आखिर क्या वजह है?
0: देखिए जब एक कंटिंजेंट जाती है हमेशा यही सोच रहता है कि पिछली बार से ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स लेके आएंगे, पर खेल एक ऐसी चीज है जिसमें कहना बहुत मुश्किल है कि पिछली बार से ज्यादा होगा या कम। इस बार जैसा कि आपने कहा कि कंटिंजेंट छोटी है, पिछली बार के मुकाबले ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा एथलीट जो है इस बार हम कम भेज रहे हैं, 501 का टोटल कंटिंजेंट है। तो जब कंटिंजेंट कम होती है हम कभी सोचते हैं कि शायद फिर इसके साथ के मेडल पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए नंबर ऑफ मेडल ज्यादा या कम ये कहना मुश्किल होगा, ये जरूर कह सकती हूँ कि जिस तरह का हमारा तैयारी है जो पिछली बार हमने जीता था उसके आसपास तो हम लोग जरूर लेके आएंगे। अगर आप देखें तो जो एथलीट टू मेडल रेशियो होता है कि कितने एथलीट आपने भेजे और आपके देश ने कितने मेडल्स जीते, वो इस बार जरूर बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पिछली बार 800 के करीब बच्चों ने मिलके 100 से थोड़े ज्यादा मेडल जीते थे और इस बार अगर वही नंबर 500 बच्चे ले आते हैं तो एथलीट टू मेडल रेशियो इस बार हम जरूर कह सकते हैं कि ज्यादा होगा। और उम्मीद तो देखिए यही है कि 100 से थोड़ा ज्यादा, पर मुझे लगता है कि ये नंबर्स कह के एथलीट पे प्रेशर हम क्रिएट ना करें, उनके लिए चीयर करते रहे, चीयर फॉर भारत जैसा हम कहते हैं। मेडल्स ज्यादा जरूर होंगे या उसी के करीब होंगे, बट जो भी होंगे हमारे एथलीट्स उनके 100% देके आएंगे।
1: और भारतीय दल में इस बार 300 से अधिक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बेहद युवा हैं और पहली बार इतने बड़े मंच पर उतर रहे हैं, इस बारे में सोच क्या रही है?
0: देखिए ये स्पोर्ट्स फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि जब भी हम इंडियन स्पोर्ट के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं तो कोई वही चार गिने चुने नाम आते हैं हर स्पोर्टिंग डिसिप्लिन में कि बस यही लोग हैं जो शायद मेडल ले आ पाएंगे। बट इस बार जैसा आपने कहा कि 501 में से 310 विच इज लाइक अराउंड 60-63% ऑफ द टोटल कंटिंजेंट आर गोइंग टू द एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो जा रहे हैं, तो इससे ये दर्शाता है कि हमारा जो बेंच स्ट्रेंथ है जो किसी भी एक इवॉल्विंग स्पोर्टिंग नेशन के लिए बेहद जरूरी है। तो इसी कारण से मुझे लगता है कि नए जो युवा, जैसे आप देखिए अनाहत स्क्वाश में हम हमेशा वही रहता है जोशना चिनप्पा सौरभ घोषाल यही लोग शायद कुछ कर पाए हमारे लिए, बट इस बार अनाहत का बहुत बड़ा चांस है। हर एक स्पोर्ट में जो टीम्स है वो यंगर होती जा रही हैं और ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एज अ कंट्री कि हम सही दिशा में जा रहे हैं।
1: और सरकार ने भी और तमाम खेल संघों ने भी इस बार एशियन गेम्स के लिए खुले हाथ से खर्च किए हैं और कहें तो खिलाड़ियों पर जो सुविधाएं उनको चाहिए, जिस तरह की फैसिलिटीज चाहिए, सब पर बहुत ज्यादा खर्च किया गया है, इस बारे में भी कुछ बताया।
0: देखिए 2014 के बाद जब 2019 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का लॉन्च हुआ और उसके बाद खेलो इंडिया का लॉन्च हुआ, तभी से लेके सरकार की तरफ से स्पोर्ट्स में जो बजट है वो बढ़ाया ही जा रहा है ताकि टैलेंट को मौका मिले। इस बार का जो खेलो इंडिया का बजट है वो 10 times ज्यादा करके 36,000 करोड़ कर दिया गया है। तो पैसा तो डेफिनेटली खर्चा किया जा रहा है, इस बार का भी जो हमारा बजट है वो 702 करोड़ रुपए है, पर मुझे लगता है कि पैसा खर्चा कर रहे हैं ये तो सही है, पिछले कुछ 10 सालों से कर ही रहे हैं, पर सही जगह पैसा खर्चा करना, जो एथलीट की नीड है वहां पे सपोर्ट देना और सही टाइम पे देना, मुझे लगता है ये दोनों चीजें हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। CWG में भी किया था जिसके वजह से आपने मेडल्स का टैली आपने देखा कितना बड़ा। एक एथलीट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है इंटरनेशनल एक्सपोजर, क्योंकि इंटरनेशनली ट्रेन करते हैं तभी उनको समझ में आता है कि दूसरे देशों के एथलीट्स कितना अच्छा कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल एक्सपोजर में मुझे बताते हुए खुशी है कि जो बजट है वो इस साल का कुछ सिर्फ एशियन गेम्स के लिए कुछ 40 करोड़ रुपए का था। अलग अलग एथलीट्स अलग अलग जगहों में जाके ट्रेन

0: किया, जैसे एथलेटिक्स वाले थे वो यूएसए में बहुत लंबे समय तक रहे, पोलैंड में रहे, स्पाला में। टेनिस के जो बच्चे थे उनको भी हमने भेजा सियोल साउथ कोरिया में, वेटलिफ्टिंग वाले बर्मिंगहम में थे, रेसलिंग रशिया और उज्बेकिस्तान क्योंकि स्पारिंग पार्टनर वहां पे सबसे ज्यादा बढ़िया मिलता है, शूटिंग वाले इटली में थे। तो इस तरह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इंटरनेशनली अपने आप को ट्रेन कर रहे थे। और जब हम कहे कि इंटरनेशनली ट्रेन कर रहे थे, क्या इसका मतलब है कि भारत में ट्रेनिंग अच्छी नहीं है? बात वो नहीं है, बात हमेशा यही होती है कि इंटरनेशनली ट्रेन करते हैं तो हर एक देश के एथलीट के साथ वो मुकाबला करते हैं और वो उनको वो कॉन्फिडेंस देती है कि एक मल्टीनेशनल स्पोर्टिंग इकोसिस्टम में जाके वो परफॉर्म कर पाए। एथलीट के लिए कोच एक बहुत अहम हिस्सा, सबसे अहम हिस्सा हम कह सकते हैं, क्योंकि इक्विपमेंट, डाइट, फॉरेन एक्सपोजर सब कुछ एक जगह पर, जो कोचिंग है वो अगर उनको सही नहीं मिले फिर चाहे आप उन्हें कहीं भी भेज दे वो उस तरह का टेक्निक वो सीख नहीं पाएंगे, वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो साइकी कोचेज है, जो इंडियन कोचेज है, वो तो उनको ट्रेन पूरे साल कर ही रहे हैं, पर साथ में हम लोग इस बार 50 से ज्यादा फॉरेन कोचेज लेके आए हैं, जिसमें से मान लीजिए 14 जो है वो एथलेटिक्स में है। कारण उसका यही था कि फॉरेन कोचेज, जस्ट लाइक फॉरेन एक्सपोजर, जब वो लोग जाके इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। फॉरेन कोचेज उनके इंटरनेशनल टेक्निक्स लेके आते हैं और इस तरह से चूज किया जाता है कि जिस देश का जो कोच सबसे अच्छा है इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन, उनको हम लेके आते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि फॉरेन कोचेज का एक अहम भूमिका इस बार भी रहेगा।
1: और एक सवाल ये भी तो होता है कि इस बार हमने खिलाड़ियों को वैसी कंडीशंस दी ट्रेनिंग के लिए जैसा कंडीशन हमें आईची नागोया में मिलेगा खिलाड़ियों को अपना खेल प्रदर्शित करने के लिए, और ठहरने के भी कुछ ऐसे इंतजाम किए गए जैसे कंटेनर में और क्रूज में ठहराने की जो व्यवस्था है जापान में, उस पर भी काफी कुछ किया गया।
0: देखिए, एथलीट का जो मेंटल स्टेटस है ना, वो हमेशा डिसाइड करती है एथलीट का परफॉर्मेंस। क्योंकि वही बात है कि हम एग्जाम के लिए पूरे प्रिपेयर होके तो गए, पर एग्जामिनेशन हॉल में अगर मान लीजिए बहुत गर्मी हो या इस तरह का कुछ सिचुएशन हो जहां पे हम लिख ही नहीं पा रहे हैं पेपर, उसी पे हमारा ध्यान चला जाए तो हम शायद परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो एथलीट के लिए भी चीज वही है। हमें पता था बहुत पहले से कि नगोया के कुछ बहुत यूनिक चैलेंजेस रहेंगे। नगोया बहुत ज्यादा कोई बड़ा शहर नहीं है, एक इंडस्ट्रियल हब है, और नगोया के लिए भी इतने सारे एथलीट्स को एक साथ रखना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। उन्होंने पहले ही बोला था कि होटल्स हमारे पास इनफ नहीं है, तो हम इसलिए जो एथलीट्स हैं उनको कंटेनर्स में रखेंगे, हट्स में रखेंगे, क्रूजेस में रखेंगे। तो ये जैसे ही हम लोगों को पता चला तो हमें लगा कि ये बहुत जरूरी है कि एथलीट को भी हम वो ट्रेनिंग दे कि उस सिचुएशन में जाके उनको ये ना लगे कि ये मेरी बेड बहुत छोटी है, मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है कंटेनर के अंदर, तो वही सोच सोच के उनका जो परफॉर्मेंस है वो बिगड़ जाए। इसलिए साई बेंगलुरु का जो मेन सेंटर है एथलेटिक्स और बहुत सारे वहां पे प्रशिक्षण होते हैं, पटियाला आप जानते हैं बॉक्सिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग और कुछ एथलेटिक्स के भी वहां पे एथलीट्स हैं, ये दो मेन जगहों में हमने कंटेनर्स बनाए जो एकदम उसी स्पेसिफिकेशन का था जो उनको जापान में मिलेगा। तो बेड्स थोड़ी छोटी थी, चलने फिरने का जगह थोड़ा छोटा था, पर हमने उनको इस तरह से ट्रेन किया ताकि उनको उन्हीं कंटेनर्स में उनको रखा गया, वहीं वो लोग सोते थे, वहीं वो लोग जो अपना है उठ के जो थोड़ा सा वार्म अप करना होता है कभी, तो वो सब वो लोग वहां पे करते थे ताकि वहां पहुंच के उनको नहीं लगे कि अरे ये हम कहां आ गए।
1: भूमिका स्टूडियो में आने के लिए, आकाशवाणी से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: एशियन गेम्स में पदकों की जद्दोजहद में आगे निकलने के लिए मुकाबले शुरू हो चुके हैं। औपचारिक उद्घाटन में सिर्फ कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, फिर मेडल टेबल में देशों और खिलाड़ियों के नाम दर्ज होने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है पदकों की सूची में भारत का नाम भी शीर्ष देशों में शुमार होगा। एशियाई खेलों पर विशेष कार्यक्रम के साथ कल रात 10 बजे हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज, स्वाति और मोहम्मद शाहिद आजमी की रिपोर्ट के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अभी आप सुन रहे थे जापान के आईची नगोया में होने वाले एशियन गेम्स का कंटेंडर। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: नागोया में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में अपने स्वर्ण पदक की रक्षा के अभियान की शुरुआत बेहद आक्रामक अंदाज में की है। क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने मेजबान जापान को 8 विकेट से धूल चटाकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। इस मैच की पूरी रिपोर्ट जानने के लिए सीधे जुड़ते हैं हमारी सहयोगी दिव्या से। दिव्या, बताइए कैसा रहा हमारी बेटियों का प्रदर्शन?
1: जी जया, आज नागोया के कोरोजी स्पोर्ट्स पार्क में भारत की महिला गेंदबाजों का ऐसा कहर देखने को मिला है कि जापानी टीम पूरी तरह से असहाय नजर आई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जापान की टीम को भारतीय गेंदबाजों ने सिर्फ 57 रनों पर ही ढेर कर दिया और भारत की तरफ से सबसे घातक गेंदबाजी की श्री चरणी ने, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और 4 विकेट चटकाई। रही सही जो कसर थी वो शेफाली वर्मा ने 2 विकेट में पूरी कर दी। इसके बाद रनचेज में शेफाली वर्मा ने सिर्फ 15 गेंदों पर ताबड़तोड़ नाबाद 40 रन कूट डाले और भारत को 8 विकेट से एक तरफा जीत दिला दी। अब भारतीय टीम 20 सितंबर को सेमीफाइनल में बांग्लादेश से भिड़ेगी।
0: क्या बात है दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हमारी विमेंस इन ब्लू ने तो कमाल कर दिया है। श्रोताओं, मैं जानती हूं कि आप इस वक्त गाड़ी चला रहे होंगे, घर पर होंगे या फिर दफ्तर में, लेकिन जहां भी हैं अपनी विमेंस इन ब्लू के लिए तालियां तो बनती है। जो लोग इस वक्त घर पर आराम से बैठकर ये शो सुन रहे हैं वो अपने कमरों को तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान कर दे, और हां, जो लोग हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं वो बस मन ही मन हमारी टीम को वेल डन कह दे, क्योंकि आपका ध्यान सड़क पर होना ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं एक ऐसे खेल की जो इस बार एशियन गेम्स में अपना डेब्यू कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टेक बॉल की, और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत की क्विंसी जोआकिम डिसोजा ने इतिहास रचते हुए इस खेल के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने जापान की टॉप सीड खिलाड़ी को हराकर हर किसी को चौंका दिया है। तो चलिए इस नए खेल में भारत की उम्मीदों पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी मुकेश से।
2: जी हाँ जया, आज एशियाई खेलों के नगोया सिटी हिगाशी स्पोर्ट्स सेंटर से भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। अपने पहले ही एशियाई खेलों में 24 साल की भारतीय खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा ने ग्रुप ए के बेहद कड़े मुकाबले में जापान की शीर्ष वरीयता प्राप्त युइना साकामोतो को 2-1 से हरा कर तहलका मचा दिया। इसके बाद उन्होंने कंबोडिया की खिलाड़ी को भी मात दी और सीधे सेमीफाइनल का टिकट कटाया। शनिवार को उनका मुकाबला इंडोनेशिया की सुमाया से होगा। और जया, अब केवल एक जीत भारत का पहला ऐतिहासिक मेडल पक्का कर देगी। हालांकि मिक्स डबल्स में भारतीय जोड़ी क्वार्टर फाइनल में हार गई है, लेकिन रेपचेज के मुकाबले में अभी पदक की आस बाकी है। जया, एक और निराश करने वाली खबर ये है कि सॉफ्ट टेनिस के मेंस टीम इवेंट में क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम को इंडोनेशिया से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा और उस टीम का सफर अब यहीं पर समाप्त हो गया है।
0: शुक्रिया मुकेश इस बेहतरीन अपडेट के लिए। हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों का जज्बा वाकई काबिले तारीफ है। श्रोताओं, भले ही एशियन गेम्स की स्पर्धाएं आज से शुरू हो गई हैं, लेकिन इसकी औपचारिक शुरुआत कल से हो रही है, जहां ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉट पुट के मौजूदा चैंपियन तंजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेलों के आधिकारिक आगाज से ठीक पहले भारत के केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज सुबह जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच चुके हैं। जापान में भारत की राजदूत नागमा मलिक ने टोक्यो में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। खेल मंत्री का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे इन खेलों में भाग ले रहे 503 सदस्यीय विशाल भारतीय दल का नेतृत्व और उनका हौसला बढ़ाने

0: करने के लिए वहां खुद उपस्थित हैं। टोक्यो से आ रही रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर मांडविया ने वहां पहुंचकर भारतीय एथलीटों के रहने, उनके खान पान और चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत सरकार का लक्ष्य केवल पदक जीतना नहीं है, बल्कि खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। एक विशेष बातचीत में खेल मंत्री ने यह दोहराया है कि भारत का विजन बहुत लंबा और स्पष्ट है कि सरकार मिशन 2036 ओलंपिक्स को ध्यान में रखकर काम कर रही है, जिसके लिए 63,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट खेल बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि जापान की धरती पर हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन यह तय करेगा कि हम वैश्विक मंच पर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। खेल मंत्री के इस दौरे से निश्चित रूप से हमारे 300 से अधिक उन युवा खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ेगा जो पहली बार एशियाई खेलों जैसे बड़े मंच पर उतर रहे हैं। चलिए अब एशियन गेम्स के मैदान से थोड़ा बाहर निकलते हैं और रुख करते हैं दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल की तरफ, जहां टेनिस के विश्व कप यानी डेविस कप 2026 के नॉकआउट मुकाबले में भारत और साउथ कोरिया के बीच दो दिनों की महाटक्कर की शुरुआत हो चुकी है। आज पहले दिन के दोनों सिंगल्स मैच समाप्त हो चुके हैं, जिसमें भारत फिलहाल 0-2 से पीछे चल रहा है, लेकिन यह मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। कल इसके बाकी बचे हुए निर्णायक मैच खेले जाने हैं। आज के मैच की पूरी रिपोर्ट के लिए सुनते हैं हमारे सहयोगी निखिल की रिपोर्ट।
1: सियोल के ओलंपिक टेनिस सेंटर में आज भारतीय टेनिस फैंस के लिए दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। डेविस कप 2026 के इस बेहद अहम नॉकआउट मैच के पहले दिन मेजबान दक्षिण कोरिया ने भारत पर 2-0 की बढ़त बनाई। पहले सिंगल्स मैच में भारत के युवा खिलाड़ी दक्षिणेश्वर सुरेश ने शानदार शुरुआत करते हुए पूर्व वर्ल्ड नंबर 157 कोन सुन वू के खिलाफ अपना पहला सेट 6-3 से जीता, लेकिन अंत में दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी के अनुभव के आगे वे मुकाबला 6-3, 3-6, 4-6 से हार गए। इसके बाद सभी की निगाहें भारत के टॉप सिंगल्स खिलाड़ी सुमित नागल थी। नागल ने भी पूर्व ऑस्ट्रेलिया ओपन सेमीफाइनलिस्ट चुंग ह्योन को बेहद कड़ी टक्कर दी और पहला सेट 6-2 से अपने नाम किया, लेकिन चुंग ह्योन ने वापसी करते हुए मैच 6-2, 4-6, 5-7 से अपने नाम कर लिया। पहले दिन भारत भले ही 0-2 से पीछे हो गया है, लेकिन कल होने वाला डबल्स मैच में एन श्रीराम बालाजी और निक्की पुनाचा की जोड़ी से भारतीय फैंस को शानदार वापसी की पूरी उम्मीद है। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स गेम।
0: अब बात करते हैं कल के मैच की, जहां भारत ने अफगानिस्तान पर सबसे बड़ी जीत दर्ज की है अब तक की। भारतीय क्रिकेट टीम ने कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए तीसरे और अंतिम T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रनों के विशाल अंतर से हराया। इस धमाकेदार जीत के साथ ही टीम इंडिया ने तीन मैचों की इस सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर शानदार क्लीन स्वीप पूरा किया। यह T20 इतिहास में भारत की अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी जीत है। भारत ने सीरीज का पहला मैच 7 विकेट से अपने नाम किया था और इसके बाद मंगलवार को खेले गए मैच में भी टीम इंडिया ने इतने ही अंतर से जीत हासिल की थी। अगर कल के मैच के मुख्य आकर्षण देखें तो अभिषेक का शतकीय तूफान हम देख सकते हैं, जहां पे सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने मात्र 30 गेंदों में शतक जड़कर फुल मेंबर देशों के बीच T20 इंटरनेशनल इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने कुल 34 गेंदों में 108 रन बनाए, जिसमें 11 छक्के और 9 चौके शामिल थे। इसके अलावा जो सबसे आकर्षण के केंद्र में एक है विशाल स्कोर, भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 221 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसमें संजू सैमसन ने भी 50 रन का योगदान दिया। इसके अलावा 222 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम को भारतीय गेंदबाजों ने टिकने नहीं दिया और पूरी टीम 14 ओवर और एक गेंद में सिर्फ 94 रन पर सिमट गई। भारत की तरफ से नीतीश कुमार रेड्डी ने 25 रन देकर 3 विकेट लिए और रवि बिश्नोई ने 26 रन देकर भी 3 विकेट छटकाए हैं। क्रिकेट के इस जश्न के बीच चेस ओलंपियाड के तरफ चलते हैं, जहां भारत के मुकाबले अभी भी काफी रोमांचक स्थिति में चल रहे हैं। आज शतरंज का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जा रहा है। 46वीं फेडर चेस ओलंपियाड 2026 का तीसरा दौर है और आज के मैच अपने अंतिम और सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहे हैं। भारत की महिला और पुरुष दोनों ही टीमों ने अब तक अपने अजेय क्रम को बरकरार रखा है। अगर अभी की हम ताजा रिपोर्ट देखे, जानकारी देखे, तो जो पहले दौर में अर्जुन एरिगेसी को

अप्रत्याशित हार मिली थी। अब वे आज बोर्ड नंबर 3 पर शानदार वापसी कर रहे हैं। वे इटली के फ्रांसिस्को सोनीस के खिलाफ इस समय पूरी तरह से हावी हैं। वहीं बोर्ड नंबर 1 पर वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश और इटली के सबिनो ब्रुनेलो के बीच भी बहुत ही पेचीदा और बराबरी का मैच चल रहा है। वहीं बोर्ड नंबर 2 पर आर प्रज्ञानंदा ने लोरेंजो लोडिकी के खिलाफ एंड गेम में मामूली बढ़त बना रखी है। शानदार फॉर्म में चल रहे निहाल सिरीन भी बोर्ड नंबर 4 पर मजबूती से डटे हुए हैं। इस मैच को जीतने की बेहद मजबूत स्थिति में भी है। अगर हम महिला टीम की बात करें तो ग्रीस के साथ हमारी भारतीय महिला टीम का मुकाबला चल रहा है। भारत के दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल अपने अपने बोर्ड पर ग्रीक खिलाड़ियों के खिलाफ बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त बना चुकी हैं और किसी भी वक्त भारत के पक्ष में पहला अंक ला

बड़ी रणनीतिक बढ़त बना चुकी हैं और किसी भी वक्त भारत के पक्ष में पहला अंक ला सकती हैं। वहीं आज के मैच में स्टार खिलाड़ी कोनेरू हम्पी की वापसी हुई है। वे बोर्ड नंबर एक पर संयम के साथ खेल को आगे बढ़ा रही है। अब चलते हैं बैडमिंटन की बात करते हैं। शिलांग के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रही है नॉर्थ ईस्ट जोन इंटरस्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप। आज भारतीय खेल प्रशंसकों के लिए यहां से बहुत बड़ी और ताजा अपडेट आ रही है। दरअसल टीम चैंपियनशिप के फाइनल्स में असम की टीम ने ऐतिहासिक दबदबा दिखाते हुए चारों श्रेणियों यानी कि बॉयज गर्ल्स मेन्स और वुमेन्स के गोल्ड मेडल जीतकर क्लीन स्वीप कर दिया है और इस खिताबी जीत के साथ ही असम की सीनियर टीमों ने नेशनल गेम्स 2027 के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई भी कर लिया है। असम की जो स्टार और अंतर्राष्ट्रीय शटलर हैं अश्मिता चाहिला की अगुवाई में टीम ने 3-0 से एक तरफा जीत हासिल की है और खिताब अपने नाम किया। वहीं अगर हम पुरुष टीम की बात करें तो फाइनल में असम ने बेहद रोमांचक मुकाबले में शुरुआत में पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की और मणिपुर को 3-1 से हराकर मेंस टाइटल पर कब्जा किया। इसके अलावा बॉयज टीम ने भी असम के जूनियर खिलाड़ियों बॉयज टीम में जो जूनियर खिलाड़ी हैं उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को 2-0 से मात दिया है। टीम इवेंट्स समाप्त होने के बाद आज दोपहर से ही व्यक्तिगत श्रेणियों के नॉकआउट मुकाबले शुरू हो चुके हैं और यह चैंपियनशिप कल अपने अंतिम दिन प्रवेश कर रही है जहां व्यक्तिगत श्रेणियों के विजेताओं का फैसला होगा। और अब बुलेटिन के खत्म होने का समय आ रहा है लेकिन जो ताजा अपडेट आ रही है कि भारतीय टीम शतरंज से अभी ताजा अपडेट आ रही है कि राउंड 3 में भारतीय पुरुष टीम इटली पर अपना शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स में भारत के स्टार अर्जुन एरिगेसी बोर्ड नंबर 3 पर जीत के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ महिला वर्ग में दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल ने ग्रीस के खिलाफ भारतीय टीम को बेहद मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। उम्मीद है कि अगले कुछ मिनटों में ही भारत की इस दोहरी जीत पर आधिकारिक मुहर लग सकती है। इसके अलावा अगर हम एशियन खेल की भी बात करें तो 2 दिन के बाद हॉकी का भी मैच होने वाला है जो कि भारत की राष्ट्रीय खेल हॉकी हमारे गौरव की बात है। वो मैच भी एशियन में शुरू होगा और अगर हम हॉकी की बात करते हैं तो हॉकी में हमारी टीम कहीं भी पीछे नहीं है। अगर महिला की बात करें या फिर पुरुष टीम की बात करें दोनों ही टीमें अपनी मजबूत स्थिति में हैं। इसके अलावा जो और भी आकर्षण के केंद्र बने होंगे वो हॉकी के अलावा बहुत सारी खबरें भी हैं हमारे पास। तो श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। स्पोर्ट्स स्कैन में आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। भारतीय एथलीटों को चीयर करते रहिए क्योंकि आप जब तक मिलकर उनका हौसला बढ़ाएंगे तभी हमारा भारत जीतेगा। तो अब इजाजत दीजिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन की और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है।

0: संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में यूएई के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से ये सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में आईएनएस कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाल में हाल में आई बाढ़ में जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक की है। दोनों नेताओं ने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक समझौते को शीघ्र पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई सवाल पूछे। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। HAL ने भारतीय वायुसेना को पहला HTT-40 प्रशिक्षण विमान भी सौंपा। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां हासिल की हैं।
3: आज हम एक साथ 3 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया।

0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजी नगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे। त्रिपुरा राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों के लिए मतदान केंद्रों की मसौदा सूची जारी कर दी है। इस सूची में 784 मतदान केंद्र हैं। मतदान केंद्रों की अंतिम सूची 25 सितंबर को प्रकाशित होगी। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिन की खपत तक ही सीमित रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन इंडिया में एक ही देश की लगभग 30 कंपनियां विभिन्न पवेलियनों में भाग ले रही हैं।
1: वेरी गुड रिस्पॉन्स,
2: काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। गोलमेज बैठकों में कई देशों ने बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ भाग लिया है। जापान और सिंगापुर के पवेलियन में 30 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय देशों की कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। इनमें नीदरलैंड और स्वीडन प्रमुख हैं। इससे आगे की संभावनाएं काफी अच्छी नजर आ रही हैं।
1: लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड जर्नी अहेड।
0: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों के जीवन को बदल रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।
3: नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग का स्थान लिया। इसे वित्तीय आवंटन करने वाली संस्था के बजाय एक नीति निर्माण संस्था के रूप में तैयार किया गया है। नीति आयोग 3 प्रमुख माध्यमों के जरिए काम करता है। शासी परिषद प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक मंच पर लाती है। स्टेट सपोर्ट मिशन के तहत नीति आयोग की टीमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती है। वहीं आकांक्षी जिला कार्यक्रम मापे गए परिणामों के आधार पर जिलों की रैंकिंग करता है और इन परिणामों को सार्वजनिक करता है। वर्ष 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस मंच के माध्यम से केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं।
4: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को, देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियां तैयार करते हैं, नीतियों को लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद को मजबूत करता है और केंद्र राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करता है।
5: नीति आयोग का लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे। अब ये थिंक टैंक की तरह काम करता है।
3: नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक और केंद्र राज्य संवाद के मुख्य मंच

0: के रूप में कार्य करता है। मजबूत राज्य अब मजबूत राष्ट्र की स्पष्ट नींव बन चुके हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई ने आज पठानकोट जिले से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने माधोपुर से यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का समापन 30 सितंबर को जलंधर में होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस नहीं निकालने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने छात्र संघ चुनाव के दौरान लिंगदो समिति की सिफारिशों के बार बार उल्लंघन को देखते हुए ये निर्देश दिए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान आज संपन्न हो गया, मतगणना कल होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी एनटीए की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई। घटना में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटनास्थल पर बचाव कार्य चल रहा है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि यह संशोधन पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाता है। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों से सेंसेक्स में आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 20 अंक की गिरावट देखी गई और यह 74,295 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 76 अंक की बढ़त के साथ 23,346 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के तुलना में 8 पैसे बढ़कर 95.88 रुपए पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में कल तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग अलग नाम और चुनावी चिन्ह आवंटित किए। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: सुरीली धड़

रात्रि के 9 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत, गुलजार साहब की बोल, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम लेकिन।

लता मंगेशकर की आवाज थी और फिल्म का नाम था लेकिन। कार्यक्रम का अगला गीत हसन कमाल का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ, फिल्म का नाम है बटवारा। गाने वाले कलाकार अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म जुनून का दो गाना। गाने वाले कलाकार अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा। इस गीत को समीर ने लिखा है और तर्ज नदीम श्रवण की है।

पूरा है तेरी रात दिन, अभी जा मेरे दिल के करार, मर न जाऊं तड़प

अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुरेश वाडेकर की आवाज थी, फिल्म का नाम था सदमा, गीत गुलजार साहब का था और धुन इलैया राजा की थी। लीजिए अब सुनिए समीर का लिखा गीत सोनू निगम की आवाज में। ये फिल्म है संघर्ष और इस गीत को संगीत दिया है जतिन ललित ने।

सोनू निगम को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था संघर्ष। बोल समीर के थे और धुन जतिन ललित की। इस गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी रेडियो दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: संगीत भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहते हैं और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना?

0: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री शबाना आजमी पर।
1: बार बोला ना जी उजला कपड़ा पहनो ना को, काला कपड़ा पहनो ना को, उजला कपड़ा पहनो ना को। मैं कितनी बार बोला ना जी उजला कपड़ा पहनो ना को, काला कपड़ा पहनो ना को।

दोस्तों 1972 के आसपास FTII से शबाना आजमी ग्रेजुएट हुई और अपने वालदैन के नक्शे कदम पर चलते हुए ही एक्टिंग की दुनिया में जलवागर हुई। अब्बास साहब की एक फिल्म फासला में उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली भूमिका की, हालांकि ब्लज फिल्म्स की पेशकश अंकुर पहले रिलीज हुई थी। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं शबाना आजमी द्वारा अभिनीत एक फिल्म अर्थ का ये बड़ा ही खूबसूरत गाना।

दोस्तों, शबाना भी उस दौर को बिलोंग करती हैं जब पैरेलल सिनेमा ने बुद्धिजीवियों के बीच पैठ बना ली थी। अगुवाई कर रहे थे द ग्रेट सत्यजीत राय, श्याम बेनेगल, महेश कौल, गिरीश कर्नाड, शंकर नाग जैसे और भी कई। इनके द्वारा बनाई गई फिल्में आर्ट फिल्में कहलाती थीं, जो क्लास के लिए बनती थीं, जो कि आधारित होती थी मास पर ही। उनके विषय मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देते थे। ऐसी ही एक फिल्म थी निशांत। इसमें भी बड़ी ही सशक्त भूमिका में थी शबाना।

दोस्तों शबाना आजमी ने कई नामचीन फिल्मकारों के साथ काम किया है, उनमें से प्रमुख हैं श्याम बेनेगल की निशांत, जुनून, मंडी, सुषमन और अंतरनाद। इन फिल्मों में उन्होंने काम किया सत्यजीत राय के साथ शतरंज के खिलाड़ी, मृणाल सेन के साथ खंडर, जेनेसिस और एक दिन अचानक, ये फिल्में उन्होंने की। सईद मिर्जा की फिल्म उन्होंने की थी अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, गौतम घोष की पार उन्होंने की थी, सही परांजपे की स्पर्श और दिशा, अपर्णा सेन की पिकनिक और सती, महेश भट्ट की अर्थ उन्होंने की थी। आगे बढ़ते हैं उनके द्वारा अभिनीत फिल्म अवतार के इस गाने के साथ।

दोस्तों, शबाना आजमी द्वारा अभिनीत फिल्मों की एक फहरिस्त पर हम जब नजर डालते हैं तो पता चलता है कि किस किस्म की फिल्में उन्होंने की हैं। 1988 में मैडम सोजार्ट्स का, 1992 में आई थी सिटी ऑफ जॉय, 1993 में इन कस्टडी, 1993 में ही एक और फिल्म आई थी उनकी सन ऑफ द पिंक पैंथर, 1996 में फायर, 1997 में सा

1998 में अर्थ, 1999 में गॉड मदर, 2002 में उनकी फिल्म आई थी मकड़ी, तहजीब आई थी 2003 में, 2004 में मौनी रागाज, 2005 में 15th पार्क एवेन्यू, इसी साल यानी 2005 में आई थी वाटर बॉर्न, 2006 में उमराव जान, 2007 में हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड,

इसी साल यानी 2007 में लायंस ऑफ द पंजाब प्रेजेंट्स, 2008 में उनकी फिल्म आई थी सॉरी भाई, और 2010 में इट्स वंडरफुल आफ्टर लाइफ। शबाना आजमी मटरू की बिजली का मंडोला इस फिल्म में भी नजर आई थी। दोस्तों, शबाना आजमी को 2006 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है।

0: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री शबाना आजमी पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए शो को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रख

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस समय रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

कवियों का पहला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में प्रेम रो फिल्म से। गीत के बोल संतोष आनंद के हैं और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम की अगली पेशकश में आपको सुनवाते हैं लोफर फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

शवा, अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज में समाधि फिल्म का गीत सुना। कार्यक्रम की अगली पेशकश में आपको सुनवाते ही अनुराधा पौडवाल की आवाज में जंगल लव फिल्म का गीत।

सलमा आगा और मोहम्मद अजीज की आवाज में आपको सुनवाती है पति पत्नी और तवाही फिल्म का गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

श्रोताओं, भी आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में अजनबी फिल्म का गीत सुना। आनंद बख्शी के बोल थे आर डी बर्मन का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों की आवाज में अंदाज अपना अपना फिल्म का गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं शोले फिल्म से राहुल देव बर्मन की आवाज में। गीत के बोल आनंद पक्षी के हैं, धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

अलका याग्निक और साथियों की आवाज में अभी आपने सुना त्रिदेव फिल्म का गीत। आनंद बख्शी के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं दो रास्ते फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: नितिन मुकेश, अलका याग्निक, शब्बीर कुमार और साथियों की आवाज में गाए तेजा फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। श्री नहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में यूएई के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर एचएएल ने भारतीय वायुसेना को पवनहंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश के 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
2: आज हम एक साथ 3 इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजिनसली डिजाइन एंड डेवलप्ड थ्रू अ नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
1: निर्वाचन आयोग ने

0: और कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और चुनाव चिन्ह फुटबॉल खिलाड़ी है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजीनगर में होने वाले उपचुनाव में अपने नए नामों और चिन्हों के अंतर्गत लड़ेंगे। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए आज मतदान संपन्न हो गया। चुनाव के लिए कुल 1000 ईवीएम का प्रबंध किया गया था। विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में थे। वोटों की गिनती कल नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में होगी। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जीत का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। अब भारत का सामना 20 सितंबर को बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात्रि के 11:05 में ही अब हमारी आज की प्रसारण सेवा यहीं पर संपन्न होती है। कल सुबह के 5:53 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, शुभ रात्रि, जय हिंद।